0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: 0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की जोड़ में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो हम आज देखते हैं कि योगाभ्यास एक इंसान की जीवन का एक पहलू बनता जा रहा है, लेकिन इसकी विधि क्या है, योग और योगा में अंतर क्या है, इसे नहीं जानने के कारण हम योग को ही योगाभ्यास समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम इसकी विधि को जाने तो हमें पता चल जाएगा कि योग क्या होता है, इसे हमें कैसे करना चाहिए। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं, योगाभ्यास के लिए इसकी क्या विधि है। तो योगाभ्यास के लिए विधि और विधान, यहाँ पर हम देखते हैं, प्रायः यह माना जाता है कि योगाभ्यास के लिए तो मनुष्य को कहीं दूर जंगल में या गुफा में चले जाना पड़ता है, या अलग थलग एक कुटिया बनाकर और एक लोटिया मात्र ही अपने पास रखकर साधना करनी पड़ती है। लेकिन गीता में इस सत्यता की साक्षी है कि भगवान ने तो ऐसा कुछ भी आदेश निर्देश नहीं दिया है। वास्तव में बात तो यह है कि ये जो हमारा शरीर है, शरीर ही आत्मा की एक कुटिया है। अतः भृकुटी जिसमें कि आत्मा का वास है, एक कुटी अथवा गुहा ही तो है। अतः जंगल में जाकर कंकड़ पत्थर को जोड़कर कुटिया बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुटिया में तो आत्मा पहले से ही है। योगी के लिए विधान यह नहीं है कि वह किसी निर्जन स्थान पर कुटिया बनाकर रहे, बल्कि यह है कि वह अपने मन को निर्जन करे, अर्थात उसमें मित्र जन संबंधी जन की बजाय एक परमात्मा, परमपिता परमात्मा की स्मृति को स्थापित करे। फिर वह इस सत्यता का मनन करे कि यह शरीर तो एक कुटिया है, मैं इस कुटिया का वासी एक चेतन हाँ आत्मा हूं। अब हमें चैतन्य में ही आत्मा को कुटिया में महसूस करना है, उसे जानने की कोशिश करनी है कि आखिर वो कुटिया में कहाँ है, कैसे है। यही हमारा परमात्मा के साथ, जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो परमात्मा से हमारा कैसे संबंध होगा, इसे हम इसी विधि से जानेंगे कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूँ। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों। तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है योगाभ्यास के लिए विधि। यदि हम देखते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य की भूल यह है कि वह इस संसार को एक मुसाफिर खाना मानने की बजाय अपना देश मान बैठता है और घर को अपना घर समझ लेता है। फिर जब वह उससे लगाव छोड़ना चाहता है तो यहाँ से निकलकर दूर कहीं कुटिया बनाने की सोचता है। परंतु यदि वह यह समझकर चले कि मैं तो एक यात्री हूँ, यह संसार एक मुसाफिर खाना है, आखिर तो मुझे यहाँ से परम धाम अपने प्यारे घर अथवा देश में जाना है, तो उसमें आसक्ति अथवा मोह नष्ट हो जाएगा और वह भृकुटी अथवा देह को ही अपना शिविर अथवा पड़ाव मानकर तथा स्वयं को इसमें जागती हुई एक ज्योति मानकर उन्नति कर सकेगा। तो यही है योग की विधि। अगर हम ये समझ लें हाँ कि इसकी विधि क्या है, तो इसकी विधि के द्वारा ही हम योग की जो एक सफल प्रयास है उसमें संपूर्ण जो उसकी स्थिति है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों। तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा विषय है योगा अभ्यास के लिए विधि। तो हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि योग के लिए एक अन्य बात की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। हम देखते हैं कि घर की तार को जब बिजली घर से आ रही तार से जोड़ा जाता है, तभी घर की तार में भी करंट आता है। परंतु तार को तार से जोड़ने की विधि यह है कि दोनों के ऊपर से जो रबड़ अथवा प्लास्टिक उतार कर ही धातु को धातु से जोड़ना पड़ता है। वरना यदि रबड़ या प्लास्टिक समेत तारों को जोड़ दिया जाए तो बिजली का करंट और लाइट तथा उसका जो पावर है नहीं आ सकती वहां तक। ठीक इसी प्रकार शरीर भी आत्मा के लिए रबड़ है, प्लास्टिक या चमड़ा ही है। जब एक मनुष्य देह के भान से अगर वो उससे परे होकर रहे तो ही वो आत्मा को समझ सकता है। देह के भान में रहकर परमात्मा को याद करेगा तब तक उसे ईश्वरीय लाइट और पावर की प्राप्ति नहीं होगी। उसकी जो शक्ति है उसकी प्राप्ति उससे नहीं होगी। अतः योगाभ्यास जो भी है, जो इसे करते हैं, एक योगाभ्यासी को चाहिए कि वह इस प्रकार से मनन करे कि मैं एक आत्मा हूं, ज्योतिर्बिंदु हूं, अचर अमर अविनाशी, मैं देह नहीं हूं। देह तो मेरी कुटिया है, मैं अजर अमर अविनाशी एक आत्मा हूं। इस तरह अपने को आत्मा समझ कर ही हम इस देह के भान से बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार कच के चिंतन से आत्मा देह भान से न्यारी हो जाएगी और तभी उसकी स्मृति रूपी तार परमात्मा से जुड़ जाएगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमात्मा से तार को जोड़ने के लिए हमें अपने देह के भान से निकलना बहुत जरूरी है। अगर हम उसे नहीं छोड़ते हैं तो हम परमात्मा को भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है। अगर हम कहते हैं कि वो हमारा परम पिता परमेश्वर है, हाँ, अगर हम परमात्मा को परम पिता बोलते हैं तो बच्चे तो अक्सर अपने पिता की तरह ही होते हैं। तो पिता भी तो हमारा वैसा ही है जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु। तो इस ज्योति स्वरूप को हम किस रूप में पहचानने के लिए, अपने कौन से स्वरूप को हमें याद करना है, इसे जानने की बहुत जरूरी है। तभी हम परमात्मा को और उनके साथ अपने संबंध हम जोड़ सकते हैं, अपने पिता के साथ हम अपना संबंध जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद आती है कि कर ले शिव का ध्यान सदा तुत सुख पाएगा। समय बड़ा अनमोल नहीं फिर आएगा, सतयुग त्रेता द्वापर से तू आए पड़ा कलयुग में, खो दे सारी पुण्य की पूंजी, लाया था जो संग में। सत्संग बड़ा है
प्यारी शिव भोलेनाथ पुकारी। भीतर की खोल विकार जो किवाड़ है उन्हें किवाड़ को खोलना है, भीतर के खोल किवाड़। कुछ पल्ले पड़े तुम्हारे देहभान के छोड़ो धंधे, क्यों बने नैन सुख अंधे, स्मृति रख चलते फिरते तो कटे गले के फंदे। तू रोता क्यों जंगल में, शिव आए तेरे जीवन में, साधारण मनुष्य तन में मुरली सुन मन मधुबन में, तरले शिव का ध्यान सदा तो सुख पाएगा, समय बड़ा बलवान नहीं फिर आएगा। तो दोस्तों आपने देखा कि एक शिव परमात्मा से अगर हमारा संबंध जुड़ जाए तो और क्या चाहिए, यही है हमारी योग की विधि। तो दोस्तों आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: जब हम भगवान को दोष देना शुरू कर देते हैं, दैट इज नॉट फेयर, बिकॉज पिता है, हम बच्चे हैं, वो कभी नहीं ये डिसाइड करेगा कि एक बच्चा ट्रेन ब्लास्ट का विक्टिम हो जाए और दूसरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। एक पिता कभी ये नहीं कर सकता है। और अगर परमात्मा ये कर भी रहा है तो देन वी कैन क्वेश्चन ऑन व्हाट बेसिस। परमात्मा हमारी जीवन की यात्रा नहीं डिसाइड कर रहा है, हमारे अपने किए हुए कर्म, एंड दैट्स व्हाई थॉट्स लीड्स टू डेस्टिनी। उसमें सब थॉट्स जो अभी किए, जो बहुत सारे पहले, लेकिन वही थॉट्स अब उस डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। अब जो हुआ हादसा, वो पिछले किसी कार्मिक अकाउंट की वजह से हुआ, लेकिन उस हादसे के बाद अब क्या करना है, एटलीस्ट दैट इज इन माई कंट्रोल नाउ।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ है संतोषी माँ, अपनी संतोषी माँ।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। एक नई श्रृंखला के साथ इन दिनों हम आपके साथ हैं और हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की, यानी कि मेरी खुशी कितनी बार दिन में ऊपर होती है, कितनी बार नीचे। तो क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि मेरी जो हैप्पीनेस है या मेरा खुशी का जो क्वेश्चन है वो स्टेबल रहे? ये कैसे संभव है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज फिर चर्चा शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति
0: सिस्टर शिवानी, जब खुशी की बात करते हैं तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने बहुत सी बातें की जो जीवन से जुड़ी थी, मेरी खुशी से जुड़ी थी। हमने ये देखा कि खुशी जब लोगों पर डिपेंड कर रही थी कि वो खुश होते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा बॉस है, तो मैं खुश हो रही थी। अगेन वो डिपेंडेंसी जो थी, और वो कहीं ना कहीं उनका खुश होना या ना होना मेरी किसी बात से मेरा अपना फेलियर बन रहा था, और मेरी अपनी जो खुशी थी वो छिन रही थी। और दूसरा, हमने जो पिछली कड़ी को देखा था उसमें बात की थी मटेरियलिस्टिक चीजों की। दे वर एक्चुअली गिविंग मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस टिल द टाइम यू टोल्ड मी कि वो पर्टिकुलर चीजें खुशी नहीं दे रही, मैं खुशी का थॉट क्रिएट कर रही हूँ। यहीं पर हम बात थी। वंडरफुल। अब यहां तक हम बात पहुंची थी कि वो थॉट मैंने क्रिएट किया कि ये मुझे मिल गया है तो मुझे खुशी हुई। लेकिन अभी तक बात ये हो रही थी, ज्यादातर लोग जो हम जो सोचते हैं वो ये कि खुशी एक फीलिंग है, तो क्रिएट करना और नॉन क्रिएट करना थॉट कैसे होगा फिर? सो यहां से आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है?
1: गुड वन। खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है? खुशी ऑब्वियसली एक फीलिंग है, इट इज एन एक्सपीरियंस दैट आई गो थ्रू। अब लेकिन ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए सोर्स तो चाहिए ना। फीलिंग कहाँ से क्रिएट हो रही है? यस, इट्स अ फीलिंग। आई एक्सपीरियंस बहुत सारी फीलिंग्स सारा दिन के अंदर। कभी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कभी आई एक्सपीरियंस पेन, कभी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी। लेकिन ये फीलिंग्स किस आधार पर मैं अनुभव करती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन उस पल मैंने कौन सा थॉट क्रिएट किया है।
0: ओके, आई सी अ फ्लावर, बहुत सुंदर एक फूल देखा मैंने।
1: इट डजंट गिव, इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग, राइट?
0: इट गिव्स मी सो मच ऑफ अ, यू नो, लाइक सच नाइस फीलिंग।
1: पहले आप एक थॉट क्रिएट करते हो, कितनी ब्यूटीफुल फ्लावर है।
0: मुझे तो पता भी नहीं कि मैं करती हूँ।
1: अगर किसी को वो थॉट नहीं क्रिएट करेगा, अब वही फ्लावर आपको बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है। आई मे बी कि मैं उसको क्रॉस करके चले जाऊं और मेरे को कुछ लगे ही ना। फ्लावर तो वही है, मुझे उसने कोई फीलिंग नहीं दी, यू नो। आई मे जस्ट नॉट इवन रियलाइज कि यहाँ पर बहुत सुंदर फूल पड़े हुए हैं, एंड आई विल जस्ट क्रॉस एंड आई विल गो अवे, क्योंकि मैंने उस फ्लावर को देखकर रुककर उसके ऊपर थॉट नहीं क्रिएट किया, तो फीलिंग नहीं जेनरेट हुई उसके बाद। आप रुके, कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट किया कि ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत अच्छा कलर, फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, या यू नो कितना व्हाटएवर जो जो थॉट्स क्रिएट
0: करते हैं। बोलते हैं हम, एक बार फीलिंग आ जाती है उसके बाद हम बोलते हैं,
1: राइट? तो पहले थॉट क्रिएट किया,
0: अच्छा,
1: फिर फीलिंग
0: थॉट क्रिएट करना। तो आई एक्चुअली डोंट
1: इवन, एक दिन उसको ऑब्जर्व करना। क्या होता है, प्रोसेस तो यही चल रहा है, हमें तब रियलाइज आता है आफ्टर इट कम्स आउट इनटू वर्ड्स, राइट? प्रोसेस तो वही चल रहा है। अब उसी टाइम जो हमने पिछली बार भी देखा, वही फ्लावर है, वो फ्लावर अभी तक उतना ही सुंदर है। आप भी उन फूलों के सामने ही बैठे हैं, आप थॉट क्रिएट कर रहे हो, उससे
0: खुशी देती है। When I buy a new dress, you know.
1: You're wearing a new saree today.
0: Yes. People have been talking about my sarees, actually, if I look at it. Yeah. लेकिन जिस वक्त मैं नई साड़ी कुछ ऐसी खरीदूं, या मैं एक नई गाड़ी खरीदूं जो मैं खरीदना चाह रही हूं कब से, या फिर अगर मैं घर की बात करती हूं कि घर, इवन बेडशीट्स या इवन पिलो कवर्स, यू नो, कई बार, या फर्नीचर, सुंदर सा कुछ खरीदते हैं जो डिजाइनर है, जो बहुत, इट definitely gives me happiness.
1: So let's keep buying every day new things, na?
0: No, but we can't
1: do that. सही बात है। It is true. एक तो दो लेवल पर हुआ कि एक तो हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी को साधनों में जरूर ढूंढते हैं। एक्चुअली तो अगर हम अपनी पूरी दौड़ को देखें, ये जो जर्नी पर हम भागते जा रहे हैं, और ये जो इकट्ठा करने का हमें वो चढ़ गया है. दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन, समटाइम्स एन एडिक्शन. ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी आ जाए, फिर हमारी टू डू लिस्ट में वो सारे ऑब्जेक्ट्स ही आते जाते हैं, ये भी खरीदना, ये भी खरीदना. समवेयर आई एम ट्राइंग टू बाय हैप्पीनेस.
0: अच्छा, इनफैक्ट एक और बात है, यू नो, व्हेन यू सेड इट आई जस्ट क्लिक्ड कि मैंने कोई चीज देखी, सपोज मैंने शोरूम में देखी, सपोज मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट में गाड़ी देखी, कोई मोबाइल फोन नया देखा, कोई ड्रेस देखी, इट स्टेज विद मी. Till the time I buy it, it stays, you know.
1: Yes.
0: And the thought keeps on coming that I have to buy that.
1: Because जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ अटैच हुई. यू नो, अगर आप अटैचमेंट की बहुत सिंपल लेवल पर देखो, आप मार्केट में जा रहे हो एंड अगर आप एक विंडो को क्रॉस करते हो, एक पर्टिकुलर वहां पे ड्रेस है या गाड़ी है, वट एवर, आपने क्रॉस कर लिया उसको, लेकिन क्रॉस करने के बाद भी इफ इट इज देयर ऑन योर माइंड, यू आर अटैच्ड. चली गई है, ऑब्जेक्ट चली गई है, बट इट्स स्टिल ऑन माय माइंड. एनीथिंग व्हिच इज ऑन माय माइंड व्हेन इट इज नॉट देयर
0: इज अटैच्ड,
1: इज माय अटैचमेंट. पीपल ऑन माय माइंड,
0: एक्टर, पिक्चर देखने के बाद भी वो हीरो कंटिन्यूस रहता है आपके दिमाग में.
1: मेरा माइंड फिर प्रेजेंट में ना होकर
0: हमेशा, यस,
1: इट इज लिविंग विद दोज पीपल या वो ऑब्जेक्ट्स या वो सिचुएशंस. तो ये कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी उनके साथ जुड़ती जाती है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, अगर मैंने ये खरीद लिया तो आई विल फील गुड. तो एक तो हमें ऑब्जेक्ट्स को एक बहुत पहले तो बेसिक लेवल पर अगर हम लें कि हम उनको बोलते ही हैं सुख सुविधाओं के साधन, यू नो, सुख भी सुविधा भी. तो सुविधा डेफिनेटली कम्फर्ट, बट समवेयर कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस को हमने मिक्स कर दिया और सारा प्रोसेस चलता रहा, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, ये आएगा तो खुशी आएगी.
0: लेकिन इफ आई एम कम्फर्टेबल, आई एम हैप्पी.
1: कम्फर्टेबल फिजिकली,
0: नो, अदरवाइज
1: लेट्स लुक एट इट. फाइन, अगर मैं लेट्स लुक एट इट, डज दिस लॉ वर्क फॉर मी, कि अगर मैं फिजिकली कम्फर्टेबल हूँ देयरफॉर मैं खुश हूँ, विल दैट ऑलवेज बी एप्लीकेबल?
0: I feel that way.
1: अच्छा, this is what I आज आपके लिए मर्सिडीज गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है?
0: It feels good, yes.
1: It feels good. और फिर आप उस गाड़ी में बैठ गए. गाड़ी इज कम्फर्टेबल.
0: नई
1: गाड़ी, whichever गाड़ी we have, it's comfortable. हम पहले 4 लाख की गाड़ी खरीदी, खरीदते खरीदते खरीदते हम 40 लाख की गाड़ी तक पहुंच गए. ऑफ कोर्स फीचर्स
0: बढ़ते,
1: कम्फर्ट्स वो बढ़ते गए, हैप्पीनेस भी उतनी बढ़ती गई, प्रोपोर्शन फ्रॉम 4 लाख to 40 लाख.
0: No, when I am sitting there, see, I'll tell you.
1: Huh.
0: When I'm sitting there and I'm playing with the gadgets, see, when I was in London, we did that. There were like so many gadgets in the car. I enjoyed them, you know. Yeah, wo happiness.
1: Stimulant.
0: Yes.
1: Stimulant है, एक नवीनता है, एक कुछ exciting है, वो मैं कर रही हूँ, मैं explore कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. कितनी देर?
0: हाँ, उतनी देर तक,
1: है ना? अब उतनी ही देर में वो comfortable गाड़ी, कम्फर्ट, वो गाड़ी कम्फर्टेबल है और वो हमेशा कम्फर्टेबल रहेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड, ठीक है ना? लेकिन क्या वो गाड़ी हमेशा खुशी देगी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस इन द वर्ल्ड?
0: नहीं.
1: दिस इज व्हाट वी हैव टू से, कि वो ऑब्जेक्ट किस क्या चीज देने के लिए बना है.
0: वो कम्फर्ट दे रही है, वो बहुत अच्छा स्मूथ ड्राइव कर रही है, वो सब कुछ.
1: उसका एसी बहुत अच्छा है,
0: उसके हैं ये.
1: उसका एसी बहुत अच्छा है, उसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, उसका सब कुछ बहुत अच्छा है. ये चीजें मेरे शरीर को, मेरे कानों को, मेरे कम्फर्ट को, मेरे बैठने के पोस्चर को, मेरी बैक को, ये सब चीजों को बहुत कम्फर्टेबल है. आज कम्फर्टेबल है, कल होगा और हमेशा रहेगा. उसका कम्फर्ट देने का जो इंडेक्स है वो वेरी नहीं करने वाला है. लेकिन डिड द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कार से कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी इस कार के साथ हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा? नहीं. आपका कम्फर्ट लेवल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. जो फीचर उसने आपको सेल किया उस कार ने, उसने आपको कहा कि जब भी आप इस कार में बैठेंगे आपकी बैक का पोस्चर ठीक रहेगा, तो हमेशा रहेगा ना? हमेशा रहेगा, आप कभी भी उसमें बैठो. लेकिन क्या आप हमेशा खुश होंगे जब आप उस कार में बैठेंगे?
0: लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कंफर्टेबल हैं तो हम खुश हैं.
1: अभी आप ऑफिस से निकले, आपके अपने बॉस के साथ लड़ाई हो गई, अब आप जाके बैठ गए अपनी वो 40 लाख की गाड़ी में, खुश है या कम्फर्टेबल?
0: नहीं है खुश.
1: कम्फर्टेबल तो है ना, लेकिन
0: तो कम्फर्टेबल होते ही मैं थोड़ा सा मेरा थॉट प्रोसेस बदल सकता है. सी
1: कम्फर्ट तो इज नो डिनाइंग कि हमें फिजिकल कम्फर्ट चाहिए, लेकिन अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर हम एक ही को प्राप्त करने में लगे रहेंगे. हमने कहा, आपने ही अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इफ आई एम कम्फर्टेबल आई विल बी हैप्पी, बट एक्चुअली नॉट नेसेसरी. नॉट नेसेसरी। आज मैं 40 लाख की गाड़ी में भी बैठकर हो सके बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइफ में कि मैं एक्चुअली सुसाइड करने का सोच रही हूँ, या मैं अभी अभी साइकाइट्रिस्ट से ही आ रही हूँ उस गाड़ी के अंदर बैठ के।
0: सही बात है, वो तो एक्चुअली
1: आई मीन इट जस्ट द कार इज नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व माय इश्यूज इन लाइफ, द कार इज नॉट बीइंग एबल टू गिव मी
0: लेकिन
1: हैप्पीनेस,
0: उतनी देर तक तो दे रही है ना हैप्पीनेस,
1: कंफर्ट
0: थोड़ी
1: दे
0: देर।
1: रही है ना,
0: हाँ
1: कंफर्ट दे रही है। सी, अब हो सकता है कि मैं 1-2 लाख की या 3 लाख की गाड़ी
0: एक
1: में
0: सेकेंड,
1: हूं।
0: यहाँ ना अगर मैं एंगर में हूँ, आई एम वेरी एंग्री अपने, या मैं कुछ बहुत पेन में या हर्ट में आती हूँ और यहाँ मैं बैठ जाती हूँ, अब यहाँ पे ये कंफर्ट भी ना होता तब तो मैं और एंग्री हो जाती।
1: नो डिनाइंग
0: तो
1: दैट,
0: कम से कम एक नॉच कम तो किया उसने एंगर को
1: एक
0: मैं।
1: गुस्से को आपको ये कम नहीं करेगा,
0: हाँ मतलब
1: आपका
0: मेरे,
1: शरीर कंफर्टेबल हो जाएगा तो आपका एक जिस चीज का आपको ध्यान रखना होता है एक चीज आपके यहां से निकल जाएगी। लेट्स से एसी भी नहीं है तो बहुत पसीना है तो मैं उस बात से परेशान हूं, लेकिन चलो कम से कम कुर्सी तो ठीक है ना, ठीक है। अगर कुर्सी भी कंफर्टेबल नहीं होती तो एसी भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, लाइट्स भी इतनी ज्यादा, तो ऑब्स्टिकल्स जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुझे किसी ने कंफर्टेबल कुर्सी दे दी तो मेरा वो एक
0: ऑब्स्टिकल कम
1: ऑब्जेक्ट
0: हो।
1: जिसके बारे में मैं डिस्टर्ब हो रही हूं वो मेरी लिस्ट से बाहर चला गया। लेकिन कुर्सी मुझे खुशी दे देगी
0: ये नहीं हो
1: या
0: सकता,
1: मुझको
0: मेरा
1: ताकत दे
0: जो
1: देगी
0: बेसिक वो था वो नहीं कर
1: वो
0: पाती
1: नहीं
0: हूँ।
1: करेगी। हाँ ये है कि कंफर्टेबल कुर्सी होने की वजह से मैं उसके बारे में एटलीस्ट निश्चिंत हो गई हूँ, नहीं तो मैं कुर्सी पर भी बैठ के बोलती रहती बैठा ही
0: बिल्कुल
1: नहीं जा रहा, इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है। लेकिन कुर्सी खुशी नहीं दे रही है, खुशी नहीं दे रही। अगर ये मुझे खुशी दे देती तो मैं अपने सारे दर्द भूल जाऊं ना इस पर बैठते। आई एम स्टिल इन पेन, आई कुड बी इन एंग्जाइटी, आई कुड बी इन एंगर। कुर्सी पर बैठने से आपका गुस्सा कम नहीं हो सकता। हाँ एक और बात जिसके लिए आप गुस्सा करने वाले
0: कि वो
1: थे
0: एक्स्ट्रा गुस्सा नहीं आने देता,
1: वो ठीक
0: और
1: है।
0: दूसरा एक और भी है कि थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आते ही, आई हैव सीन दैट, मतलब ज्यादातर लोगों के सामने, कि अगर वो बहुत गुस्से में है कुछ है, अपनी कंफर्टेबल जगह पे आते ही एक बार को तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, मतलब ले सकते हैं
1: इफ दे
0: वो।
1: डू दैट दैट्स फाइन,
0: हाँ
1: बट फिर भी गुस्से का,
0: हाँ पूरा साइकिल तो चलता
1: और जो
0: रहता
1: ये ऑब्जेक्ट्स जो
0: है
1: हम
0: एक्चुअली, हम भूल
1: खरीदते
0: ही
1: हैं
0: जाते हैं उसके बाद, तो
1: उस टाइम
0: जब
1: हमें
0: इतनी
1: याद भी नहीं
0: मेजर
1: रहता।
0: प्रॉब्लम चल रही होती है। यस ऑफ कोर्स, आई थिंक यू ऑल एग्री कि जब हमारे सामने कोई क्राइसिस आ जाता है तब हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने गैजेट्स खरीदे हैं ये क्या कर रहे
1: आपने जब पहले दिन अगर बड़ी गाड़ी खरीदी तो
0: हैं।
1: एवरीवन इन द हाउस इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड, बट फॉर हाउ लॉन्ग? 8 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द हाउस। जैसे बाकी चीजें पड़ी हुई हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। फिर वही जीवन है, झगड़े, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही डिस्कशंस। फिर हम कहें कौन सी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लें। सी व्हाट इज हैपनिंग, मेरी जीवन जैसे आपने शुरू में बोला वो यो-यो की तरह जो चल रही है, बहुत उतार चढ़ाव है। अब मुझे कुछ कुछ ऐसा करना है हर थोड़े दिन बाद जिससे आई गो टू द पीक।
0: यस यू नो बिकॉज आई, यस
1: आई
0: बिकॉज
1: अग्रीड कि माई लाइफ इज गोइंग लाइक दिस, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स। अब डाउन्स किस सिचुएशन में आ रहे हैं, रिलेशनशिप में आती हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग अलोंग विद पीपल, कहीं ना कहीं मेरे संस्कार स्वभाव टक्कर में आ रहे हैं, मेरा दर्द है। अब मैं क्या करूं ऐसा जीवन में जिससे मैं अप वाली फीलिंग क्रिएट कर
0: क्योंकि
1: सकूं?
0: जैसे हम ज्यादा देर लो में होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है,
1: नाउ
0: फिर लगता है कि उससे बाहर निकालने के लिए कुछ चाहिए।
1: अब अगर मेरी फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स है और कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिससैटिस्फाइड है हम एक दूसरे से, ये चलो आज मैं एक चीज खरीद के लाती हूँ घर के लिए, एक प्लाज्मा ले लिया आज, ठीक है। सी द होल एनवायरमेंट इन द हाउस
0: चेंजेस,
1: चेंजेस,
0: यस मेरी इश्यू
1: सारे,
0: दैट अगेन वो योयो का वो ऊपर वाला आ गया।
1: और सब एक दूसरे से आज बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं, सब कहते हैं आज तो ट्रीट होनी चाहिए,
0: लेट्स थ्रो अ
1: डिनर।
0: डिनर पार्टी, यू नो
1: ना
0: अगेन कई रिलेशनशिप्स में देखा है कई कपल्स में, कि जब ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है सो दे डू कि फ्रेंड्स के साथ एक डिनर कर लेते
1: यस
0: हैं।
1: यस, सो व्हाई आर वी डूइंग ऑल दीज थिंग्स? तो जैसे हम ये लाते हैं घर के अंदर तो एक नवीनता आती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, एक कुछ हमारी वो फीलिंग कि हमने अचीव किया वो बढ़ता है, और सडनली सब लोगों का अटेंशन किस चीज पर चला जाता है, उस ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट आने पर और उसके एक्साइटमेंट पे, तो पूरा एनर्जी लेवल घर में क्या हो जाता है,
0: बहुत अच्छा।
1: इट्स वेरी हाई, एवरीवन इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज टॉकिंग वेरी नाइसली। कल झगड़ा कर रहे थे, कल आए तो आई वॉज कंप्लेनिंग टू द हस्बैंड, हस्बैंड वॉज कंप्लेनिंग टू द वाइफ, बच्चे कह रहे हैं आपके पास तो हमारे लिए ये। लेकिन आज घर का वातावरण कैसा है, बहुत अच्छा है। 2-3 दिन वो प्लाज्मा का इफेक्ट रहेगा पूरे घर पे. फिर फाइनली कितने दिन कितने दिन
0: प्लाज्मा एक तरह फिर वो लड़ाइयां फिर से
1: फिर नॉर्मल आ गया. इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द वॉल. फिर उसके बाद मेरी वही वाली चल रही है साड़ी. फिर मैं थोड़े दिन के बाद अब मैं क्या नया खरीदूं.
0: बट दिस इज व्हाट लाइफ इज. सी व्हाट इज द
1: यो-यो इज व्हाट लाइफ इज.
0: नो बट दैट्स व्हाट वी से यू नो कि कभी खुशी है मतलब जिंदगी में यही तो है कि अब हमेशा तो खुशी नहीं रह सकती इन द सेंस कि हमेशा ही तो कुछ नहीं आप अचीव कर सकते. तो जब आप अचीव करो जब आपको वो मिले तब आप यू नो यू शुड एंजॉय इट. एंजॉय द मोमेंट्स एज मच एज यू कैन.
1: नो लिव
0: द मोमेंट्स यू नो दीज आर द
1: ऑल. नो डिनाइंग नो डिनाइंग लेकिन फिर अंडरस्टैंडिंग कि कितनी बार चीजें खरीदते रहोगे. कितने बार साल में नई गाड़ियां खरीदोगे. कितने बार नए टेलीविजन नए मोबाइल. नया मोबाइल आया नहीं मार्केट में तो I want to buy the new mobile.
0: And, you know, now to, another thing which has started happening to Sachimani is, I want it. Yeah. People have just, you know, the moment they see it.
1: Now, ye jo aapne expression create kiya, I want it. This is an expression of so much, you
0: need,
1: know.
0: Need, yes.
1: So
0: yes.
1: much stress. Till I get it.
0: To,
1: jab tak mujhe nahi mila, meri
0: you know, I had
1: state of mind
0: an altercation with my daughter, actually. I don't want to talk about it, but then that happened. She wanted different colored lenses, you know. And why? Because she had seen in the ad, and this was like, I want them. I need them.
1: You know? No, it's not I need them. I want them.
0: I want them, yeah. Yes. You know, because what for? Everyone else has them.
1: ठीक है. तो फिर उसके लिए जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो चिड़चिड़ापन गुस्सा हो सकता है घर में झगड़ा भी. फिर सपोज वो आ गया तो वेरी हैप्पी. कितने दिन
0: गुम अगले दिन गुम जाते हो जी.
1: दो दिन के बाद कोई नया ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम. सो वी हैव टू बी नॉट सेइंग दैट वी डोंट वांट दीज ऑब्जेक्ट्स. भले घर में जितना खरीदना है खरीदते जाएं लेकिन कई बार तो इन चीजों के पीछे ही घर में स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है कि मेरे घर में ये नहीं है उनके घर में है या हमारे पास ये होना चाहिए. तो ला तो खुशी के लिए रहे हैं लेकिन क्रिएट क्या कर रहे हैं इन द प्रोसेस. जब वो आ जाएगा बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें हमें क्या देती हैं. इट्स बी वेरी क्लियर. ये हमें आराम देती हैं. आराम देने के लिए बनी है. शरीर को आराम देने के लिए बनी है. मन को आराम देने के लिए ये नहीं बनी थी. और ये शरीर को आराम देने के साधन इकट्ठे करने में कहीं ना कहीं हम मन को तंग कर रहे हैं सारा दिन. यू नो आई क्रिएट पेन जेलसी कॉम्पिटिशन एवरीथिंग जस्ट सो दैट आई acquire these objects. तो ये तो comfortable हो गया. That's one part of the story. इसका क्या हाल है? और फिर इसको तो अगले दिन ये तो comfortable रहेगा. जितना दिन कुर्सी पर बैठेगा comfortable रहेगा. इसके comfort का ध्यान रखने का क्या? तो जितना ध्यान शरीर के comfort का रखते हैं उतना ही ध्यान इसीलिए हमने कहा साथ साथ मन को comfortable करने का क्या.
0: तो हमारी ये इच्छा रखना कि मुझे ये चाहिए very true. One thing which you've said, which we need to actually think about, कि हम जो चीजें चाह रहे हैं वो हमें क्या देंगी पहले इस पे हमें क्लैरिटी रहे. यू नो बिकॉज दिस इज अंडरलाइन.
1: यू नो जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ये हमारे इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से
0: समझ
1: यूज करती है. दे आर वेरी गुड साइकाइट्रिस्ट आई फील. जो भी एड बनती है वो क्या दिखाती है कि ये जब आप ऑब्जेक्ट खरीदते हैं आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत खुश हो जाएगी. आपके बच्चे आपके बहुत खुश हो जाएंगे. आपका रूठा हुआ हस्बैंड आपसे खुश हो जाएगा. नाउ दिस प्लेज विद माय साइकोलॉजी एंड आई से ओके इफ आई आल्सो गेट दिस मेरे भी ये जो सारे लोग हैं ना
0: ये
1: खुश हो जाएंगे. तो एक चीज है कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों को जो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं. वन इज फॉर फिजिकल कम्फर्ट वेरी गुड बट रिमेम्बरिंग खुशी नहीं देगी. दूसरा है लोगों को खुश करने के लिए हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि यू नो अगर मैंने ये खरीदा तो मेरा परिवार खुश हो जाएगा. एक बार रुक कर चेक करना पड़ेगा उनका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या आज का. बच्चों का कितने दर्द में है वो बच्चे आज. नोबडी इज लुकिंग एट दैट. हम रोज शाम को घर आते आते उनके लिए कोई एक प्ले स्टेशन कोई ये वीडियो गेम कोई ये ले आते हैं. सोचते हैं कि ये दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे.
0: एक्चुअली वो थोड़ी देर के लिए वो
1: हो जाते हैं. एग्जैक्टली जैसे हम अगर मैं खाली हाथ आ रही हूँ तो उन्होंने तो गुस्सा करना आप आए इतने लेट मुझे आज मेरे स्कूल में वो था प्रोग्राम था आप आए नहीं व्हाटएवर. सो आई गेट वन प्लेस्टेशन व्हाइल कमिंग फ्रॉम वर्क. उनको दे दिया. वो भूल गए उस बात को. वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए उसको खेला. हमें लगा हमने उनको खुशी दी. हमने उनको थोड़ी देर के लिए एक स्टिमुलेंट दिया. उल्टा हमने उनको और भी उस प्रोसेस से हटा दिया कि खुशी कैसे क्रिएट करनी है. हमने उनको एडिक्शंस की तरफ लेकर गए कि जितनी ये चीजें आपके पास आती जाएंगी आपको खुशी मिलेगी। फिर कल हम बाद में मुड़कर कहते हैं इनकी तो डिमांड्स ही नहीं खत्म होती, ये रोज नई नई चीजें मांगते हैं, सिखाया हमने ही था कि ये कैसे लाना। सो वन इज टू गिव हैप्पीनेस टू फैमिली। डिजायर बहुत प्योर है, हमें ये याद रखना पड़ेगा। इट्स नॉट दैट वी आर बैड और व्हाटएवर, हमारी इंटेंशन बहुत प्योर है, लेकिन तरीका समवेयर
0: आई
1: हम
0: थिंक
1: क्या
0: बिकॉज
1: यूज कर
0: हमने
1: रहे
0: खुद
1: हैं।
0: के लिए भी तो यही रखा ना,
1: ट्रू
0: सी समवेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो एक्चुअली हम गलत नहीं कर रहे, क्योंकि हमने यही समझा कि खुद को खुशी देने के लिए भी तो मैं साड़ी खरीद के लाऊंगी, या मैं एक नई ड्रेस खरीद के, शॉपिंग में बहुत दुखी हूँ तो आई जस्ट गो एंड बाय समथिंग गुड, यू नो लाइक, एंड आई बॉट समथिंग गुड और आई विल गो
1: तो
0: आउट।
1: एक डेफिनेटली ये जो बाइंग समथिंग गुड की चीज है, ये हमें थोड़ी देर के लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट करती है, लेकिन साड़ी नहीं क्रिएट करती है। मैं क्रिएट करता हूं एट द थॉट ऑफ हैविंग बॉट दैट साड़ी। आपने अभी इतनी सुंदर ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन वो साड़ी के पास फीलिंग्स थोड़ी हैं आपको देने के लिए। यू आर फीलिंग गुड,
0: बिकॉज़ आई ओन दिस और व्हाट।
1: यू अचीव्ड इट, आपने कुछ खरीदा, आपको वो अच्छा लगा, यू वर एबल टू बाय इट, आपने लिया। ये एक पहले थॉट क्रिएट करती है। फिर आपको चार लोग जरूर मिलेंगे जो बोलेंगे न्यू साड़ी कहाँ से ली, बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको और वो
0: हाँ मेरे
1: खुशी
0: मतलब
1: मिलती
0: पूरी
1: है।
0: वैल्यू मिल गई, यू नो, यस
1: साड़ी इतनी देर में कुछ भी नहीं कर रही है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, जिसके पास फीलिंग्स ही नहीं है वो मुझे फीलिंग कैसे दे सकता है। अब चार लोगों के बाद एक पांचवें इंसान ने आकर अगर कह दिया कनुप्रिया दिस कलर आई डोंट नो वेदर इट्स लुकिंग वेरी गुड ऑन यू,
0: आई डोंट लाइक हिम देन,
1: यू डोंट लाइक हिम एंड यू डाउट द साड़ी ऑल्सो
0: यस कि
1: आफ्टर
0: ओ
1: दैट।
0: गॉड इज इट राइट और नॉट।
1: सी साड़ी वही की वही है, लेकिन फीलिंग्स चेंज हो गई। तो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ, फर्स्ट कि मैंने साड़ी खरीदी या गाड़ी खरीदी या नया मोबाइल जो लॉन्च हुआ है वो खरीदा, उसकी अचीवमेंट की थॉट जो मैं क्रिएट करती, एंड ऑपोजिट ऑफ दैट मैं नहीं खरीद पाती अगर,
0: तो वो भी
1: तो
0: मैं ही
1: उसकी
0: क्रिएट करती हूँ।
1: फेलियर की थॉट जो मैं क्रिएट करती वो मुझे दुख देता है। मैं नहीं खरीद पा रही हूँ, मेरे आसपास के सब लोग ये खरीद पा रहे हैं। सपोज एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ 20,000 का है, लेकिन मेरा जो मोबाइल है वो तो वही पुराना वाला है, उसमें वो गाने नहीं बजते या जो भी फीचर्स है नहीं है, सबके पास दूसरा वाला है। मोबाइल नहीं खुशी दे रहा, लेकिन ये फीलिंग सबके पास है मेरे पास नहीं है। फिर जिस दिन मैंने खरीद लिया, जो सबके पास है वो
0: वो
1: मेरे
0: मेरे
1: पास,
0: पास नहीं है,
1: या मेरे पास जो है
0: वो
1: वो
0: किसी के पास
1: औरों
0: नहीं
1: से
0: है।
1: भी ज्यादा अच्छा है। एंड देन शोइंग इट टू एवरी वन, नॉट मे बी टू एवरी वन बट एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ, कि मेरे पास वो है, ये सब फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं। मोबाइल क्या कर रहा है, उसके पास पावर कहाँ है फीलिंग क्रिएट करने की, लेकिन मैं क्योंकि वो मोबाइल खरीदने के बाद वो फीलिंग क्रिएट कर पाती हूँ, तो आई थिंक कि मोबाइल मुझे खुशी दे रहा है। मोबाइल कैसे देगा, उसके
0: सो
1: पास तो
0: वॉट,
1: है नहीं।
0: हाँ एक्चुअली वेयर वी हैव रीच्ड दिस कि मैंने ये समझा था कि गाड़ी के कारण मुझे खुशी मिल रही है, तो गाड़ी क्योंकि चैतन्य तो नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस बींग नहीं है, मटीरियल है, वो कुछ भी नहीं दे सकती मुझे।
1: फिजिकल कंफर्ट,
0: यस फिजिकल कंफर्ट दे सकती है जरूर, लेकिन खुशी जो है वो मैं खुद क्रिएट करती हूँ।
1: या
0: अनहैप्पीनेस है वो भी मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ।
1: एब्सोल्युटली ना। अभी सपोज आपके पास इतनी सुंदर ब्लू साड़ी है, मैं तो नहीं ले सकती। लेट्स से मैं व्हाइट साड़ी पहना है, मुझे तो अलाउड नहीं है ब्लू साड़ी पहनना। अब ये सोच सोच के मैं अंदर परेशान होती रहूं। सो लकी कनुप्रिया तो ब्लू भी पहन सकते हैं, रेड भी पहन सकते हैं, आई एम वेयरिंग ओनली व्हाइट, तो ये व्हाइट साड़ी थोड़ी दुख दे रही है मेरे को बैठकर। लेकिन मैं जो सोच रही हूँ उसको, आपको देखकर, अपने को देखकर, औरों को, मैं जो सोच रही हूँ आपको देखकर, आपने जो जो अचीव किया मैं नहीं अचीव कर पाई, तो दिस इज क्रिएटिंग माई दुख। देन आई गेट इन टू दिस कॉम्पिटिशन रेस कि इनके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो मेरे पास आएगा तब मेरे पास खुशी आएगी। नो, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा, मैं क्रिएट कर रही हूँ। हाँ ये है कि मैं डिपेंडेंट हूँ कि जब वो ऑब्जेक्ट आएगा तब मैं वो अच्छी वाली थॉट्स क्रिएट
0: क्रिएट
1: करूंगी,
0: करोगे
1: लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा वो वाली थॉट्स,
0: तो मैं अभी भी क्रिएट कर सकती हूँ।
1: अभी भी क्रिएट कर सकती हूँ। एग्जैक्टली
0: ओके बट हाउ, आई डोंट हैव एनीथिंग टू क्रिएट समथिंग, यू नो।
1: सो यू ऑब्जेक्ट डजंट क्रिएट द थॉट्स, हियर हियर
0: नो
1: इज द
0: बट ऑब्जेक्ट
1: मोबाइल।
0: हैज टू बी देयर ना, सी साड़ी हैज टू बी देयर
1: हाँ
0: सो दैट आई क्रिएट द थॉट।
1: लेकिन साड़ी पहनने के बाद वही हमने अभी देखा, चार लोगों ने बोला बहुत अच्छी, तो आपने वो थॉट क्रिएट की, एक ने कहा नॉट वेरी नाइस, आपकी थॉट चेंज हो गई, साड़ी तो वही है। यू आर द क्रिएटर ऑफ द थॉट, आप क्रिएट कर रहे हो, आपके पास पावर है टू चूज कौन सी थॉट क्रिएट करनी है, साड़ी वही है।
0: नहीं तो साड़ी हो या ना हो, आई कैन क्रिएट अ थॉट कि आई एम हैप्पी, मतलब लाइक साड़ी इज देयर, ऐसे तो नहीं हो सकता ना।
1: हाँ
0: सी ऑब्जेक्ट है, आपने कहा
1: साड़ी इज देयर, ये थॉट आप नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन ये तो थॉट क्रिएट कर सकते हो कि माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साड़ी, माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हैविंग अचीव्ड बाइंग दैट ऑब्जेक्ट, माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट ऑल आई हैव गैदर्ड, माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट पीपल थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आई हैव अचीव्ड।
0: बट यहां से शिवानी, हैप्पीनेस इज नॉट अ थॉट, इट्स अ फीलिंग।
1: या सो जो थॉट क्रिएट होगी फिर ही तो फीलिंग जनरेट होगी ना उसके बाद।
0: दिस इज वी नीड टू टॉक मोर अबाउट इट बिकॉज व्हाटएवर वी हैव टॉक्ड टुडे इज एक्चुअली अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी क्रिएट नहीं करता है। वो कंफर्ट दे सकता है, वो मुझे यू नो लाइक जो जो उसको देने के लिए जो बना है वो दे सकता है, हैप्पीनेस या कोई भी फीलिंग जो है वो खुद नहीं क्रिएट कर सकता,
1: उसके पास है नहीं।
0: हाँ ऑफ कोर्स दिस इज द वी ऑल अंडरस्टैंड,
1: आई नो वी ऑल अंडरस्टैंड,
0: बट ये है कि वो खुशी को अभी तक हम थॉट है ये नहीं मान रहे थे, हमें फीलिंग है, लेकिन थॉट के बाद फीलिंग कैसे आती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और साथ ही कि वो क्रिएट कैसे करना है जो है ही नहीं, इन द सेंस कि आई थिंक वी नीड टू रियली टॉक मोर अबाउट इट, बट थैंक यू सो मच, आज एक और क्लैरिफिकेशन हुआ कि जिन मटेरियलिस्टिक चीजों को हम सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए, और जो वो मुझे इतनी खुशी दे रहे थे, तो ये क्लियर रखना है वो नहीं दे रहे हैं, मैं खुद अपने आप को दे रहा था, यू नो समवेयर आई वॉज गिविंग इट टू माई सेल्फ। थैंक यू सो मच शांति, बहुत लिबरेटेड फील करते हैं। इनफैक्ट अभी तो मैं फील कर रही हूँ कि वो कोई नहीं दे रहा था, ना तो ऑब्जेक्ट और ना ही कोई सिचुएशन भी, अगर हम देखें आज पूरी बातचीत में, ना मेरी गाड़ी ने मुझे दी, दे नहीं सकता, दे वो कंफर्ट सकता है, मोबाइल बहुत अच्छे फीचर्स के साथ मेरा कंफर्टेबल कर देता है बात करना, या कोई भी और मटेरियलिस्टिक चीज जो है मैंने क्रिएट किया उसे खरीदते ही कि मैं खुश हो गई। अगर वो नहीं खरीद पाई तो क्या मैं हर बार यही क्रिएट करूंगी कि मैं खुश नहीं हुई, या कुछ और चीज है जो मैं क्रिएट कर सकती हूँ, अगर मैं उसे नहीं भी खरीद पाई तो मैं कैसे वो थॉट क्रिएट कर सकती हूँ, और वो तो सिर्फ थॉट ही रह गया, वो फीलिंग का बदल बनता है, क्योंकि अभी तक मेरे लिए हैप्पीनेस जो था वो एक फीलिंग है। सो हाउ माई थॉट क्रिएट्स माई फीलिंग, ये एक अलग चर्चा का विषय है जिस पर हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन अभी आज की इस बात से जुड़ी कोई आपके मन में बात उठ रही है प्लीज फील फ्री, आप हमें जरूर फोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें। हमारे फोन नंबर्स हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555। हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में खुशी के इंडेक्स को देखने के लिए, जांचने के लिए, जहां हमने लो गए वहां हमें हाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा लो हो गया तो हमें बहुत मुश्किल होती है, इसीलिए उसे स्टेबिलिटी पे कैसे लाना है ये प्रयास चलता रहेगा। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हो अमचा रेडियो पुणेरी। आहो ऐकलत का, हो आमचा रेडियो पुणेरी, हो आमचा रेडियो पुणेरी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। जिंदगी में कितने मुकामों से हम गुजरते हैं। कहा जाता है कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम कितने ही कलाकारों का जो पार्ट है वो अदा करते हैं, कितने ही रोल्स निभाते हैं। कभी मैं एक माँ होती हूँ, कभी मैं एक प्रोफेशनल हूँ, कभी एक एंकर हूँ जब आपसे बात कर रही हूँ, या फिर कभी कभी मैं बहुत कुछ और हो जाती हूँ। लेकिन क्या कभी मैंने सोचा कि मैं हूँ कौन? कई बार ये सवाल सर उठाता है और जब ये सवाल ज्यादा सर उठाने लगे तो उसका जवाब तलाशना जरूरी हो जाता है। हु एम आई, मैं हूं कौन? आज इस कड़ी में यही तलाशने की कोशिश करते हैं और इस तलाश में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका हार्दिक स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, कई सारे रोल हम हर रोज अदा करते हैं कि और उसको बखूबी निभाते भी हैं। बड़ी जल्दी हम चेंज भी हो जाते हैं कि मैं एक माँ हूं तो बहुत सॉफ्ट बनी रहूंगी, उसके बाद एक टीचर हूं तो मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगी, एकदम से बाहर निकलूंगी तो कुछ और हो जाऊंगी। लेकिन एक वक्त आता है कि मन पूछता है,
1: कई बार ऐसा होता है ना, लेकिन सब कुछ करते हुए, सारे रोल निभाते हुए, कहीं ना कहीं मैं कौन हूं इन सब में से,
0: ये भी पूछता है।
1: यू नो रोल्स। जैसे आपने कहा, हम कलाकार हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो रोल प्ले करने के बाद तो कलाकार को ये पता ना कि मैं कौन हूं जिसने ये रोल प्ले किया। लेकिन हम आजकल रोल प्ले करते करते करते उस रोल के अंदर इतना इंटैंगल हो जाते हैं, इतना फंस जाते हैं कि रोल को ही मैं समझना शुरू कर देते हैं,
0: एक्चुअली ये अच्छे एक्टर्स के साथ कहा भी जाता है कि आप अगर एक फिल्म कर रहे हैं तो आप मानने लगते हैं,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन वो कहीं ना
1: बट यू
0: कहीं
1: गेट इन टू द
0: साइकोलॉजिकल
1: रोल।
0: प्रॉब्लम है।
1: दे से यू गेट इन टू द रोल, यू फील द रोल, विच इज वेरी गुड कि आप जो भी रोल इस टाइम प्ले कर रहे हैं, जैसे आपने कहा एक एंकर का, गेट इन टू इट कम्प्लीटली, फील द रोल। बट लेकिन जब आप उससे बाहर निकलेंगे,
0: आई शुड रिमेम्बर हु एम आई,
1: यस, जब आप घर पहुंचते हैं, देन यू कैन बिहेव लाइक एन एंकर, तब आप एक अलग रोल अडॉप्ट करते हैं। लेकिन हम इतने सारे रोल्स, आप देखिए जो एक्टर्स होते हैं मूवीज में, वो लोग भी प्रायोरिटाइज करते हैं कि एक टाइम पे हम कितने रोल करेंगे, राइट? हम एक टाइम पे दो या तीन मूवीज ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रोल वेरिएशन कहीं ना कहीं मेरी अपनी इंटरनल स्टेज पर एक इफेक्ट डालता है। लेकिन हम बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं, एंड इसमें से कोई भी रोल ऐसा नहीं है जो मैं आई कैन विदड्रॉ।
0: एक्चुअली अगर हम जिंदगी में
1: आई
0: देखें तो
1: कांट,
0: कोई ऐसा रोल नहीं है जो मुझे अदा पूरी शिद्दत के साथ नहीं करना
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, जितने रोल्स मुझे प्ले करने वो बढ़ते जाएंगे। आप पहले सिर्फ एक बेटी थी किसी की, एक बहन थी, फिर आप एक पत्नी बनी, फिर आप एक माँ बनी, फिर आप किसी की चाची बनी, किसी की बुआ बनी, अब आप किसी की नानी बनेंगी, किसी की दादी बनेंगी। तो द रोल्स आर ओनली गोइंग टू गो ऑन इंक्रीजिंग, एंड इतने रोल्स प्ले करते करते वी जस्ट फॉरगेट हु एम आई जो ये रोल प्ले कर रहा है। तो दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट इज सेल्फ अवेयरनेस, कि जब सब कुछ करते हुए एम आई अवेयर कि ये कौन है जो ये रोल प्ले कर रहा है।
0: एक बात ये बताइए कि हम इस पूरी जर्नी की बात कर रहे हैं सिस्टर शिवानी की, कहाँ से शुरू होके, जब छोटे हैं तो शायद वो अवेयरनेस रहे भी कि हु एम आई, लेकिन जहां जब इतने रोल्स बढ़ते जाते हैं, इंटरमिंगल होते जाते हैं वो सारे रोल्स भी अपने आप में, ये मुझे याद रख पाना जरूरी है। वन इज लाइक वाई आई नीड टू नो, मुझे क्यों चाहिए कि मैं कौन हूं, ये जानना मेरे लिए क्यों इतना जरूरी है। जब मैं इतने सारे रोल्स अदा कर रही हूँ, बखूबी निभा रही हूँ, उन्हें इंजॉय भी कर रही हूँ, तो क्यों जानना जरूरी है मेरे लिए?
1: क्या हम सच में उनको एंजॉय कर रहे हैं? लेकिन आज
0: हाँ, क्योंकि सवाल उठते हैं,
1: क्या हम सचमुच में उनको बखूबी निभा रहे हैं? क्योंकि नहीं तो अगर हम सचमुच में उनको उतनी सुंदर रीति निभा रहे होते और एंजॉय कर रहे होते, तो देन टेंशन, एंग्जाइटी, वर्ड्स वुड नॉट एग्जिस्ट। यू नो कहीं ना कहीं हम उनमें एंटैंगल होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं अपने आप को भूलते जा रहे हैं। क्यों ये जानना इम्पोर्टेंट है कि मैं कौन हूं? अगर एक एक्टर को ये नहीं पता होगा कि मेरी शक्ति क्या है, मेरा पोटेंशियल क्या है, मेरी इनर क्वालिटीज क्या है, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, अपनी विशेषता को भी पहचानना, कहीं ना कहीं कोई एक आधी कमजोरी है उसको भी पहचानना, तो अगर सब कुछ जानते हुए फिर मैं रोल प्ले करूं, तो शायद मैं वो रोल बहुत अच्छी तरह से प्ले कर
0: बहुत
1: सकूंगी।
0: अच्छी आपने बात कही, क्योंकि एक्चुअली इससे क्लियर हो जाता है, क्योंकि मैं रोल तो निभा रही हूँ लेकिन मैं नाराज हो जाती हूँ कि मुझसे क्या चाहते हो,
1: बिल्कुल,
0: तो मैं वही दे सकती हूँ जो मुझ में
1: जो मेरे
0: पोटेंशियल
1: पास
0: होगा।
1: है। और ज्यादातर अभी हम रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन दूसरा मुझसे क्या चाहता है। यू नो अ गुड मदर, अ गुड वाइफ, डिपेंडिंग ऑन अगर मेरे बच्चे कहेंगे आई एम अ गुड मदर, देन आई एम अ गुड मदर. यू सी, अगर मेरे हस्बैंड कहते हैं आई एम अ गुड वाइफ, देन आई एम अ गुड वाइफ. तो आई एम ट्राइंग टू बी जो उनके मन में एक सही, एक आइडियल पत्नी का जो एक इमेज है, मैं उस इमेज की तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ. मैं शायद वो नहीं हूँ और मैं कुछ बनने की और कोशिश कर रही हूँ. देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट. यू नो, आई एम ट्राइंग टू बी वॉट पीपल वॉन्ट मी टू बी बिकॉज आई वॉन्ट टू प्लीज देम.
0: एक्चुअली और उनकी डेफिनेशन है, यू नो, हमने डिफाइन किया हुआ है कि एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ, एक अच्छी स्त्री या एक अच्छा ह्यूमन भी ऐसा डिफाइंड है. उसके ऊपर अगर आप खड़े उतर रहे हैं तो आप अच्छे हैं. तो उस प्रोसेस में ही हमारी पूरी जिंदगी.
1: तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप पति के सामने एक कुछ और पर्सनालिटी आएगी, क्योंकि वो पर्सनालिटी उनको चाहिए. मदर इन लॉ के सामने एक और पर्सनालिटी आएगी क्योंकि वो उनको चाहिए. प्रोफेशन में जाएंगे वहां कोई और पर्सनालिटी आएगी. अब ये हर फैसेट पे, हर एस्पेक्ट पे अगर पर्सनालिटी चेंज होती गई इन द प्रोसेस, ओरिजिनल पर्सनालिटी कौन सी थी?
0: वो एक्चुअली घूम गई,
1: इट्स लॉस्ट. एंड अब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार अपने आप को इतना परिवर्तन करते जाते हैं कि अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी कहीं ना कहीं गुम हो जाती है. और मेन चीज ये है कि इतना कोशिश करने के बावजूद सबको खुश नहीं कर पाते.
0: हाँ बिल्कुल. लेकिन यहाँ एक और मैं बात ये जानना चाहूंगी कि अडेप्टेबिलिटी तो जरूरी है.
1: हाँ.
0: क्योंकि हर रोल जो है वो अलग है.
1: अडेप्टेबिलिटी लेकिन नॉट, यू नो, कि अपनी पर्सनालिटी को जानते हुए उसके अनुसार अडेप्टेबिलिटी. यू नो, अगर हमें अपना पोटेंशियल पता होगा, अभी हम एडजस्ट करते भी तो हैं तो घुट घुट के करते हैं. मुझे कितना सहन करना पड़ रहा है, मुझे दैट्स बिकॉज आई डोंट नो माई पोटेंशियल. अगर मुझे अपना पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ पता हो, तो फिर वो सहन करना एक बोझ नहीं लगेगा, वो एक नेचुरल अडेप्टेबिलिटी है. जैसे पानी बहते बहते एडजस्ट अकॉर्डिंग टू रास्ते में जो आता है, अकॉर्डिंगली वी आर लाइक अ फ्लोइंग रिवर. रास्ते में जो आएगा, आई विल जस्ट फाइंड माई पाथ अकॉर्डिंग टू दैट.
0: एक्चुअली ये कहना कितना आसान लगता है लेकिन जब करते हैं तो बहुत मुश्किल है. सबसे बड़ी बात सिस्टर शिवानी, जब हम हमारे पास ये सवाल का जवाब तो आया कि क्यों जरूरी है ये जानना कि हु एम आई, लेकिन हम हर बार अवेयरनेस की बात करते हैं. वी बीन टॉकिंग अबाउट इट. हमारा प्रोग्राम ही अवेकनिंग है, जागरूक करने की बात है, जागने की. कहाँ से जागेंगे, कौन सी सुप्त अवस्था में है हम, यू नो, और कैसे जागेंगे?
1: एंड ये है क्या आखिर अवेयरनेस? बिकॉज ये एक ऐसा शब्द हो गया है विच इज रियली कॉट ऑन. एवरीबडी सेज सेल्फ अवेयरनेस, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस क्या है? एक छोटी सी बात है. एक शिष्य गुरु जी के पास गए और गुरु जी उस दिन मौन में बैठे थे. तो उस बहुत चात्रक था शिष्य. तो शिष्य ने कहा, व्हाट इज अवेयरनेस, आप प्लीज मुझे इसका आंसर बता दो तो शायद मेरी जीवन बिल्कुल, यू नो, मैं मुक्ति की तौर या एनलाइटनमेंट की ओर चला जाऊंगा. तो गुरु जी मौन में थे उस दिन, तो उन्होंने एक कागज लेकर उस पर लिखा अवेयरनेस और उसे दे दिया. तो वो भागता हुआ चला गया. थोड़ी देर के बाद वापस आया. उसने कहा, अवेयरनेस तो मुझे पता है लेकिन अवेयरनेस का मतलब क्या है? तो उन्होंने फिर से कागज लिया और लिखा अवेयरनेस इज अवेयरनेस और फिर उसे वापस दिया. वो फिर भागते हुए चला गया. हाँ, मुझे आंसर मिल गया. लेकिन थोड़ी देर के बाद जाके रियलाइज किया, नो आई हैवंट अंडरस्टूड. एंड वापस आए, फिर कहा, बट एक्चुअली व्हाट इज अवेयरनेस? तो उन्होंने फिर कागज लिया और उसमें लिखा अवेयरनेस मीन्स अवेयरनेस मीन्स अवेयरनेस.
0: ओके, नाउ लाइक
1: मीनिंग,
0: मेरे सवाल का सेम थिंग.
1: मीनिंग के इसका कोई मीनिंग नहीं है. ये होने की बात है. इट इज नॉट अबाउट व्हाट डज अवेयरनेस मीन, इट इज अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट. यू नो, अवेयरनेस सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं, लेकिन अवेयरनेस अर्थात एक जागृता, एक पहचान, एक भान होना चाहिए कि सारा दिन मेरे अंदर क्या चल रहा है. मुझे उसकी जागृता होनी चाहिए. ये नहीं कि मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है. जैसे कि हम कहते हैं मुझे पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है. मुझे पेपर पढ़ना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे मालूम तो होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है. हम अपने बच्चों को कहते हैं मुझे आकर अपनी सारी बात बताओ, मुझे पता तो होना चाहिए स्कूल में क्या हो रहा है. अवेयरनेस, आई नीड टू बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, व्हिच इज फाइन. सो वी आर अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, वी आर अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन अदर पीपल्स लाइफ, वी आर ऑल्सो अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन आर लाइफ. मेरे जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में भी पता है, लेकिन मेरे अंदर क्या हो रहा है? तो अवेयरनेस अबाउट कि मेरे अंदर सारा दिन क्या चल रहा है. और स्पेसिफिकली जब मैं औरों के साथ इंटरेक्शन में आती हूँ, संबंध संपर्क में आती हूँ तो औरों के साथ व्यवहार करते हुए, बातचीत करते हुए मेरे अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि ये एक बहुत ऑटोमेटिक प्रोसेस है। आपने कुछ कहा, मैंने उस बात को सुना, अंदर लिया, अब उसके साथ सुनने के बाद मेरे अंदर क्या चल रहा है, डू आई हैव अ चॉइस।
0: यहाँ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, यू नो, बिकॉज ये प्रोग्राम हम पूरी सीरीज करते करते व्हेन आई गो आउट एंड व्हेन आई टॉक अबाउट टॉक टू योरसेल्फ, हम ये बात करते हैं कि अपने आप से बात करो, जो ज्यादा जवाब मिलता है वो ये कि अपने आप से बात करने में डर लगता है।
1: डर लगता है इसलिए, जैसे जिसको हम नहीं जानते हैं उनसे बात करने में डर लगता है। यू नो, हम कभी मिले ही नहीं है, सपोज आई हैव नेवर मेट यू एंड मैंने बहुत ज्यादा आपके बारे में कुछ मुझे पता ही नहीं है, और तब मैं सोचूं क्या बात करेंगे, और अगर बैठूं भी बात करने तो शायद कोई मैटर ही नहीं मिलेगा किस
0: अच्छा, और
1: चीज पर
0: दूसरी
1: बात
0: तरफ ये
1: करें।
0: भी लगता है कि क्योंकि अपने अंदर है तो बहुत इम्पोर्टेंट है,
1: राइट,
0: तो वो कहीं क्या निकलेगा उसमें से,
1: बिल्कुल
0: तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा,
1: सही
0: क्या होगा,
1: बात
0: क्या
1: है।
0: कहेगा।
1: हाँ, क्योंकि बहुत समय से देखा नहीं है कोई चीज को, बहुत समय से झांक कर नहीं देखा, और अब अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। और जैसे हम किसी को पहली बार मिलते हैं, हम बातचीत करते हैं, शायद बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता है बात करने के लिए, दो सेंटेंस तो बात कर ही लेते हैं, आप कैसे हो, आप ठीक हो आज, अगर सामने वाले ने ये भी कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो भी नो प्रॉब्लम, दो सेंटेंस की कम्युनिकेशन तो हो गई ना। इस तरह से कम अगर दिन में दो चार बार रुक के अपने आप से सिर्फ ये पूछा जाए, आप ठीक हो, कोई बात परेशान तो नहीं कर रही है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: अच्छा, कौन किससे पूछ रहा है?
1: सही बात है।
0: मैं अपने आप में अंदर किससे पूछ रही हूँ, या मैं, मतलब मैं बॉडी तो नहीं पूछ रही, कहीं ना कहीं मेरी जुबान पूछ रही है या मेरा दिमाग
1: जुबान
0: पूछ
1: भी नहीं
0: रहा
1: पूछते, क्योंकि जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हम इस मुख से बात
0: है?
1: नहीं
0: नहीं
1: करते,
0: करते हैं।
1: हम संकल्पों में बात कर रहे हैं ना।
0: थॉट्स।
1: द थॉट विल आस्क एंड द थॉट विल आंसर। सी,
0: ओके।
1: इट्स लाइक मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, नहीं आज मैं इस बात से परेशान हो रही हूँ, अच्छा कौन है कारण आपकी परेशानी का, टॉक।
0: चलो सोल्यूशन निकालते हैं। वाओ,
1: यस,
0: इट्स सो नाइस।
1: या आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, सो हु इज टॉकिंग, थॉट्स ओनली। तो एक थॉट ने क्वेश्चन किया, तुरंत थॉट ने उसको आंसर किया, अब बैठ के चेक करें क्या आंसर ठीक था। जैसे आप अगर आकर मुझे पूछे मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको फिर समझाऊंगी ना, वी से काउंसलर के पास हम जाते हैं, काउंसलर समझाता है नहीं आप ऐसे देखो, आप इस दृष्टिकोण से, और काउंसलर दे आर सो गुड, यू नो, एक तो वो हमें कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, हमें कभी डांटते नहीं है, हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर एक कोशिश करते हैं कि हमें एक सही दिशा पर लेकर जाए।
0: यही तो मैं कह रही हूँ कि अपने आप से, मैं ये डर लगता है कि हमें अपनी सारी नेगेटिविटी दिखेगी कि
1: तो
0: हम
1: वो एक,
0: कितने गलत
1: जब
0: हैं।
1: हम सेल्फ टॉक की हम बात करते हैं, वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, नेगेटिव तो हम करते ही आए। मेडिटेशन मीन्स पॉजिटिव सेल्फ टॉक, क्योंकि नेगेटिव नहीं, मैं तो हूं ही ऐसा, मेरे से तो नहीं होने वाला, या फिर मैं तो हूं ही बेस्ट, मेरे से तो कोई गलती नहीं है, तो ये रियलिटी नहीं है। सेल्फ टॉक मतलब रियली अपने आप को, दोनों साइड्स को, स्ट्रेंथ्स को भी वीकनेसेस को भी पहचानना, फिर उनके आगे डिस्कशन अपने आप से।
0: जिस अंतरात्मा
1: आत्मा ही तो बात कर रही है ना, आत्मा ही जब सोचने का काम करती है, हम उसको मन कहते हैं, एनर्जी है ना, द सोल इज एनर्जी, माइंड इज थॉट पावर, इट्स एनर्जी, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है। तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ उसको मन कहते हैं, तो मन ही तो, जिसको हम अंदर की आवाज कहते हैं, कॉन्शियसनेस, तो दिस इज द माइंड टॉकिंग। तो माइंड की अगर कोई जवाब ठीक नहीं लगता तो उसको भी तो मैं ही ठीक करती हूँ। अभी भी जैसे सपोज मैं आपसे बात करूं तो कौन उसको स्वीकार करेगा, कान थोड़ी कुछ कर सकते हैं,
0: माय माइंड।
1: इट्स द माइंड। अब सिर्फ ये है कि अब आपने मेरे थॉट को लिया और फिर उसको प्रोसेस किया, धीरे धीरे आपको मेरे थॉट की जरूरत नहीं, आप अपने थॉट को लेकर उसको प्रोसेस कीजिए, जब आप खुद को काउंसिल करना शुरू कर देंगे,
0: क्योंकि समवेयर द सोल एक्चुअली नोज ऑल द आंसर्स।
1: जब आप अंदर, क्योंकि एक्चुअली आपकी सिचुएशन को आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, नॉट द बेस्ट काउंसलर एंड नॉट द बेस्ट साइकेट्रिस्ट, इट इज जस्ट यू एंड गॉड विद यू, यू नो, क्योंकि कोई भी जो एक फिजिकल बॉडी के अंदर है, एक ईगो के अंदर है, वो बहुत ज्यादा मुझे नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक खुद एक बैरियर है उसके पास, क्योंकि हमारा अपना ईगो एक बैरियर होता है। मैं आत्मा जब इस बैरियर से बाहर निकल कर अपने आप से बात करती हूँ, या परमात्मा से बात करती हूँ, क्योंकि उसके पास कोई वो बैरियर नहीं है, तब वो कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल, यू नो इट्स लाइक द ट्रूथ. बाकी दूसरों से हम राय ले सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग किसी से हेल्प लेना, किसी से राय लेना, लेकिन द डिसीजन शुड बी माइन.
0: अगेन आई वॉन्ट यू नो वाई वेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैंने जब आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मुझे पता है कि आप मुझसे वाइज हैं,
1: right.
0: तभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आपके पास जवाब है. क्या मेरी आत्मा के पास मेरे हर क्वेश्चन का जवाब है?
1: क्या मुझ आत्मा के पास मेरे हर क्वेश्चन का जवाब है?
0: आई द सोल,
1: यस.
0: क्या मुझ आत्मा के पास मेरे हर सवाल का जवाब है?
1: हर क्वेश्चन का.
0: अच्छा,
1: हर क्वेश्चन का, क्योंकि आत्मा इज द ट्रूथ. इट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ. इट्स जस्ट दैट वो थोड़ा सा डोमेंट है. जितना जितना हम उस अवेयरनेस में आते जाएंगे कि दिस इज हु आई एम, ईगो जितना जितना खत्म होता जाएगा, वो आवाज बिल्कुल एक राइट आंसर देगी.
0: ईगो पे भी आते हैं, क्योंकि ईगो इज अ बिग इश्यू.
1: देखो सारा दिन में, एक्चुअली जैसे हमने मन की बात की, सारा दिन में हम जो काम कर रहे हैं वो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं. यू नो हमें अपने, हमें किस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज आई वुडंट नो कि, बिकॉज अवेयरनेस डजेंट मीन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं. दैट इज नॉट अवेयरनेस ओनली. अवेयरनेस है सारा दिन मेरे अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है. एक मशीन है, एक अंदर जो काम कर रही है, एक प्लांट लगा हुआ है, मेरे को उसका प्रोसेस पता चलना चाहिए. अभी आई एम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट है ये पर्सनालिटी, प्रोडक्ट है ये व्यवहार, प्रोडक्ट है मेरा आपसे बात करने का तरीका. लेकिन मैं आपसे इस तरह से क्यों बात कर रही हूं? सपोज आपसे मैं अभी गुस्सा करने लगूं, ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसके पीछे एक प्रोसेस हुआ है, कोई रीजन है जो मैं आपसे इस समय उस तरह से बात करूं. तो मैं उस प्रोसेस को न जानने के कारण सिर्फ प्रोडक्ट को देखती हूं और परेशान होते जाती हूं, इसको कैसे ठीक करूं, मुझे इस प्रोडक्ट को ठीक करना है. प्रोसेस को जानना पड़ेगा.
0: अच्छा, बहुत ही सुंदर. मतलब ये है कि हम जो भी हम कुछ रिएक्ट कर रहे हैं या एक्ट भी कर रहे हैं, उसका वो रिजल्ट है जो अंदर हमारे बहुत कुछ चला है.
1: एंड दैट स्टार्ट्स विद द थॉट.
0: ओके,
1: यू नो एवरी प्रोसेस इट स्टार्ट्स विद द थॉट. एंड जैसे ही हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, बिकॉज लेट्स सी द प्रोसेस हाउ इट गोज, कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है. सबसे पहले मन में एक संकल्प उठता है ना, कोई भी बात आती है सामने, परिस्थिति आती है, आप व्यक्ति आता है, एक संकल्प उठता है. क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इट स्टार्ट्स विद अ थॉट. और जैसे ही एक थॉट आता है, उसका इमीडिएट क्या बाय प्रोडक्ट होगा?
0: एक रिएक्शन.
1: रिएक्शन बाहर आएगा. अगेन देयर इज अ प्रोसेस बीच में. रिएक्शन जो बाहर आएगा, जो एक बोल होगा या एक कर्म होगा, दैट्स द फाइनल प्रोडक्ट.
0: लेकिन वी थिंक कि थॉट इज लाइक स्ट्रेट अवे,
1: थॉट इज इनटू एक्शन. नो, थॉट इज नॉट इनटू एक्शन. देयर विल बी लिटिल स्टेप्स पहले, एंड देन वो एक्शन के रूप में आएगा. है ना, तो सबसे पहले जब एक थॉट आती है, एक संकल्प आता है, इमिजिएटली डिपेंडिंग ऑन वो क्वालिटी ऑफ थॉट क्या है, एक फीलिंग उत्पन्न होती है. यू नो जैसे एक थॉट आई कि कनुप्रिया इज अ नाइस पर्सन, एक थॉट है. एंड जैसे ही वो थॉट क्रिएट की, गुड फीलिंग, आई फील लाइक मीटिंग हर. कनुप्रिया इज नॉट अ नाइस पर्सन, आई डोंट फील लाइक मीटिंग हर. इमीजिएट, इमीजिएट है कि मैं अवॉइड करके कहीं और से चले जाऊं, क्योंकि मेरी थॉट आई के. सो जैसे ही एक थॉट उत्पन्न हुई, एक फीलिंग आ जाएगी. इमीजिएट है ये, बहुत फास्ट हो जाता है. और जितनी मेरी सारी फीलिंग्स होंगी आपके बारे में, किसी के भी बारे में, एक समस्या के बारे में, पूरे विश्व के बारे में, तो ऑल माय फीलिंग्स पुट टुगेदर विल डेवलप माय
0: एक्शन.
1: दैट आल्सो लेटर. जस्ट माय फीलिंग्स विल डेवलप माय व्हाट टुवर्ड्स यू.
0: एटीट्यूड. ओके.
1: इज इट अ पॉजिटिव एटीट्यूड? इज इट अ नेगेटिव एटीट्यूड? इज इट व्हाटएवर काइंड ऑफ एन एटीट्यूड?
0: वन थॉट इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ फीलिंग्स. नो, लॉट ऑफ थॉट्स.
1: अ लॉट ऑफ टाइम ना. बहुत बार मैंने आपके बारे में सोचा है. देखो एटीट्यूड पहली बारी में नहीं बनता.
0: इट टेक्स टाइम.
1: लेकिन कई बार मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा, कई बार ऐसा सोचा, तो फिर थोड़े टाइम के बाद एक एटीट्यूड बन गया. ये ऐसे ही है. अब उस एटीट्यूड को चेंज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अब वो बन गया है. सी दैट्स द प्रोसेस. पहले जब थॉट्स था, थॉट को चेंज करना बहुत इजी है,
0: क्योंकि
1: इट्स जस्ट इन द बिगिनिंग स्टेज. जैसे जैसे वो एक प्रोसेस से गुजरता जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम अ लिटिल हार्डर. तो पहले संकल्प आया, जो संकल्प आया वो एक भावना उत्पन्न हुई, एक फीलिंग. एंड सारी मेरी जो भावनाएं आपके बारे में है, दैट डेवलप्स माई एटीट्यूड, मेरी वृत्ति. आपके बारे में क्या वृत्ति है, और जो मेरा एटीट्यूड होगा वो फिर
0: एक्शन.
1: एक्शन चाहे वो एक बोल के रूप में आएगा, एक कर्म के रूप में आएगा, लेकिन वो एक एक्शन के रूप में आएगा. और अगर मैं कोई भी कर्म बार बार रिपीट करती हूँ, कोई भी बोल बार बार करती हूँ, जैसे गुस्सा करना बार बार बार बार करती हूँ, तो धीरे धीरे इट बिकम्स माई
0: डेस्टिनी.
1: नो, पहले जस्ट द एक्शन, आई रिपीट इट नंबर ऑफ टाइम्स, इट बिकम्स माई हैबिट.
0: हैबिट यस,
1: है ना, एक आदत बन जाती है. झूठ बोला एक बार, दो बार, चार बार, दस बार, फिनिश्ड. आफ्टर दैट इट्स माई हैबिट. अभी वो करना बहुत नेचुरल हो गया है,
0: आसान है,
1: है ना, तो आदत बन गई. और अब जो मेरी सारी आदतें हैं, ऑल माई हैबिट्स पुट टूगेदर इज माई ओवरऑल पर्सनैलिटी. दैट्स माई पर्सनैलिटी, दिस इज मी. ये मेरी सारी आदतें हैं, ये मैं हूं,
0: ये बाहरी मैं हूं. अब मैं बाहर आने लग गई,
1: अब मैं बाहर आने लग गई ना, आदत से लेकर मैं बाहर आई, एक्शन से. एक्चुअली संकल्प अंदर आया, भावना अंदर उत्पन्न हुई, वृत्ति दृष्टि वो अंदर बनी, फिर जब वो कर्म में आया तब बाहर हुआ प्रोसेस. और कोई भी कर्म बार बार रिपीट किया वो मेरी आदत बन गई. और सारी मेरी आदतें टुगेदर माय पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व, दिस इज मी. और यही व्यक्तित्व फिर जब हर स्टेप पर जाता है, हर रोल प्ले करता है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, कर्म में जाता है, ऑफिस जाता है, घर जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनालिटी एट एवरी स्टेप, देन आई विल क्रिएट माय
0: डेस्टिनी,
1: मेरा भाग्य. जो अभी तक हम समझते थे कि मेरा भाग्य कहीं और से कंट्रोल होता है, कि पता नहीं मेरा भाग्य क्या है, या भगवान ने पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, हमारा भाग्य हम खुद निर्माण करते हैं,
0: हमारे अपने एक थॉट से आता है.
1: बिल्कुल, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी. कितना सिंपल है. और जब ये समझ में आ जाता है कि हर जो संकल्प हम कर रहे हैं वो मेरा व्यक्तित्व निर्माण कर रहा है, और जैसा मेरा व्यक्तित्व होगा वो मेरा भाग्य निर्माण करता है. आप देखो, कोई भी स्टेप पे आप उस समय जो डिसीशन लेंगे, आपका जो व्यक्तित्व होगा, आपका भाग्य परिवर्तन हो सकता है. आप किसी से मिले, उनका मूड अच्छा नहीं था, अगर आपकी भी संकल्प उस टाइम नेगेटिव है और आपने भी गुस्सा कर दिया, दूर हो गए, भाग्य बदल गया. अगर आपने उस टाइम उनको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उनसे प्यार से बात कर ली, जुड़ गए, भाग्य परिवर्तन हो गया एक संकल्प से. दिस इज सेल्फ अवेयरनेस.
0: हियर आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, हम ये बात कर रहे हैं कि एक थॉट या थॉट्स जो हैं वो हमारी डेस्टिनी तक एक पूरा प्रोसेस है, उसमें कुछ अंदर चल रहा है, कुछ बाहर तक आ जाता है, आदत पे आके हम बाहर आते हैं. एक बात ये भी कही जाती है कि नेगेटिव, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव थॉट,
1: राइट,
0: यू नो, ये तो एक समझ में आती है बात. आई मेट अ पर्सन जो कहता है कि नेगेटिव थॉट्स, मुझे उससे जेलसी थी, तो मुझे लगा कि उसको गाड़ी चलानी आती है, तो मैं मेरे कुछ क्यों नहीं आती, तो मैंने इससे मेरा प्रोसेस शुरू हुआ, मैंने तो इट मीन्स इट वॉज अ नेगेटिव थॉट, उसने गाड़ी चलानी सीख ली, और तो रिजल्ट तो उसने मुझे जो जवाब दिया वो कहता है कि रिजल्ट तो मेरा ये हुआ कि मैं गाड़ी चलाना तो सीख गया इस पूरे प्रोसेस.
1: वो एक अलग बात है, एक इंस्पिरेशन और जेलसी में अलग बात हो गई. आपको कुछ आता है, जैसे कहा आपको गाड़ी चलानी आती है, एंड इफ आई टेक इट एज एन इंस्पिरेशन, देखो, सी दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस, कि आपने बाहर गाड़ी चलानी तो सीख ली, लेकिन अंदर का मोटिवेटिंग एनर्जी की क्वालिटी क्या थी. सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, बाहर तो हम बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं आज, लेकिन अंदर क्या हो रहा है.
0: और एक्चुअली अंदर वो पूरा ही फिर प्रोसेस जो है, क्योंकि वो जेलसी जो थी वही एक नेगेटिविटी और बढ़ती गई होगी, डेस्टिनी क्रिएट होगी.
1: तो आपने गाड़ी तो सीख ली, लेकिन शायद उस व्यक्ति से बहुत
0: दूर हो गए,
1: और अपनी क्वालिटी ऑफ एनर्जी जो अंदर उत्पन्न हुई उसकी क्वालिटी क्या थी. तो उसने मेरी स्टेट ऑफ माइंड को उन कुछ दिनों के अंदर कैसा बना के रखा होगा. तो मेरी खुशी, गाड़ी भी क्यों सीख रहे हैं, एक्चुअली खुशी देगी, लेकिन उसका मोटिवेटिंग फैक्टर ही खुशी नहीं है. तो समवेयर डाउन द लाइन इट वोंट गिव मी दैट हैप्पीनेस दैट आई एम लुकिंग फॉर. एक इंस्पिरेशन के रूप से अगर उसको ले लेते, सेम चीज, उसको एक इंस्पिरेशन के रूप से ले लेते, देखो इनको गाड़ी आती है, कितना आराम से ये हर जगह जा सकते हैं, मैं भी अगर गाड़ी सीख लूं तो मेरी लाइफ पे बहुत इजी हो जाएगी. स्टार्ट एंड लुक एट देम एज एन इंस्पिरेशन, जस्ट अ माइंड शिफ्ट, नथिंग एल्स, बाकी सारा कुछ सेम रहता है, जस्ट द क्वालिटी ऑफ द रॉ प्रोडक्ट.
0: सिस्टर शिवानी, इट्स लाइक एक्चुअली व्हेन आई टॉक हियर मुझे लगता है बहुत आसान है, लेकिन द मोमेंट यू स्टेप आउट, नो आई एम टेलिंग यू, इट बिकम सो डिफिकल्ट, बिकॉज नेगेटिविटी डज कम, नेगेटिव थॉट आता ही है. और हम अपने आप को, हमारे सारे दर्शक भी कहीं ना कहीं कोशिश ये करते हैं कि, क्योंकि हम इतना सुनते आ रहे हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन वो बाहर से तो पॉजिटिव रहने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये इंटरनल प्रोसेस जो है
1: वो, क्योंकि हमें जैसे आपने कहा नेगेटिव थॉट तो आता ही है, नेगेटिव थॉट का सोर्स क्या है? संकल्पों को परिवर्तन करने के लिए संकल्प का स्रोत पता होना चाहिए. व्हाट इज द सोर्स ऑफ माय थॉट्स? थॉट्स किस चीज से उत्पन्न हो रही हैं? तीन फैक्टर्स प्ले करते हैं. एक तो पास्ट एक्सपीरियंस, अगर मैं कई बार आपसे मिली हूं और क्या मेरा अनुभव रहा है पहले, तो वो अनुभव के आधार से जब आप अब सामने आएंगे तो वही थॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. तो पास्ट एक्सपीरियंसेस थॉट्स को क्रिएट करते हैं.
0: तो पहला अनुभव जो है वो काफी करते हैं, फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन एट टाइम्स.
1: दैट्स व्हाई, बिकॉज वो फर्स्ट इम्प्रेशन इतना डीप हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम आई डोंट टेक द ट्रबल ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू इम्प्रेशन. इट्स एक्चुअली नॉट रियली फर्स्ट इम्प्रेशन, लेकिन हम एक नया इम्प्रेशन क्रिएट ही नहीं करते, हम उस फर्स्ट इम्प्रेशन के आधार पर ही चलते हैं. धीरे धीरे वो बहुत पक्का हो जाता है. सेकेंड सोर्स इज इन्फॉर्मेशन. हम सारा दिन चारों तरफ से जो सुनते हैं पढ़ते हैं भरता जाता है. एंड टूडे द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नेगेटिव. न्यूज पेपर उठा लिया, ज्यादातर नेगेटिव. टेलीविजन ऑन कर लिया, लोगों से बात भी कर ली तो बातें भी ज्यादातर नेगेटिव. तो अगर भोजन की क्वालिटी नेगेटिव होगी तो उससे जो शक्ति निर्माण होगी वो नेगेटिव होगी. और तीसरी है बिलीफ सिस्टम, मान्यताएं. हम क्या मान्यताएं लेकर इस जीवन में चल रहे हैं? तो वो तीन फैक्टर्स, पास्ट एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन एंड बिलीफ सिस्टम, ये तीन चीजों के आधार पर संकल्प उत्पन्न होते हैं. अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो इन तीनों में से चेक करना पड़ेगा.
0: ये हमारे ही हाथ में है कि हम कैसे चेक
1: करें. इसको हम चेक करते हैं. अगर लाइक सबसे सिंपल है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दें, बिलीफ सिस्टम को चेक करके चेंज करना शुरू कर दें, थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाएगी.
0: बिल्कुल. लेकिन सिस्टर शिवानी, एक और बात यहाँ पे, क्योंकि अब वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम एक बार अवेयर हो गए, अगर हम जान गए कि ये पूरा प्रोसेस जो हमारे अंदर भी चल रहा है, देयर इज अ टॉक विद इन अस, उसको कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है? क्यों तब भी उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आती
1: है? मतलब ये है, चल रहा है, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको कभी कभी फॉलो नहीं करते, क्योंकि बीच में जो चीज आ जाती है वो है ईगो, अहंकार, अहम. मुझे समझ भी आ रहा है कि मुझे इस टाइम गुस्सा नहीं करना चाहिए, समझ आ रहा है, दैट इनर वॉइस इज टेलिंग मी डोंट, इट्स वेरी डैमेजिंग. लेकिन क्यों मैं गुस्सा क्यों नहीं करूं? दैट अहंकार, ईगो, अहम, ये बीच में आ जाता है.
0: वंडरफुल. सो ईगो अगर देखा जाए आज के वक्त में, वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है. आज हमने उन इश्यूज को समझा जो जहां से शुरुआत करनी है. मैं सामने आया कि हु एम आई एंड हाउ टू बी अवेयर ऑफ माई सेल्फ. तो सचिवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
1: थैंक यू.
0: आपको बताना चाहे कि हु एम आई आज हमने तलाशने की कोशिश की. हमने ये भी जाना कि किस तरह से पॉजिटिव थॉट मेरी डेस्टिनी लिख सकते हैं. कुछ हमारे अंदर चल रहा है, कुछ बाहर आता है. जो अंदर चल रहा है, पॉजिटिव थॉट जनरेट किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें पॉजिटिव थॉट जनरेट करना चाहिए. ये एक पूरा प्रोसेस है, वक्त लगेगा, एक सेकेंड में नहीं होंगी चीजें, लेकिन हमें पहला कदम तो उठाना ही होगा. हो सकता है आपके पास कोई सवाल हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं. आपका स्वागत है. आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर अगली कड़ी में जानेंगे कि ईगो को कैसे कॉम्बैट करें, ईगो से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपनी ईगो को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब दीजिए इजाजत. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में फिर होगी मुलाकात. नमस्कार.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: हम भी भूल गए कि हम मन के, बुद्धि के, संस्कारों के, इन कर्म इंद्रियों के हम मालिक हैं, हम राजा हैं, हम भूल गए। आज हम कहते हैं मुंह से निकल गया, हाथ उठ गया, आंखों से देख लिया, किसी का बुरा बोल दिया। मन तो सारा दिन चलता है, वो तो कभी सोचा, वो तो उसके बारे में तो। कर्म इंद्रियों के भी गुलाम, ये तो सूक्ष्म इंद्रियां, इसको हम कहते हैं सटल ऑर्गन्स, मन, बुद्धि, संस्कार। लेकिन फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, ये पांचों कर्म इंद्रियां, ये भी आज हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आत्मा आउट ऑफ कंट्रोल ओवर इट्स ओन ऑर्गन्स, ट्राइंग टू कंट्रोल एवरीबडी एल्स। इट्स लाइक ड्राइविंग ऑन द रोड, अपनी गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल, लेकिन चाहते हैं कि बाकी सबकी गाड़ी मेरे हिसाब से चले। रिजल्ट क्या होगा? एक्सीडेंट के अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता ना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बाकी सब गाड़ियों में भी जो बैठे हैं ना, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है, उनकी भी अपनी गाड़ी पे कंट्रोल नहीं है। वो भी ये चाहते हैं कि हमारी गाड़ी उनके हिसाब से चले। जस्ट विजुअलाइज दिस सीन ऑन द रोड, जस्ट ओनली सी कि पांच गाड़ियां एक सड़क पर हैं, पांचों के ड्राइवर्स का अपनी अपनी गाड़ी पर कंट्रोल खत्म हो चुका है। एंड पांचों चाहते हैं कि जो बाकी चार है गाड़ियां, वो उनके कंट्रोल से चले।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं, सारे

0: क्या कभी हमने सोचा है इसके पीछे का विज्ञान और इसको को करते समय व्यक्ति के अंदर कितना उसका ध्यान परिपक्व हो सकता है। केवल एक इस विधा को पकड़ के अगर कोई व्यक्ति ऐसे शिखर पे पहुंच जाए जहां पर उसे राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया जाए तो क्या खूब होगा अगर हम उनसे बात कर सके। 107.8 रेडियो मधुबन में आप सुन रहे हैं यशस्वी भारत कार्यक्रम और आज मैं आरजे शांतनु आपके बीच में लेके आया हूँ एक ऐसी ही हस्ती को। आज हमारे बीच में है मेरठ से मोहम्मद मतीन अंसारी जी। मोहम्मद मतीन अंसारी जी वास्तव में है तो एक अध्यापक, लेकिन उनकी नवीनता, उनके इनोवेशन की वजह से और उनका ओरिगामी या पेपर फोल्डिंग क्राफ्ट के पीछे उनका जो ये लगन है उसकी वजह से उनके इनोवेशन ने उनको आज देश के उच्चतम और श्रेष्ठतम शिक्षकों में दर्जा दिया है। और भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी ने उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे स्टूडियो में मोहम्मद जी हैं हमारे बीच में, तो आइए हम पहले स्वागत करते हैं मोहम्मद जी का। मोहम्मद मतीन अंसारी जी जो एक बहुत ही श्रेष्ठ शिक्षक हैं हमारे भारत राष्ट्र के, आज हमारे बीच में रेडियो मधुबन के स्टूडियो में हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मोहम्मद जी, नमस्कार।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं इस रेडियो कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने यहाँ पर मुझे बोलने और पब्लिक से बात करने का मौका दिया है। जी आगे जो आप पूछना चाहते हैं आप पूछिएगा, बात को जारी।
0: मोहम्मद जी सबसे पहले तो हम आपसे ही पूछना चाहेंगे, आपकी कहानी आपकी जुबानी, कैसा रहा आपका बचपन, कैसे ओरिगामी की तरफ आपका रुझान गया, कैसे शिक्षण को आपने अपना व्यवसाय या अपना प्रोफेशन बना लिया, और ये जो आपकी कहानी आपकी जुबानी है यही हम सुनना चाहेंगे सबसे पहले।
1: दरअसल मुझे जो था शुरू से ही एक लगाव था कि शिक्षक बने तो कम से कम ऐसे शिक्षक बनना चाहिए कि आम जो शिक्षकों के प्रति लोगों में धारणा होती है कि शिक्षक नहीं काम नहीं करते तो वो चीज दिखाई नहीं देनी चाहिए कहीं भी। मैंने हमेशा जो काम किया बहुत लगन से किया, जिस स्कूल में मैं हूँ उस स्कूल में मैंने उसे जितना उसमें मैंने काम किया है, और अधिकारियों ने मेरे काम को, जिले के अधिकारियों ने भी देखा, मंडल स्तर के अधिकारियों ने भी देखा और प्रदेश स्तर के अधिकारियों ने भी देखा। एक वक्त था कि हमारे यहाँ वर्ल्ड बैंक की टीम आई और उन्होंने हमारे विद्यालय का निरीक्षण किया और उन्होंने लास्ट में चलते समय मेरे से एक चीज पूछी कि सर ये बताइए कि आप इतना ये सब कुछ, इतना स्कूल को आपने चमका के रखा है, आखिर इसके पीछे क्या वजह है, कैसे कर पाए हैं आप इतना। तो मैंने बस उनसे एक ही बात कही कि सर मैंने स्कूल में अपने पास से कोई पैसा नहीं लगाया कभी, लेकिन हाँ जो स्कूल का पैसा था उसे मैंने इस्तेमाल नहीं करा, मैंने स्कूल का पैसा स्कूल में लगाया और जो मेरी अपनी वेतन था वो मेरे बच्चों का हिस्सा था वो मैंने अपने बच्चों पर खर्च किया। तो वो बहुत खुश हुए कि भाई आपने एक बात ऐसी कही कि मतलब मेरा उद्देश्य यह था उनको बताने का कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला कोई भी पैसा अगर हम उसे ठीक से यूज करते हैं, स्कूल में लगाते हैं, बच्चों पर खर्च करते हैं तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कहीं भी उन्होंने कहा कि और भी हमने स्कूल देखे लेकिन आपका स्कूल एक अलग ही है। मैंने कहा जी बस वो मेरी अपनी एक मेहनत है अपनी, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा स्कूल पूरे जिले में पूरे जो लोग देखें वो ये कहें कि हाँ यहाँ बात ही अलग है। अगर सब जैसे स्कूलों की तरह मैं काम करूंगा तो फिर मुझे मेरी पहचान अलग तो नहीं हो पाएगी, तो इसलिए मैंने उसी तरह से काम किया है। बिल्कुल स्कूल का बिल्कुल टाइम देना, बच्चों के साथ काम करना और स्कूल के अलावा भी दूसरे जनपदों में अलग अलग जगह जाकर मैंने साइंस के प्रोग्रामों में, मैथमेटिक्स के प्रोग्रामों में, ओरिगेमी के प्रोग्रामों में मैंने हिस्सा लिया है। बहुत सारे टीचर्स से मेरी मुलाकात हुई, स्टूडेंट से हुई, तो इस तरह से मैंने अपने आप को अपने स्कूल तक ही सीमित नहीं रखा और मैं, लेकिन मैंने जो है दूसरे जिलों पर, जो दूसरे राज्यों में भी हमने इस काम की इतने इस तरह के कामों को किया है कि हमारी पहचान जो है वो हमारे जिले से हटकर मंडल, स्टेट और हमारे राज्य, हमारे राष्ट्र के अंदर भी हमारी एक पहचान बने और मैं समझता हूँ कि हम इसमें सफल रहे हैं। हमारे अधिकारियों ने भी हमारा बहुत साथ दिया है, बहुत उन्हीं के प्रेरणा से, उन्हीं के करने से, उन्हीं के हमें समझाने से हम आगे तक बढ़ पाए।

0: मोहम्मद जी आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कि शिक्षक बनने का आपको रुझान क्यों हुआ, क्योंकि जनरली जब बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं अपने आसपास में देखते हैं तो बस वही शब्द सुनते हैं इंजीनियर डॉक्टर इंजीनियर डॉक्टर। टीचर बहुत कम लोग बोलते हैं कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, और कई बार अभिभावक जो होते हैं पेरेंट्स जो होते हैं वो भी नहीं चाहते कि बच्चे टीचर बने क्योंकि शायद इसमें इतना ग्रोथ नहीं है इतनी उन्नति नहीं है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे आपको ये लगन लगे कि मुझे एक शिक्षक ही बनना है?
1: देखिए, शिक्षक जो है वो एक जैसे कहा जाता है कि समाज का निर्माता है। हम किसी भी जो डॉक्टर बन जाएं वो डॉक्टर तक सीमित रहता है, एक अधिकारी बन जाए वो अपने अधिकारी के कार्यों तक सीमित रहता है, एक इंजीनियर बन जाए वो अपने इंजीनियरिंग के बनाने पुल बनाना बिल्डिंग बनाना ये सब चीजें बनाने में सीमित रहता है। लेकिन हम जो काम करते हैं, जो शिक्षक काम करता है, वो बच्चों के साथ लगा हुआ है। वही बच्चे आने वाले समय में भविष्य में अलग अलग तरहों पर अलग अलग जगहों पर वो जाएंगे, कोई कुछ बनेगा कोई कुछ बनेगा। तो इस तरह से शिक्षक को कहा गया है कि एक राष्ट्र निर्माता है। शिक्षक के द्वारा जो बच्चे हैं, शिक्षक का जो संपर्क है बहुत बड़े समाज से, समाज के बच्चों से, वो बच्चे आगे चलकर शिक्षक तो शिक्षक ही रहता है लेकिन उसके पढ़ाए हुए बच्चे आगे जाने क्या क्या बन जाते हैं और किस किस पदों पर चले जाते हैं। और जब शिक्षक को एक पता चलता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा फला जगह पर अधिकारी बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, वो ये, तो उसे बड़ी खुशी होती है। यही चीज शिक्षक के लिए बहुत बड़ी चीज है, मैं समझता हूँ।
0: तो बचपन से ही आपको शिक्षक ही बनना था?
1: वो तो मेरा शौक था कि भाई मैं शिक्षक बनूं और समाज की सेवा करूं, और ऊपर वाले ने मुझे बना दिया।
0: तो जैसे आपने बताया कि बचपन से ही आपका शौक था कि आप शिक्षण की दिशा में जाएं, और आपको उसके पीछे एक कारण भी दिखा कि एक शिक्षक जो है वो सर्वांगीण रीति किसी बच्चे के साथ जुड़ पाता है, जबकि कोई दूसरा पेशेवर जो होता है जैसे डॉक्टर हुआ या इंजीनियर हुआ, उसका जो वो कनेक्शन है वो समाज में बहुत एक तरफा है, जो उनका काम उससे ही है। लेकिन एक शिक्षक जो है वो हर प्रकार से समाज को बेनिफिट देता है। जब आपने शुरुआत की शिक्षण की, तो जैसे हर शिक्षक होता है उसको एक सब्जेक्ट मिलता है, एक विषय मिलता है पढ़ाने के लिए, और वो उस विषय को लेकर के ही फिर पढ़ाते हैं, पढ़ाते रहते हैं, कई सालों तक वो पढ़ाते रहते हैं। लेकिन उनसे अलग हट करके, उस विषय से अलग हट करके कुछ नया करना, कुछ नई चीजें अपने विषय में जोड़ना या विषय से बिल्कुल ही अलग कोई चीज करना, ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। आपने कैसे किया?
1: मेरा यही प्रयास रहा, मैं जब भी मैंने कोई काम किया मैंने यही चाहा कि ये काम जो अब से पहले लोगों ने किया है उनसे अलग ही दिखना चाहिए। मेरी हमेशा एक यही सोच रही है और इसी यही सोच मुझे अपने विभाग में एक अलग दिखाती है। मैंने कोई भी काम किया, कभी भी किया, किसी भी तरह से, तो अधिकारियों ने देखा, अरे इसने ये इस काम को जो है वो अलग तरीके से कर दिया। अभी अभी पिछले महीने शुरू हुई थी ट्रेनिंग मैथमेटिक्स की, और अभी इस महीने लगभग 12 तारीख तक खत्म हुई, लगभग 30-40 दिन तक वो चली। तो उसके अंदर कुछ एक विज्ञान किट के बारे में बताना था। विज्ञान किट हमारी गवर्नमेंट ने जो है NCERT ने बनाई है और स्कूलों के अंदर पहुंचाई है, उसकी ट्रेनिंग थी, टीचर्स को देनी थी, तो वहां मुझे डाइट में लगाया गया। तो मैंने देखा कि जिस आइटम के अंदर वहाँ जो हमारी गाइडलाइन NCERT ने दी है, उन्होंने मान लिया किसी एक आइटम के बारे में दो चीजें लिख दी कि इस आइटम से हम ये दो चीजें बच्चों को बता सकते हैं। तो मैंने उसको देखा, मैंने उसके अंदर दो की जगह कई चीजें अपनी तरफ से जोड़ी, उनकी अभी भी मैं वीडियो बनाकर शेयर कर रहा हूँ। मैं पांच तरह की चीजें उसके अंदर शेयर कर चुका हूँ और अभी भी दो तीन चीजें मेरे दिमाग में हैं। तो मैं यही चाहता हूँ, बस ये मेरी सोच है कि चीजें अलग अलग दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हमें बस कोई चीज एक बता दी गई, बस हम उसी तक सीमित रहें। तो मैं हमेशा अलग अलग तरह से सोचता रहता हूँ और उन चीजों को मैं करता रहता हूँ। मैथमेटिक्स को मैंने ओरिगेमी से इसलिए जोड़ा है कि बच्चे क्योंकि कलरफुल चीजों को बनाने में बहुत रुचि रखते हैं। बच्चे जब भी पढ़ने की बात की जावे, कुछ रटने की बात की जावे, तो नहीं रट पाते, नहीं याद रख पाते, ना अब रटने का योग भी नहीं है। लेकिन जब हम बच्चों से कोई कलरफुल चीजें बनवाने की बात करते हैं तो उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। अगर हम उन्हें कह देंगे कल जब हम ये चीजें बनवाएंगे इस तरह के कलरफुल, तो अगले दिन स्कूल के अंदर बच्चों की उपस्थिति ज्यादा हो जाती है और बच्चे उन चीजों को बनाने में आनंद लेते हैं। उसी चीज का वो हमने फायदा उठाते हुए मैंने ओरिगेमी की बहुत सारी चीजें मैंने बनाई, बहुत सारे आइटम्स मैंने बनाए, लगभग मैंने 150 आइटम के लगभग मैंने उन चीजों को बनाया।
0: तो ये ओरिगेमी क्या आपको पहले से आता था या आपने सीखा?
1: नहीं, मैंने सीखा सर, भी पहले से नहीं आता था ये। मैं 86 में मेरी अपॉइंटमेंट हुआ और 86 से 2005 तक मैं जो स्कूल के टॉपिक्स थे मैं उन्हीं में लगा रहा। लेकिन 2005 में हम साइंस के जो गतिविधियां थी, एक्टिविटीज थी, उनसे हम जुड़े और दूसरे जनपदों से भी हम जुड़े। उस दौरान हमने ओरिगेमी का प्रशिक्षण लिया और ओरिगेमी का प्रशिक्षण लेने के बाद फिर मैंने ओरिगेमी के बारे में काफी काम किया, बहुत चीजें मैंने सीखी और ये देख मैंने उन चीजों को मैंने सेलेक्ट किया कि जो मैथमेटिक्स से रिलेटेड हो सकती थी।
0: जैसे मसलन अगर कुछ आप बताएं,
1: जैसे आपने शुरू में बताया कि एक कागज की नाव से हम एक पाइथागोरस थ्योरम को समझा सकते हैं। कागज की नाव,
0: पाइथागोरस थ्योरम कागज की नाव से, ये तो बड़ा ही विचित्र है।
1: हाँ, बहुत बहुत सिंपल है। इससे मैंने एक बार अपने यूपी लेवल में के जो एक वो होता था पाठ योजना कार्यक्रम, उसमें मैंने स्टेट लेवल पर एक पुरस्कार भी उसमें मिला हुआ है। तो उसमें कागज की जो हम नाव बनाते हैं, जब उस नाव को हम वापस खोलते हैं, उसी पेपर की शेप में हम वापस खोल लेते हैं, तो हमें बहुत सारी शेप्स दिखती हैं। उन शेप्स में वर्ग दिखते हैं, आयत दिखती हैं, त्रिभुज दिखते हैं, समलंब दिखते हैं, समांतर चतुर्भुज दिखते हैं, बस बहुत सारी आकृतियों की हम बात बच्चों से कर सकते हैं। लेकिन उसी के अंदर एक जो सबसे मेन चीज है वो है पाइथागोरस का प्रमेय। तो पाइथागोरस थ्योरम को भी हम उस पेपर से, क्योंकि उस पेपर के अंदर जब हम उसे खोल लेते हैं तो बहुत सारे फोल्ड आ जाते हैं और उन्हीं फोल्ड के बच्चों को समझाते हुए, बच्चों से बात करते हुए हम पाइथागोरस का थ्योरम को बहुत आसानी से समझा देते हैं बच्चे।
0: ये तो कमाल की बात है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो हमने भी पढ़ा है और नाव तो हमने भी बनाया है, लेकिन नाव का पाइथागोरस थ्योरम से ये जुगाड़ कहेंगे या ये जो कनेक्शन है, ये कभी हमने नहीं सोचा था। मैं अभी सोच रहा हूँ काश मेरे बचपन में आपने मुझे पढ़ाया होता तो शायद गणित में बहुत अच्छे से पढ़ चुका होता, या मेरे जैसे कई विद्यार्थी जिनको गणित डिफिकल्ट लगता होगा, कठिन लगता होगा, उनको मजा आता शायद पढ़ने में।
1: जी जी जी, एक एक बार मैं एक डाइट में मुझे बुलाया गया कि आप अपनी कुछ चीजें यहाँ के स्टूडेंट को शेयर करो। तो मैं कुछ चीज थोड़े से आइटम ले गया वहां पर जाकर, मेरा 1-1.5 घंटे तक मेरा प्रेजेंटेशन हुआ। तो वहां जब बाद में बच्चों से कहा गया कि भाई आप ये बताइएगा, आपने अपने व्यू दीजिए कि आपको प्रेजेंटेशन कैसा लगा, आपने क्या सीखा, तो सबने अपनी अपनी तरह के साथ बच्चों ने अपनी अपनी बात रखी। लेकिन एक लड़की उठी और उठकर जब वो माइक पर आई तो वो रोने लगी। अरे हमें बड़ा अजीब सा लगा, लड़के रोने क्यों लगी? तो उसने खैर खामोश होने के बाद फिर ये कहा कि अगर मुझे ऐसे टीचर मिलते तो मैं भी मैथमेटिक्स पढ़ती। मैंने मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे इस तरह के टीचर नहीं मिल पाए। तो मुझे वो सेंटेंस वो आज भी याद है कि उस बच्ची ने एक इतनी अच्छी बात उस वक्त कह दी और इस तरह से ऐसे अंदाज से कह दी कि मुझे भूल नहीं पाया।
0: तो आपको क्या लगता है मोहम्मद जी कि लोग गणित से इतने डरते क्यों हैं, घबराते क्यों हैं?
1: गणित से घबराने की वजह यह है कि उनको स्टार्टिंग में जो है अच्छी तरह से कंडक्ट नहीं किया गया। अगर हम हाई स्कूल तक के मैथमेटिक्स को बच्चों को बहुत अच्छे से समझा दें, मैथमेटिक्स इतना मुश्किल नहीं है, बस ये है कि हमें उसे ठीक से समझाया नहीं गया। अगर कोई चीज हमें समझाई नहीं जाती, उसको स्टार्टिंग में नहीं समझाया जाता, तो फिर हमारे लिए वो मुश्किल हो जाता है। बस यही एक बात है, अगर उसे बच्चे को प्रारंभिक जो स्टार्टिंग वाला टाइम है, खास तौर से 6 से 10 तक का जो पीरियड है, ये पीरियड अगर बच्चे को जो चीजें वो सीखना चाहता है उसे सिखाई जानी चाहिए। अगर वो खेल खेल के माध्यम से सिंपल वे में उसको क्लियर हो जाए मैंने ये देखा है कि मैं इंटर के बच्चे से ये पूछता हूँ कि भाई जो व्रत का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, तो वो बच्चे बता ही नहीं पाते। बस उन्हें ये तो मालूम है कि हाँ व्रत का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है, सूत्र है, उन्होंने सूत्र रट लिया। लेकिन जब उनसे पूछते हैं कि ये कहाँ से आया, कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, तो नहीं बता पाते। वही चीज अगर हम ओरिगेमी के माध्यम से पेपर कटिंग करके अगर बच्चों को हम उस लेवल पर, जब वो जूनियर लेवल में था, वो सातवीं क्लास में आठवीं क्लास में वो बच्चा था, अगर हम वही उसे समझा देते तो वो आगे चलकर जो है वो उसी चीज को दिमाग में बस जाती। क्योंकि इस तरह की जब चीजें किसी TLM के माध्यम से, किसी एक्टिविटी के माध्यम से हम बच्चों को बता देते हैं, वो कभी नहीं भूलते। लेकिन जब मैं 6-7 में था, हमारे एक टीचर ने हमें ठोस का फैलना, गर्म होने के बाद ठोस फैलता है, ठंडा होने के बाद सिकुड़ता है, उन्होंने हमें गर्म करके और रिंग के ऊपर उस गोले को रख के दिखाया। पहले उसे ठंडे को जो है रिंग के अंदर डाल के दिखाया, वो रिंग के अंदर से गुजर जाता है, लेकिन जब वो उसे गोले को गर्म कर लेते हैं फिर रिंग के में डालते हैं तो नहीं गुजरता। ये मुझे आज भी याद है। अगर बच्चों को उसी पीरियड में जो उनका स्टार्टिंग वाला पीरियड है वहां अगर उन चीजों को सिंपल वे में एक प्रयोग करके चीजों को दिखलाकर बता दी जावे, समझा दी जावे, तो मैं समझता हूँ कि साइंस भी आसान है और मैथमेटिक्स भी आसान है। मैथमेटिक्स के अंदर खेल की चीजें बहुत है।
0: जी, तो श्रोता साथी जो भी आप सुन रहे हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे या आप खुद भी, मैं समझता हूँ कई सारे बच्चे हमारे रेडियो मधुबन से जुड़े हुए जो सुन रहे हैं, जिनको ऐसा लगता है कि गणित तो बड़ा कठिन है, या गणित और विज्ञान के नाम में ही थोड़ी सी थरथरी और कपकपी आनी शुरू हो जाती है, भले महीना गर्मियों का ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़े डर रहे हैं इन दोनों विषयों से या किसी भी विषय से, तो आप अपने शिक्षक को जाकर के पूछे कि मुझे इसे अच्छे से समझाइए, मुझे समझ में नहीं आया है। और जो शिक्षक सुन रहे हैं या जो बड़े सुन रहे हैं आज इस कार्यक्रम को, मैं समझता हूँ मोहम्मद मतीन जी ने एक बहुत सुंदर हमें प्रेरणा दी है कि शुरुआती दौर में ही अगर बच्चों को, प्रारंभिक दौर में ही बच्चों को अगर प्राकृतिक रूप से जो प्रैक्टिकल है, जो व्यवहारिक है, कुछ एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे जो उनको आंखों के सामने अगर आप प्रत्यक्ष दिखा सके, तो उस चीज को वो कभी नहीं भूलेंगे। जैसे नाव के जरिए पाइथागोरस थ्योरम समझा सकना, या किसी और ओरिगेमी के माध्यम से कठिन कठिन गणित के प्रसंगों को समझा देना, ये मोहम्मद जी ने बहुत सुंदर तरीके से अपनाया है। और ये अपने आप से आया नहीं है दोस्तों, जैसे उन्होंने बताया उन्होंने सीखा है। तो एक शिक्षक होने के बावजूद भी एक अच्छे शिष्य की तरह उन्होंने प्रशिक्षण ली है, ताकि वो अपने शिक्षण में अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट्स को, छात्रों को वो शिक्षा दे सके जो उनके न केवल अंदर में जो ये घबराहट है इसको तोड़े, लेकिन साथ ही साथ उनको उस विषय में रुचि भी डाल सके। मोहम्मद जी मुझे एक चीज जानना होगा कि यहाँ पर जैसे कई शिक्षक हैं जो कई बार सोचते हैं कि ये तो मेरे करिकुलम में नहीं है, ये तो मेरे जॉब में है ही नहीं, ये तो मुझे पूछा नहीं गया है, तो मैं इस पे क्यों इतना जोर डालूं, मुझे तो chapter 1, chapter 2, chapter 3 खत्म करना है, chapter 1 और chapter 2 के में क्या और चीजें मैं नया कर सकता हूँ, ये सोचने के लिए आवश्यक होता है कई बातें। कौन सी बातें आवश्यक होती हैं कि एक शिक्षक जो है अपने मौजूदा कार्य क्षेत्र से बाहर निकल कर के कुछ अधिक करे, इसके लिए आवश्यक किन चीजों की है एज अ शिक्षक?
1: देखिए, शिक्षक के लिए ये जरूरी है कि वो जितना उसका सिलेबस है उस सिलेबस से ज्यादा चीजों को स्टडी करे, बहुत जरूरी है। अगर हम केवल सिलेबस तक के ही, सिलेबस के अंदर मान लिया 10 चैप्टर है और हम 10 चैप्टर तक ही सीमित हैं, तो हम बच्चों को बहुत अच्छे से गाइड नहीं करते। हमें 10 चैप्टर को कराने के लिए कम से कम 50 चैप्टर हमें समझने चाहिए। अगर हम विस्तृत ज्ञान रखेंगे, विस्तृत जानकारी रखेंगे, तो बच्चों के हर जो उनके क्वेश्चन है, उनके जो जुस्तजु है, उनके जो सीखने की चीजें हैं, उनको हम क्लियर कर सकेंगे। अगर हम 10 ही चीजों पर हम अपना फोकस रखते हैं तो हम बच्चों को बहुत अच्छे से नहीं बता पाए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि एक आइटम हमारे उसमें किट में है जियो बोर्ड, तो जियो बोर्ड के बारे में अगर मैं भी यही सोचूं कि जियो बोर्ड के बारे में जो NCERT है उसने केवल 2 चीजें बताई हैं, आकृति बनाना और उसका क्षेत्रफल निकालना, तो बात जमी नहीं। तो मैंने क्या किया है, मैंने उसी जियो बोर्ड में मैंने उसमें 7-8 चीजें ढूंढ ली हैं और उनको मैं धीरे धीरे वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपने साथियों को शेयर कर रहा हूं ताकि वो उन चीजों को देख सके। क्योंकि एक ही चीज को हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और यही तो अलग पहचान बनाएगी हम। अगर हम भी सबकी तरह से केवल दो ही चीजों पर फोकस रखेंगे तो फिर वो शिक्षक और हम में अंतर क्या हो। तो टीचर को जो है अपनी पहचान बनाने के लिए अलग से अध्ययन करने की जरूरत है।
0: तो शिक्षक को भी शिक्षा में अनवरत प्रयास करते रहना चाहिए, उसे भी पढ़ते रहना चाहिए, उसे भी संशोधन करते रहना चाहिए, शोध करते रहना चाहिए, ताकि वो अपने बच्चों को जब पढ़ाने जाए तो बच्चों के हर प्रकार के सवालों का उसके पास जवाब होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: यहाँ मुझे एक और सवाल पूछना था, जैसे ये मैं समझता हूँ एक हुनर की बात होती है कि ये हुनर हर किसी में नहीं होता। कई बार ये जो है ताए बंद हो जाते हैं लोग कि भाई हमें तो इतना ही करना है, तो इसलिए शिक्षक उसे बनना चाहिए जो वास्तव में चाहता है कि मेरे प्रयास से देश को एक बहुत ही होनहार विद्यार्थी मिले। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इतना होनहार नहीं है, इस प्रकार की भावना के साथ वो शिक्षक नहीं बना है, जैसे कि आप बने हैं, आपको शिक्षक ही बनना था। कई बार लोग इस वजह से भी शिक्षक बन जाते हैं क्योंकि एकमात्र वही जॉब बचा है उनके लिए करने के लिए, दूसरा कहीं पर जो उन्होंने ट्राई किया वो हुआ नहीं। तो मान लीजिए अगर कोई मजबूरन में या किसी का शिक्षक बनना पहली प्रायोरिटी या पहली प्राथमिकता नहीं थी, अब वो केवल कर रहे हैं, एक नौकरी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, ऐसे में उनको अगर अपनी शिक्षण को बहुत ऊंचा बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है, मानते हैं कि वो बहुत अच्छे शिक्षक नहीं है लेकिन बहुत अच्छा शिक्षण देना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या राय देना चाहेंगे?
1: मेरा एक मानना है कि हम शिक्षक हैं या हम शिक्षक बने हैं या हम बनना नहीं चाहते थे और बन गए हैं, तो हमें अपने आप को नहीं सोचना, अपने आप को नहीं देखना, हमें उन बच्चों को के बारे में सोचना चाहिए जो बच्चे आज हमारे पास हैं। वो एक जैसे कह देते हैं कि एक मिट्टी है, गीली मिट्टी है, कि आज उसको जैसा रूप दे देंगे कल सूखने के बाद वो मिट्टी ऐसी ही हो जाएगी। अगर हम अपनी चाहत के अनुरूप भी ना होते हुए हम शिक्षक बन गए हैं, तो हमें उन बच्चों के बारे में सोचना है जो बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, कल को वो हमारे देश के कर्णधार बनेंगे, उस देश को संभालेंगे। और इन बच्चों से अगर आज हम बहुत अच्छे से व्यवहार करेंगे, बहुत अच्छे से उन्हें गाइड कर देंगे, हमारे लिए वो बच्चा हो सकता है कि वो 2 हमारे पास रहे, 3 रहे। मैं जूनियर हाई स्कूल में हेडमास्टर हूँ तो मेरे पास बच्चे 3 के लिए आते हैं, तो मेरे लिए तो वो 3 का मेहमान है। लेकिन वो 3 के अंदर ही जो मेरे पास से सीख कर चला जाएगा यहाँ, क्योंकि उसका वो छोटी उम्र का बच्चा है, वो यहाँ से 11-14 के बीच में रहता है, तो बच्चा या तो प्राइमरी वाले अध्यापक को याद रखता है या जूनियर वाले को याद रखता है। बहुत कम ऐसे टीचर हैं होते हैं जो हाई स्कूल और इंटर में पढ़ाते हैं और बच्चे के याद रह जाते हैं, बहुत कम होते हैं। लेकिन छोटी लेवल पर जो टीचर बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, अच्छे से उन्हें शिक्षा दे देते हैं, बच्चा उनको हमेशा सम्मान करता है और हमेशा याद रखता है। मैं भी आज अभी तक भी ये समझता हूँ कि मेरे वो सब टीचर याद हैं जिन्होंने मुझे छोटी एज में पढ़ाया था, आज भी मेरे याद है। मैं अभी पिछले 2 पहले अपने एक स्कूल की तरफ से, जहाँ मेरा कॉलेज था, जहाँ से मैंने हाई स्कूल इंटर किया, वहां से जब मैं गुजरा तो मैं उस स्कूल के अंदर होकर आया, वहां मैंने बताया कि मैं 50 पहले मैंने यहाँ एडमिशन लिया था, जो वहां के वर्तमान प्रधान प्रिंसिपल थे बहुत खुश हुए, उन्हें मैंने सारी बातें वहां की बताई, उस पीरियड की, सारे टीचर्स के बारे में बताया, बहुत खुश हुए। तो इस तरह से हमें चाहिए कि हम बच्चों को उसके बारे में सोचें, अपने लिए ना सोचें कि हम तो भूल से टीचर बन गए, नहीं ऐसा नहीं है। अगर हम टीचर बने हैं तो कुदरत ने हमें बहुत अच्छा व्यवसाय दिया है, एक ऐसा व्यवसाय जहाँ हम समाज से जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं, हम देश के उस भविष्य से जुड़े हुए हैं जो आने वाले समय में हमारे देश को संभालना है।
0: तो दोस्तों, अगर आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, चाहे आप शिक्षक हैं या आपके आसपास में कोई शिक्षक है, तो आपको सच में ये चीज मान लेना चाहिए कि ये बहुत ही उच्चतम व्यवसाय मिला है आपको, और जैसा कि मोहम्मद जी ने बताया कि कुदरत की आपको ये देन है कि आप भारत के भविष्य के साथ जुड़े हुए, देश के भविष्य के साथ जुड़े हुए, कई बच्चों की भविष्य, कई माता पिताओं की उम्मीदों के साथ आप जुड़े हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आसपास में आपके कोई एक शिक्षक हो, आज उस शिक्षक को बहुत ऊंची नजर से, बहुत सम्मान से देखने की जरूरत है। तो अगर आपके आसपास में कोई ऐसा आपका दोस्त हो या आपका कोई रिश्तेदार हो जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ है, जो शिक्षक है, आज जरूर आप उसे याद कीजिएगा और याद करने के बाद उसे जरूर धन्यवाद भी दीजिएगा, क्योंकि उनकी ही बदौलत देश को बहुत एक ऊंचा और उम्दा भविष्य मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद मतीन अंसारी जी से, जिन्हें भारत की भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह देवी पाटिल जी ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। आइए आगे बढ़ते हैं और बातचीत करते हैं मोहम्मद जी से उनके इस राष्ट्रीय पुरस्कार की जर्नी के लिए। इस यात्रा का थोड़ा सा आप हमें बताएं, कैसे ये पुरस्कार आपको मिला और कैसा आपका ये अनुभव रहा, और आपको ही क्यों चुना गया ये तो हम समझ गए क्योंकि आपने हमेशा से ही नवीनता को पकड़ा है और नवीनता को लेकर के आगे चले हैं, लेकिन ये जो जर्नी है ये भी हम सुनना चाहेंगे।
1: जैसा मैंने सर बताया था कि हमारे यहाँ 2010 में एक टीम आई थी, हमारे मेरठ जनपद में वर्ल्ड बैंक की टीम थी, और उसको ये देखना था कि जो वर्ल्ड बैंक हमारे स्कूलों को पैसा देता है सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत, क्या वो पैसा स्कूलों में लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा। तो क्योंकि उसे पूरे जनपद को देखना था, जनपद के कुछ सेलेक्टेड स्कूलों को अधिकारियों को दिखाना था, तो अधिकारी हमारे जिले के भी, मंडल स्तर के भी और स्टेट लेवल के भी एक महीना तक हमारे जनपद में रहे और उन सारे पूरे जनपद के स्कूलों को देखा कि कौन सा स्कूल टीम को दिखाना चाहिए। आखिर में हमारे स्कूल को और दो एक स्कूल को और जो प्राइमरी जूनियर थे उनमें से तीन स्कूलों को उन्होंने सेलेक्ट किया था, जिसमें एक हमारा भी स्कूल। और जब वो टीम हमारे स्कूल को देखकर गई, उसके बाद मुझे 2011 में ये देखते हुए कि भाई इनका, इन्होंने जो था एक अलग काम किया है, अलग इन्होंने एक पहचान बना के रखी है, तो 2011 में 5 सितंबर को नई दिल्ली में जो विज्ञान भवन है वहां पर मुझे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया गया। और मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बहुत एक गर्व का पल था, मेरठ जनपद से मैं अकेला शिक्षक था जिसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उस साल दिया गया।
0: तो जब आपने शुरुआत की थी शिक्षण की, तब कभी सोचा था कि ऐसे आपको एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त होगा?
1: नहीं, उस वक्त तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन क्योंकि मेरी सोच हमेशा से निराली वाली सोच मैं अपनी रखता था, जो भी मैं काम करता था उसमें मैं अपनी कुछ नई चीज जरूर रखता था, उसी को सोच चलते हुए जब मुझे 2002 में एक नया स्कूल दिया गया कि आप इस स्कूल को जो है शुरुआत कीजिएगा, तो उस स्कूल को मैंने बिल्कुल उसी तरह से मैंने सोच कर चलाया कि जैसे ये प्राइवेट स्कूल होते हैं अपने आप को चमका के रखते हैं, बच्चों की अटेंडेंस को करना, सफाई को रखना, तो उसी तरह से मैंने बहुत अच्छे से उस स्कूल को बना कर रखा। एक दिन उस स्कूल के बाहर से हमारे जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी थे वो गुजर के चले गए, और फिर मैंने उनको अपने स्कूल में एक दिन बुलाया, मैं आमंत्रित किया मैंने उन्हें कि आप हमारा स्कूल देखेगा सर, तो आए तो मेरे से खुद उन्होंने ये कहा कि मैं एक दिन इधर से गुजर रहा था, मैंने सोचा कि ये कोई प्राइवेट स्कूल होगा, ये तो मुझे आज पता चला कि ये तो हमारा अपना स्कूल है, बेसिक स्कूल है। तो और वही हमारे अधिकारी थे जिन्होंने फिर हमें आगे चल के बहुत आगे सराहा और हमारे कार्य।
0: तो ये जो आपने एक अनुभव बताया अपना, इस अनुभव में बहुत बड़ा एक कहानी छुपा हुआ है मोहम्मद जी, जैसे मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जो भेद है प्राइवेट स्कूलों में और जो सरकारी स्कूलों में, जो ये भेद है, चाहे रखरखाव का भेद हो, चाहे साधनों का भेद हो, चाहे जो शिक्षक हैं उनमें भी जो भेद होता है, उनके वेतन में जो भेद होता है, ये बहुत मायने रखता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कौन से स्कूल में दाखिला कराएं। और कई बार ये बहुत बड़ा एक रीजन बन जाता है, एक कारण बन जाता है लोगों के चुनाव में और कई फैसले कर लेते हैं। आपको लगता है कि भारत सरकार के तहत जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी विद्यालय हैं, सबको अच्छा बनाना चाहिए या सब बने हुए हैं, या लोगों के नजरिए में कुछ प्रॉब्लम है, आप इस विषय को कैसे देखते हैं?
1: देखिए, आजकल जो समय है, इस समय हमारे बेसिक के स्कूल जो सरकारी स्कूल हैं, अब वो पहले जैसे स्कूल नहीं है। अगर मैं आपसे 10-15 साल पुरानी बात करता हूँ, तो वाकई मैं खुद ये महसूस करता था कि टीचर उतनी मेहनत नहीं कर रहा जितनी करनी चाहिए, लेकिन आज समय बदल गया है, आज शिक्षक मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है और काम अब दिखने भी लगा है। अब पहले जैसी बात नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि हमारे समाज को भी इस हमारे जो सरकारी स्कूल है इनकी तरफ ध्यान देना चाहिए, यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और सफल रहे, वो आज भी सफल है। मेरी एक बेटी हायर सेकेंडरी कॉलेज में टीचर है।
0: तो आपके खुद के बच्चे भी शिक्षण की दिशा में ही गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता को देखा है एक अच्छे उम्दा शिक्षक बनते हुए?
1: एक बच्ची जो है ट्रेनिंग करके और सीटेट वगैरह करके वो सब इंतजार में है कि वैकेंसी निकला तो उसका नंबर आ जाएगा, क्योंकि वो अच्छी मेरिट वाली लड़कियों में से है। लेकिन अभी हमारे यहाँ कुछ काफी दिनों से वैकेंसी नहीं निकली है, तो हम भी वेट कर रहे हैं कि कहीं वैकेंसी निकले तो उसका ज्वाइनिंग हो जाएगी।
0: तो आपके विद्यालय में हर प्रकार के लोग आते हैं ना, मतलब जो बच्चे हैं चाहे वो गरीब घर से आते हैं, थोड़े से अच्छे संभ्रांत परिवार से भी आते हैं, कुछ मध्यम परिवार से भी आते हैं, कुछ जो है सांस्कृतिक रूप से बहुत ही मजबूत धरोहर के साथ आते हैं, कुछ जो है जिनका सांस्कृतिक धरोहर के प्रति इतना रुझान नहीं है, कुछ जो है ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पर माता पिता दोनों ही बहुत कठिन परिस्थितियों से पालना कर रहे हैं, कुछ जो है जहाँ पर ऐसी अवस्था नहीं है। तो आपके पास हर प्रकार के स्टूडेंट्स आते हैं आपके स्कूल में। आपने कभी देखा कि बच्चों में आपस में कई कुछ भेदभाव है या जो जातिवाद होता है कि भाई इन लोगों से बात नहीं करना या हम ऊंचे हैं वो नीचे हैं, इस प्रकार का जातिवाद, या फिर बच्चियों को कम देखा हो आपने पढ़ते हुए, बच्चों को ज्यादा पढ़ते हुए देखा है कन्याओं की शिक्षा के प्रति, कौन कौन सी ऐसी चीजें आपने नजर में आपकी आई हैं और उनको आपने कैसे पार किया है वो जानना चाहेंगे?
1: सर, हमारे स्कूल के अंदर ऐसा कभी नहीं हुआ कि कहीं कोई जात पात ऊंच नीच वाली बात रही, ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे यहाँ ग्राम प्रधान अब तो नहीं है, वो एक्सपायर हो चुके हैं, उनके परिवार के बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ते थे। जो वर्तमान ग्राम प्रधान है वो तो नई एज के हैं, उनके बच्चे नहीं है। बस एक चीज मैंने महसूस की है, समाज के अंदर जहाँ किसी के पास दो पैसे हो जाते हैं तो वो ये समझता है कि अगर तूने किसी अच्छे स्कूल में बच्चे को नहीं भेजा तो पड़ोसी ये कहेगा कि तेरे पास कुछ नहीं रहा। बहुत सारे लोगों के अंदर ये जो भावना आ गई है कि बच्चा अगर बस में बैठ के स्कूल तक जाएगा तो फिर पड़ोसी का ताना नहीं मिलेगा, किसी से रिश्तेदार का ताना नहीं मिलेगा, ये चीज खत्म होनी चाहिए। जितने काम हम कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, जितने क्वालिफाइड टीचर हमारे पास हैं, इतने वहां प्राइवेट स्कूल के अंदर नहीं है। वहां टिप टॉप है, बिल्डिंग अच्छी है, उन्होंने अपने प्रांगण को अच्छा चमका कर रखा है, ड्रेस उनकी अच्छी है, वो सब चीजें दिखती हैं। वहाँ बच्चा ट्यूशन भी पढ़ता है, हमारे यहाँ का बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता, वो हमारे स्कूल की पढ़ाई पे डिपेंड है, क्योंकि माँ बाप के पास पैसा ही नहीं है, उनके पास ट्यूशन के लिए तो पैसा है ही नहीं। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल में जा रहा है वो इस स्कूल में जो कुछ पढ़ रहा है वो ठीक है, लेकिन वो ट्यूशन अलग पढ़ रहा है। तो यहाँ फर्क हो रहा है। हमारे यहाँ जो बच्चा है वो बहुत ही गरीब परिवार का है, जहाँ कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो स्कूल से जाने के बाद अपने घर के परिवार के कामों में हाथ बटाते हैं, कोई खेती में काम हाथ बटाता है, कोई घर के कामों में हाथ बटाता है। तो यहाँ जो हमारे दोनों प्राइवेट और सरकारी स्कूलों के अंदर जो अंतर है, बस वो यही आ रहा है कि हमारे गार्जियंस ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, पैसे वाले नहीं है, उनके पास समय भी कम है, वो अपने काम में मजदूरी में लगे रहने के कारण बच्चों को उतना नहीं देखभाल रखते जितने जो अमीर फैमिली के लोग हैं, वहाँ शिक्षित भी हैं, उनके पास पैसा भी है, सब चीज साधन है, तो दोनों में यहाँ फर्क हो जाता है। नहीं तो इस सरकारी स्कूलों के अंदर किसी तरह की कोई कमी नहीं है, और अब तो गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है, बहुत अलग अलग अलग तरह की जो पहले सुविधाएं स्कूलों में हमारे सरकारी में नहीं होती थी अब मौजूद हैं, और बहुत सारी सुविधाएं बहुत स्कूलों के अंदर हमारे मौजूद, कंप्यूटर्स वगैरह ये सब चीजें अब सब जगह मौजूद है, सब हर तरह की फैसिलिटी स्कूलों के अंदर अब मिल रही है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: तो ये जो आपने बात कही कि अभिभावकों के अंदर ये धारणा बदलनी चाहिए कि बच्चा अगर महंगे स्कूल में जाएगा तो मेरा रुतबा बना रहेगा मेरे आसपास, मेरे पास पड़ोसियों में, ये जो धारणा है, ये धारणा की वजह से हमारे सरकारी स्कूल में जो शिक्षकों का धरोहर है, जो इतने गुणी ज्ञानी हैं, उन तक बच्चे पहुंच नहीं पाते और फिर खर्चा भी ज्यादा हो रहा है और उसका बच्चों पे प्रेशर भी होता है क्योंकि उन्हें स्कूल में भी पढ़ना है, फिर ट्यूशन में भी पढ़ना है। तो ये जो अवधारणा है लोगों के अंदर, इसको निकालने का आपको क्या लगता है, क्या तरीका है? क्या पब्लिसिटी होनी चाहिए या शिक्षकों को, जैसे आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, या क्या तरीका है कि ये जो अवधारणा है आपको लगता है ये कुछ समय में जा सकती है?
1: ये तो हम पीटीएम वगैरह करते हैं, अभिभावकों से संपर्क रखते हैं, उन बताते रहना हमारा कर्तव्य है बस। हम तो यही कर सकते हैं, हम गार्जियंस को समझा सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ भी भेजिएगा बच्चों को, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी समय लगेगा इन चीजों में, क्योंकि जो अमीर लोगों का स्टेटस वाली बात जहाँ आ रही है, वो एक तरह से एक हमारे और उनके बीच में जो एक वो होना चाहिए, वो एक कहीं ना कहीं एक बाधा खड़ी करती है। हम एक बार ऐसा हुआ कि कुछ वर्ग के बच्चे हमारे स्कूल में एक दो तीन साल तक नहीं रहे। मैंने देखा कि भाई इस वर्ग के बच्चे कहाँ चले गए, यहाँ तो हमारे इस वर्ग के बच्चे तो बहुत आते थे, धीरे धीरे कैसे। तो मैं उन कुछ परिवारों से मिला तो वो बात मुझे एक ना कही कि इसलिए लोग दूसरे जगह भेज रहे हैं ताकि उनका पड़ोसी उन्हें ताने ना देगा, इसलिए सब लोगों ने जो है प्राइवेट में भेजना शुरू कर दिया है। फिर मैंने उन्हें समझाया तो अब फिर उसी वर्ग के जो है बच्चे फिर हमारे स्कूल में अब फिर से दिखाई देने लगे। तो ये जरूरी है कि हमें भी मतलब समाज से संपर्क बना के रखना है, उन्हें समझाना हमारी भी जिम्मेदारी।
0: ये आपने बहुत अच्छा कहा कि जिम्मेवारी बांटनी जरूरी है, जितनी जिम्मेवारी शिक्षकों की है अपने स्कूल के अवस्था को, व्यवस्था को ऊंचा बना के रखने में, उतनी जिम्मेवारी अभिभावकों की भी है कि वो अपने बच्चों का भविष्य वो ध्यान में रखते हुए जो श्रेष्ठ कदम है वो जरूर उठाए। केवल धन पैसा या आपसी विचारधाराओं और अपने रुतबे आदि के नशे में अगर वो कुछ ऐसा कदम उठाते हैं, इससे बच्चों के भविष्य पे भी बहुत बड़ा और देश के भविष्य में भी बहुत बड़ा एक मैं कहूंगा कि समस्या बन सकता है। भारत देश में घूमते घूमते आपने कई शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया है, भारत के कई कोनों कोनों में आप गए हैं, कई प्रोग्राम्स किए हैं आपने, और शिक्षकों को अपने शिक्षण में कैसे नवीनता को धारण किया जा सके इस पे आपने बहुत काम किया है। तो जब आप पूरे भारत का चक्कर लगा रहे थे तो आपको ऐसी कौन सी एक बात लगी जो पूरे भारत को भारत बनाती है? सभी विविधताएं हैं लेकिन कोई एक चीज जो आपको नजर में आई है जो पूरे भारत को भारत बनाती है?
1: देखिए, हमें भारत को भारत बनाने वाली बात यह है कि हमें सबसे पहला काम देश प्रेम, हमें अपने देश से पूरी तरह से देश के प्रति समर्पित रहना चाहिए। कोई भी ऐसा काम हमसे, हमारे परिवार से, हमारे किसी मिलने वाले से ऐसा ना हो कि जिससे हमारे राष्ट्र को किसी तरह से कहीं कुछ नुकसान पहुंचता हो, या किसी तरह से कोई भी ऐसा कार्य हमसे नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई हमारी राष्ट्रभक्ति पर, राष्ट्र प्रेम पर कोई प्रश्न चिन्ह लगा सके। अगर हम इस तरह से हम रहते हैं, इस तरह के हम व्यवहार करते हैं, इस तरह का हम काम करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये हमारे भारत को भारत बनाने के लिए पर्याप्त है।
0: जी, मैं एक्चुअली ये जानना चाह रहा था क्योंकि आप भारत के अलग अलग जगहों पे गए हैं, हर जगह की अपनी एक कहानी है, एक अपना बोली है, अपना सब कुछ विविध है, लेकिन कोई एक चीज जो आपने देखी हो जो पूरे भारत को एक बनाती है, जो हर जगह सेम लगी आपको?
1: सेम लगना, इसके लिए तो मुझे सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या होना चाहिए। तो बच्चे सब जगह के इसी तरह के होते हैं जैसे हम अपने देख रहे हैं। मैं अगर कश्मीर गया हूँ तो मैंने उसी तरह के बच्चे वहां देखे हैं, बच्चों ने जो है बहुत अच्छे से उन्हें ये लगा कि एक यूपी का बंदा हमारे पास एक चीज को शेयर करने के लिए आया है, तो वो उन्होंने हमें छोड़ने को तैयार नहीं थे, हमसे चीजें बता दो, ये और बता दो सर, ये और बता दो, ये और बता दो। इस तरह का बच्चे तो जहां भी जाते हैं सब सीखना ही चाहते हैं। मैंने YouTube पे चैनल नहीं बनाया था, तो मैं जब अलग अलग जगह पे जाता था बच्चे मेरे से खुद कहते थे सर आपका YouTube चैनल भी है, तो मुझे उन बच्चों के कहने के बाद फिर उस बनाना पड़ा कि भाई हाँ चलो, फिर मैंने उसे बनाया क्योंकि समय की मांग है तो करना भी चाहिए।
0: वो कहते हैं और इस YouTube चैनल के जरिए बच्चे जो दूर दूर पे हैं वो भी आपको देख सुन पाएंगे, सीख पाएंगे।
1: जी जी,
0: तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके YouTube चैनल का नाम बताएंगे तो हमारे जो श्रोता है वो भी ढूंढ सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं।
1: मैंने उसका नाम रखा है अंसारी कॉर्नर।
0: अंसारी कॉर्नर, तो दोस्तों अगर आप YouTube देखते हैं और YouTube पे सर्च कीजिएगा अंसारी कॉर्नर, तो आपको मिलेगा बहुत सारा ढेर सारा मजेदार ज्ञान का पिटारा, जिसको खोल करके आप बहुत कुछ नया सीख सकते हैं। मोहम्मद जी, जब आपने बताया कि भारत को एक करने वाली वो एक खास बात यह है कि भारत का हर बच्चा एक जैसा ही है, एक जैसा उत्सुक है, एक जैसा एनर्जेटिक है, एक जैसी जिज्ञासा रखता है, एक जैसा व्यवहार करता है, इससे एक बहुत बड़ी उम्मीद जगती है कि भारत के बच्चे जो हैं वो भेदभाव से परे अच्छे से फल फूल रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: भेदभाव वाली जमीन में अगर बच्चे बड़े होंगे तो वो भी आगे चल करके भेदभाव को ही बढ़ावा देंगे, लेकिन अगर आपको ये नजर आया है कि पूरे भारत में बच्चे तो एक जैसे ही होते हैं तो ये तो मैं समझता हूँ भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है।
1: जी बिल्कुल, बच्चे तो मैंने देखा है कि सब जगह व्यवहार सबका एक जैसा है, भाषा भले ही अलग है, उनका बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, लेकिन बच्चों के अंदर वही जिज्ञासा हमारे यूपी में है तो वही दूसरे जनपद में है, वही हरियाणा में है, वही उत्तराखंड में है और वही कश्मीर के अंदर है, तो इसी तरह की चीजें हैं।
0: जी, तो लास्ट में जाते जाते हम आपसे एक रैपिड फायर राउंड खेलना चाहेंगे जिसमें मैं आपसे फट-फट कुछ सवाल पूछूंगा और आपको एक एक शब्द में उनका जवाब देना होगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: ठीक है। तो पहला सवाल ये है, शिक्षक कौन है?
1: शिक्षक वही है जो दूसरों के लिए जीता है।
0: वाओ,
1: दूसरों के लिए
0: सुंदर। शिक्षा क्या है?
1: शिक्षा वो है जो हमारे जीवन को एक तरह से कोमल बना देती है, हमारे जीवन को के अंदर की कठोरता को, अवगुणों को मिटा देती है, दूसरों के लिए हमें समर्पित रहना बता सिखा देती है।
0: शिष्य कौन है?
1: शिष्य वो है जो हर समय सीखना चाहता है। अगर मैं आज 63 की एज में हूँ लेकिन मैं आज भी सीखना चाहता हूँ और सीखता हूँ। अगर हम सीख रहे हैं तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, हम जीवन पर्यंत सीखते हैं, हमेशा सीखते रहे।
0: सुकून क्या है?
1: सुकून जब हमारा माइंड किसी चीज से सेटिस्फाई हो जाए, हमारे हमें एक तरह से किसी चीज जिज्ञासा हमारी शांत हो जाए, हमें उस वक्त हमें नींद भी अच्छी आएगी, हमें सब चीजें दुनिया अच्छी लगेगी। अगर दुनिया अच्छी लग रही है, नींद अच्छी आ रही है तो सुकून है। अगर हमारे पास दौलत तो बहुत है, सब चीजें हैं, लेकिन ना नींद आती है ना हमें खाना पेट भर का खाया जाता है, तो हम वो सुकून है ही नहीं। सुकून का मतलब बढ़िया खुश दिल खुश रहना।
0: जी, सेवा क्या है?
1: सेवा जब हम दूसरे लोगों को के लिए काम करते हैं निस्वार्थ भाव से, वही सेवा है। अगर हमारे पीछे कोई स्वार्थ जुड़ा है काम करने के लिए तो वो सेवा नहीं, सेवा निस्वार्थ।
0: प्यार क्या है?
1: प्यार जब हम किसी को अपना लेते हैं तो और वो हमारे अंदर बस जाता है,
0: जो अपनापन
1: आ जाता है और दिमाग में निकालने से भी नहीं निकलता, वो है।
0: तो प्यार मतलब अपनापन, जब आप किसी को अपना समझ लेते हैं तो वही प्यार। शांति क्या है?
1: शांति जब कोई किसी से किसी को किसी से नुकसान ना पहुंचता हो, बिल्कुल हर कोई ये समझ ले कि मुझे इस शहर में, इस गली में, इस देश में, इस जगह पर, मैं अगर कहीं बाहर भी बैठ जाऊंगा, रात में भी अगर सफर के लिए निकल जाऊंगा तो मुझे कोई खतरा नहीं है, वो है।
0: भारत क्या है?
1: भारत एक गुलदस्ता है जिसमें बहुत तरह के फूल हैं और यही हमारी एक भारत की अलग स्पेशल पहचान है। अगर इसमें अलग अलग तरह के फूलों को निकाल के हम एक ही फूल लगा, एक ही तरह के लगा लेंगे तो वो हमारा जो भारत है वो अलग हो जाएगा, जैसा हम भारत हमेशा देखते आए हैं वो एक गुलदस्ता है जिसमें बहुत तरह के फूल खिले हुए हैं और हमेशा खिले रहेंगे।
0: आखिरी सवाल, मोहम्मद मतीन अंसारी कौन है?
1: मोहम्मद मतीन अंसारी एक ऐसा शिक्षक है जो देश के लिए काम कर रहा है, समाज के लिए काम कर रहा है, और वो जब तक सेवा में है तब तक तो करेगा ही, लेकिन 1.5 साल बाद जब मैं सेवा से मुक्त हो जाऊंगा तब भी मैं समाज के लिए ये सब चीजें करता रहूंगा, बच्चों को बताने की, समझाने की, टीचर्स से संपर्क करने की, विज्ञान के कार्यक्रमों में आने जाने की काम मैं करता रहूंगा, और जो मुझे सीखना चाहिए उसे भी सीखता रहूंगा।
0: तो सुना दोस्तों, आज के यशस्वी भारत कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं मोहम्मद मतीन अंसारी जी, जिन्होंने अपने सुंदर शब्दों में ये बात कह दी कि भारत एक गुलदस्ता है और उस गुलदस्ते के में जो महक रहे फूल हैं वो हम सब हैं। हर एक को आवश्यक है कि अपने पे ध्यान दे। अगर हम अपने पे ध्यान रखेंगे तो हम हमारे पूरे गुलदस्ते का ख्याल रख सकते हैं, और जैसे कि मोहम्मद जी खुद अपने पे ध्यान रखते हैं, जैसा उनका मानना है कि मैं एक शिक्षक तो हूँ लेकिन मैं एक शिष्य भी हूँ और मैं हमेशा सीखता रहूंगा। इसलिए सीखता रहूंगा क्योंकि मुझे पता है इस शिक्षण से, इस सीखे हुए हुनर से मैं मेरे देश के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो अगर आप भी कुछ नया सीखना चाहते हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो बड़े दिल लगा करके सीखिएगा क्योंकि उस हुनर से आप पूरे देश पे कुछ ना कुछ जादू जरूर बिखेर सकते हैं। यशस्वी भारत कार्यक्रम में आज हमारे बीच में थे मोहम्मद मतीन अंसारी जी, जो कि मेरठ जिले में सेवारत हैं, और एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने कई शिष्यों के साथ साथ, कई छात्रों के साथ साथ कई शिक्षकों के जीवन में भी बदलाव लाया है। कैसे विज्ञान में ओरिगामी को जोड़ करके और अपने विद्यालय को श्रेष्ठतम श्रेष्ठ विद्यालय बनाने में उन्होंने मेहनत की है, जिसकी वजह से भारत सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया था। आज हम बात कर रहे थे मोहम्मद मतीन अंसारी जी से। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे किसी एक नए मेहमान के साथ, लेकिन आपका जुड़े रहना बहुत जरूरी है, इसलिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा रेडियो मधुबन 107.8। और हाँ दोस्तों, जैसे कि मोहम्मद जी ने बताया, कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहिएगा, सीखते रहना ही जिंदा होने की निशानी है। अलविदा दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन, वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान चिंतन, जहां हम विचारों के गहराइयों में उतरते हैं, ज्ञान के नए आयाम खोजते हैं और जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर मनन करते हैं। इस कार्यक्रम में हम दर्शन, संस्कृति, विज्ञान, समाज और आध्यात्मिकता से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा करेंगे। हमारा उद्देश्य है आपके मन में नए विचारों का संचार करना और आपके चिंतन को एक नई दिशा देना। तो आइए ज्ञान की इस रोशनी में आगे बढ़ें और नए दृष्टिकोणों को समझें। ज्ञान चिंतन, एक नई सोच, एक नई दिशा।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक जैन और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। हमेशा की तरह मैं आज फिर एक नया विषय लेकर आया हूं और आज के विषय निमित्त निर्माण और निर्मल पर आपसे अपना चिंतन शेयर करूंगा।
2: आज हम ऐसे तीन शब्दों पर विचार करने जा रहे हैं जो जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं, निमित्त, निर्माण और निर्मल। तीनों शब्द दिखने में सरल हैं, पर इनके भीतर छिपा है गहरा आध्यात्मिक अर्थ। पहला सूत्र है निमित्त। निमित्त का अर्थ है माध्यम बनना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तू केवल निमित्त बन जा, बाकी कार्य मैं करूंगा। जब हम खुद को कर्ता मानना छोड़ देते हैं और यह मान लेते हैं कि हम केवल ईश्वर के हाथों का साधन हैं, तब जीवन से अहंकार समाप्त हो जाता है, हमारे कार्य सेवा बन जाते हैं और जीवन एक दिव्य यात्रा। दूसरा सूत्र है निर्माण। निर्माण का मतलब केवल घर या मंदिर बनाना नहीं है, बल्कि विचारों का, संस्कारों का और संबंधों का निर्माण करना है। हर सुबह जब हम एक शुभ विचार रचते हैं, वह विचार पूरे दिन को रोशन कर देता है। एक अच्छा शब्द, एक दयालु कर्म, यही सच्चा निर्माण है। जब हम रचनात्मक होते हैं तो हम नकारात्मकता से ऊपर उठ जाते हैं। तीसरा सूत्र है निर्मल। निर्मल का अर्थ है पवित्रता, साफ मन। जैसे निर्मल जल में आकाश का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखता है, वैसे ही निर्मल मन में ईश्वर का दर्शन संभव है। जब हम मन से क्रोध, ईर्ष्या और लालच को मिटा देते हैं तो भीतर प्रेम, शांति और आनंद का सागर भर जाता है। निर्मल व्यक्ति जहां जाता है वहां वातावरण अपने आप पवित्र हो जाता है। अगर हम इन तीनों सूत्रों को जीवन में उतार लें, निमित्त बने, अहंकार छोड़कर ईश्वर के साधन बने, निर्माण करें यानी शुभ विचारों और कर्मों से जीवन सजाएं, निर्मल बने अर्थात अपने मन को स्वच्छ और पवित्र रखें, तो हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा, हर कार्य सेवा बन जाएगा, हर विचार सृजन बनेगा और हर भावना प्रेम में बदल जाएगी। आइए आज हम सब यही संकल्प लें कि हम निमित्त भी

0: आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जो पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, मैं हूँ पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच।
1: लास्ट टाइम मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ तो किसी को एक्सेप्ट कर लो या उसे छोड़ के आप चले जाओ।
2: राइट
1: ठीक है, लेकिन छोड़ के चले जाने पर एक और चीज मुझे दिखी, नेवर लीव अ ट्रू रिलेशन फॉर फ्यू फॉल्ट्स। नोबडी इज परफेक्ट एंड एट द एंड अफेक्शन इज ऑलवेज ग्रेटर देन परफेक्शन।
2: अफेक्शन इज ग्रेटर देन परफेक्शन। लेकिन हमने आज प्रायोरिटी चेंज कर दी है। हम सारा दिन परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, चाहे लोगों में परफेक्शन, चाहे सिचुएशंस में परफेक्शन, चाहे काम किस तरह किया जाए उसमें परफेक्शन। एंड वो परफेक्शन ठीक है, हमें अपना बेस्ट करना था, लेकिन वो परफेक्शन ढूंढने के प्रोसेस में हम अपनी अफेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी परफेक्शन की स्थिति से हिल जाते हैं। वी शिफ्ट ना, वी वर परफेक्ट, वी नीड टू कम बैक टू परफेक्शन। लेकिन औरों को परफेक्ट बनाने के प्रोसेस में या औरों से परफेक्शन एक्सपेक्ट करने के प्रोसेस में हम अपनी परफेक्शन से कितना दूर होते जाएंगे। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने अफेक्शन, प्यार की एनर्जी ब्लॉक होती जा रही है। तो थोड़ी सी इक्वेशन को सिर्फ चेंज करना पड़ता है। दीज आर इक्वेशंस ऑफ वे ऑफ लिविंग। ये इक्वेशन ऑपोजिट हो गई तो जीवन की क्वालिटी ऑपोजिट हो गई। आज हमारी इक्वेशन होनी चाहिए थी कि मेरे मन की स्थिति, लोगों के मन की स्थिति, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर इसके बाद जो काम हम कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी वो होनी थी। आज हमने कहा काम परफेक्ट होना चाहिए, हम डिस्टर्ब हुए तो कोई बात नहीं, सामने वाला डिस्टर्ब हुआ तो कोई बात नहीं, काम तो परफेक्ट होना चाहिए था ना। तो काम को ऊपर प्रायोरिटी दे दी।
1: रिजल्ट ओरिएंटेड।
2: रिजल्ट ओरिएंटेड, बट रिजल्ट ऑफ व्हाट? रिजल्ट ऑफ द वर्क दैट वी वर डूइंग, नॉट रिजल्ट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द वर्क। आज अगर हम देखें, चाहे ऑफिसेज हैं, चाहे घर में स्टाफ से आपने कहा, चाहे बच्चों से, काम हो जाए, चीजें हो जाए, सब सही हो जाए, उसके प्रोसेस में मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाए, सामने वाले के मन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी वॉज काम हो जाए। इक्वेशन उस डायरेक्शन में चली गई, आज काम हो गए, अचीव कर लिया इतना कुछ, प्रोग्रेस इतनी सारी कर ली, लेकिन प्रोग्रेस एट व्हाट कॉस्ट? ये प्रोग्रेस एक बहुत बड़ी कीमत लेके आई है अपने साथ, बिकॉज इस प्रोग्रेस को करते समय हमने अपनी स्थिति को और सामने वाले की स्थिति को प्रायोरिटी नहीं रखा कि हाउ आई एम फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग, इट डजेंट मैटर, आई विल शाउट, यू विल गेट हर्ट, इट डजेंट मैटर, वर्क शुड गेट डन, काम हो जाना चाहिए। मैंने गुस्सा किया तो क्या हुआ, आप हर्ट हुए तो क्या हुआ, आपको हर्ट होना इज फाइन, आपकी गलती थी और आपने गलती की तो मेरा गुस्सा करना नेचुरल था। ये सब इक्वेशंस बना के प्रोग्रेस अचीव की, बट इट हैज कम एट अ वेरी बिग कॉस्ट। वी लॉस्ट आवर हैप्पीनेस, हेल्थ एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स जस्ट टू अचीव दिस प्रोग्रेस।
1: बट यहाँ परफेक्शन में जो चाहते हैं हमें किसी
2: व्यक्ति के अंदर परफेक्शन,
1: हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, तो वो परफेक्शन एक्चुअली मैं अपने अंदर नहीं ढूंढ रहा हूँ कि एम आई परफेक्ट।
2: वो इसलिए हम अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने सोचा मेरा मन परफेक्ट रहे, मेरा मन परफेक्ट रहे,
1: मतलब मेरा मन नॉन अनडिस्टर्ब रहे, डिस्टर्ब ना हो,
2: मतलब स्टेबल रहे, परफेक्ट रहे, वो तो तभी होगा ना जब सब मेरे अनुसार सही चलेगा।
1: ओके, बट दैट इज नॉट पॉसिबल।
2: बट दैट्स नॉट ट्रू।
1: बट दैट्स नॉट पॉसिबल,
2: दैट्स नॉट ट्रू ऑल्सो,
1: क्योंकि मुझे हर एक को लगेगा ही नहीं कि मेरे अनुसार चल रहे हैं।
2: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे मन की स्थिति उन पर डिपेंडेंट है ही नहीं। इट्स नॉट ट्रू।
1: क्यों?
2: क्योंकि मेरे मन की स्थिति तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है।
1: कमाल कर रहे हैं।
2: क्यों?
1: मैं आपसे बात करते करते उठ के चला जाऊँ।
2: हाँ?
1: तो बोलेंगे ये शूटिंग छोड़ के कहाँ चले गए।
2: हाँ, तो मैं बोलूंगी ये शूटिंग छोड़ के चले गए, कोई बात थी?
1: इट्स नॉट सो सिंपल इन लाइफ,
2: इट्स मोर सिंपल।
1: मैं बोलूंगा ये प्रोफेशनलिज्म है, कोई तरीका है, कुछ बोल के तो जाओ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया, उठ के चले गए बैठे बैठे, व्हाट्स हैपनिंग हियर।
2: ये दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है ना,
1: दिस इज नेचुरल व्हाट आई एम टॉकिंग,
2: एनीबडी वुड डू दिस फॉर मी व्हाट आई एम टॉकिंग। बट वी कैन शिफ्ट फ्रॉम दिस टू व्हाट सेकंड ऑप्शन वी हैव क्रिएटेड राइट नाउ। आप भी कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं, अब भी, ये भी नहीं कि 10 दिन बाद या साल बाद। चूज करें कि अब नेक्स्ट टाइम जब कोई गलती करेगा या कोई एकदम टूट के चला जाएगा या कोई अनप्रोफेशनल बिहेव करेगा, आई विल जस्ट टॉक अबाउट इट विद कामनेस,
1: पीस,
2: फाइंड आउट क्या हुआ, क्यों ऐसा किया, एंड उनको डायरेक्शन कि नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा नहीं करना है। मेरे मन की स्थिति उनके चॉइस से नहीं, मेरी चॉइस से चलती है। उनको परफेक्ट बनाने में, उनके अंदर परफेक्शन ढूंढने में, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म ढूंढने में, ये सब कुछ करने में मैं हिल जाऊं तो देन इट्स नॉट वर्थ इट। हाँ, मैं स्थित होकर फिर उसको ढूंढूं और करवाऊं, दैट्स द वे टू डू इट। ये भी नहीं है कि फिर मैं अपनी स्थिति में स्थित हो जाऊं तो कोई काम करे नहीं करे, ठीक करे नहीं करे, आई विल नॉट से एनीथिंग, दैट्स ऑल्सो नॉट द वे। इसीलिए हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ साथ साथ। प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं और स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी पे स्थित नहीं है, उसमें भी मजा नहीं है। सारा दिन सिर्फ कहेंगे मेडिटेशन कर रहे हैं, पीसफुल रहेंगे, लेकिन कर्म में नहीं आएंगे, उसका भी मजा नहीं है।
1: डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं फिर आप दुनिया से, कि भाई जो होए होए, कोई गलत कर रहा है करे, ऐसे थोड़ी होना है। आपने जो बोला अभी,
2: ये
1: प्रैक्टिकल लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लाना है।
2: हाँ, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल बनाना है।
1: हाँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है, मतलब उस तरह से जीना है,
2: वही जीवन जीने का तरीका बनेगा। अभी डिफरेंट तो, क्यों करा
1: तो सिंपल टर्म में, जिससे इफ आई एम राइट, आप बताइए कि पहले मैं ये सोचूं कि ये भी एक सोल है, मैं भी एक सोल हूँ, बोथ आर डूइंग देयर रोल्स, प्लेइंग देयर रोल्स,
2: राइट।
1: तो यहाँ से शुरू करें,
2: यहाँ से शुरू करें, एंड फिर मेरे जीवन का लक्ष्य है, पर्पस ऑफ माय लाइफ, कि मैं आत्मा अपनी स्थिति को भी परफेक्ट रखूं, ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर मेरी स्थिति से मैं औरों की स्थिति को भी ठीक रखूं, ये मेरी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर हम दोनों मिलके परिस्थिति को ठीक करें, ये हमारी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी।
1: वेरी नाइस।
2: रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटी शुड बी सेट, सेल्फ, पीपल एंड देन वर्क। आज प्रायोरिटी क्या हो गई?
1: वर्क,
2: फिर पीपल, फिर सेल्फ, ऑर्डर चेंज हो गया।
1: नहीं, वर्क फिर पीपल है, वर्क वर्क वर्क देन पीपल देन।
2: तो वो वर्क वर्क वर्क में इतना
1: comes.
2: Yes. So, जितना हम स्टेबिलिटी में स्थित रहेंगे, हमारी वाइब्रेशन से काम होते हैं। हमारी वाइब्रेशन सिर्फ लोगों पे नहीं, प्रकृति पर, जड़ चीजों पर, हर सिचुएशन पर असर डालती है। डिस्टर्ब्ड वाइब्रेशन से जब हम काम करते हैं तो काम पे भी उसका असर पड़ता है। जो काम में एक स्मूथनेस होनी चाहिए खत्म होती है। हम एक मेहनत करके काम करते हैं, जिसके लिए परमात्मा कई बार हमें लाइन सुनाते हैं कि मोहब्बत में अगर रहोगे, लव योरसेल्फ एंड लव गॉड, अगर मोहब्बत में रहकर करोगे तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा मिलेगी। आज मेहनत ज्यादा, सफलता कम। बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतनी सफलता प्राप्त करने के लिए आज, क्योंकि वी आर नॉट अलाइंड विद द सेल्फ। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए। सेल्फ का ध्यान रखना मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों का ध्यान रखना मेरी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर मिलकर हम काम का ध्यान रखेंगे तो हम रियली कलयुग से सत्ययुग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। इट विल शिफ्ट एंड वी कैन ऑल डू इट। और इसीलिए जैसे उसने कहा, अफेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन।
1: ब्यूटीफुल ना,
2: वेरी नाइस ना। इतनी छोटी छोटी लाइंस होती है
1: और छोटी छोटी बातों के लिए एक रिश्ता खराब करना है
2: मोस्ट इम्पोर्टेंट, एंड इन छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप से रिश्ता खराब करना, अपने आप के साथ रिश्ता।
1: छोटी बात बुरी लगती क्यों है?
2: कौन सी छोटी बात बुरी?
1: किसी की भी कोई छोटी बात, हम उसको एक्सेप्ट कर क्यों नहीं कर लेते ये सही है। जैसे देखिए अभी यहाँ कितने चिड़िया में सोच रहा था बैठ के, एक बोलती जा रही है बोलती जा रही है, एक कौवा बोलता जा रहा है, एक सुबह 6 बजे से बोल रहे हैं, और एक शांत ये जो व्हाइट क्रेन्स हैं इधर बगुला टाइप जो भी कहते हैं इनको, आराम से बैठ के अपनी शूटिंग देखते हैं, चले जाते हैं, वॉक करते हैं, बात ही नहीं करते, क्वाइट। सबके कितने अलग अलग नेचर्स हैं,
2: राइट।
1: और कभी मैंने ये सोचा नहीं कि अच्छा या बुरा है, एक बार भी मैंने ये नहीं बोला दिस वर्ड इज बैड और दिस वर्ड वाई की करती रहती है, थॉट भी नहीं आया।
2: दिस इज एक्सेप्टेंस, जब थॉट ही नहीं आता, एक्सेप्टेंस की हम इस स्थिति पर पहुंचेंगे जब थॉट ही नहीं आएगा।
1: बट ऐसा क्यों नहीं होता है इंसानों के साथ?
2: और उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाओ, वो भी हो जाएगा। हमारी ओरिजिनलिटी तो वही है कि इंसानों के साथ भी हम ऐसे ही होंगे, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये गंदा है, ये खराब है, ये ऐसा। नो, जैसे ही हमने इस रास्ते शुरू किया ना चलना, वंस वी स्टार्ट वॉकिंग ऑन दिस रोड, वी विल रीच दिस स्टेज विच यू आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ।
1: लास्ट टाइम आपके 2-3 होमवर्क मैंने किए, उसके बाद मैं गोल्फ खेलने गया। गोल्फ खेलने गया तो एक अमेरिका से कोई ऐसे गेस्ट आया था, तो बोला कैन आई जॉइन यू ऑल, ही गिव मी सच अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट। इसे मैं सोच के हैरान हूँ कि आपका बॉल जब पानी में गया आप चिड़े नहीं, आपके शॉट्स रॉन्ग लगे आप चिड़े नहीं, आपने पट मिस किया छोटा सा यहाँ से यहाँ छोटा आप चिड़े नहीं। आई सेड, ही सेड हाउ कैन यू डू दैट,
2: सी। और पहले कभी चिढ़ते थे इन चीजों पर?
1: लेकिन मुझे मालूम नहीं था मैं ऐसा नहीं किया।
2: नहीं, लेकिन पहले कभी चिढ़ते
1: पहले
2: थे?
1: बॉल जाता तो मैं आधा आधा घंटा, अगला होल भी खराब होता था मेरा।
2: दिस इज इट,
1: मैं अपने कैडी को डांटता था तूने रॉन्ग क्लब दे दिया।
2: अब पता नहीं चला ना ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ।
1: नहीं, बट आफ्टर दिस मैन टोल्ड मी कि मैंने ये बिहेव ऐसा नहीं किया, तब मुझे चला, पता चला कि अच्छा मैं ये पाथ पे जो चलने का सोच के आया, इट वॉज नॉट डेलिबरेट।
2: इट वॉज नॉट डेलिबरेट, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन डेलिबरेटली। लेकिन छोटे छोटे पुरुषार्थ जो किए होते हैं ना, छोटी छोटी चीजों में, और रोज जब मेडिटेशन किया होता है तो आत्मा में शक्ति बढ़ती है, अब वो आत्मा का स्वरूप में आने लग जाता है। अब जो परिस्थिति आएगी, जैसे पहले ही भी डिस्कस हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
1: एंड ऑल्सो ही सेड एंजॉयड प्लेइंग विद यू,
2: सी, विच मीन्स अपनी स्थिति अच्छी तो सामने वाले की स्थिति अच्छी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम अच्छी। क्योंकि जैसे आपने कहा, पहले जब मैं इरिटेट होता था तो अगला भी जो हिट करना था वो भी खराब हो जाता
1: था। अगला नहीं सिस्टर,
2: हाँ।
1: बाद में नहाने धोने, कपड़े बदलने, शाम घर तक जाने, घर में जाने के बाद भी
2: इरिटेबल,
1: वो शॉट मैंने इतना खराब खेला, वो इतना मार दिया मैंने, थोड़ा सा कर लेता और तो हो जाता। और उस डिस्टर्ब स्थिति में 50 बॉल लेके मैं उसको प्रैक्टिस करने जाता तो वो भी खराब होता।
2: जब तक स्थिति ठीक नहीं, यहाँ से सब कुछ रेडिएट होकर बाहर जाना है। यहाँ से इट इज लाइक पावर सप्लाई, और फिर इतने सारे अप्लायंसेस जब घर में है, जब पावर सप्लाई में ही फ्लक्चुएशन है, मेन पावर सप्लाई में फ्लक्चुएशन
1: है, नहीं बदली मेरी प्रैक्टिस नहीं
2: तो
1: बदली,
2: वो अप्लायंसेस भी नहीं बदले,
1: टीचर भी नया नहीं आया, गोल्फ क्लब भी नया नहीं आया, लेकिन आपके होमवर्क से अच्छा। वो सबसे बेस्ट बात आई वॉन्ट टू रिपीट अगेन इज व्हाई इज इट दैट आई डिडंट इवन नो अनलेस टिल दिस मैन टोल्ड मी।
2: जैसे पहले हमें नहीं पता चलता था कि हम क्यों इरिटेट होते हैं,
1: okay.
2: हम कॉन्शियसली इरिटेट नहीं होते थे, इरिटेट हो जाते थे। अब हमें कॉन्शियसली पीसफुल नहीं रहना पड़ेगा, जो नेचुरली पीसफुल हो जाएंगे, क्योंकि ग्रूव चेंज हो रहा है। एक बार थोड़ी सी भी अटेंशन रख ली ना ग्रूव बनाने में, उसके बाद हर टाइम थोड़ी अटेंशन रखनी है उस ग्रूव पे जाने के लिए, वो तो नेचुरली चला जाएगा। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज, जैसे आपने अभी कहा कि वो गिल्ट, फिर वो उस चीज के बारे में सोचते ही जाना, क्योंकि हम में से मेजोरिटी आज ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। ऑफिस में ये गेम है, लेकिन जहां ऑफिस है, बिजनेस है, बहुत बड़ी चीजें स्टेक पे है, टारगेट्स है, यू नो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफिस में है, वो माइंड पे चलता ही जाता है। इट जस्ट गोज ऑन, नहीं मुझे ऐसे नहीं, नहीं उसको ऐसे नहीं, नहीं उसको। आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि वहां कुछ ऊपर नीचे हो जाए, नुकसान भी थोड़ा हो जाए, गेम भी खराब हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जितना ऊपर नीचे हो रहा है अभी, अगर हम जितना अटेंशन इस पर रखते हैं कि क्यों मेरे से एक वो बॉल गलत चली गई, जैसे आपने कहा क्यों मैंने इतना हिट नहीं किया, जितना अटेंशन इस पर और जितना इस पर सोच रहे हैं, सोचो अपने लिए उतना सोचे तो क्यों मैंने
1: होमवर्क किया ना अपने लिए, सोच के
2: क्यों हमने उनको क्रिटिसाइज किया, क्यों मैंने उनके लिए नेगेटिव सोचा, क्या ये राइट था? अगर हम एक गोल्फ की गेम के लिए इतना सोच सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा ऐसे हिट करता तो कितना अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता, अगर मैं थोड़ा सा एक ऐसे सोचता मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिलता, अब करता हूं, अब करता हूं, अब जैसे आपने कहा अगर मैंने गलत हिट किया तो मैं फिर 50 बॉल्स निकाल के फिर प्रैक्टिस करता हूं। अपने साथ ये करें, मैंने गलत सोचा किसी के लिए, मैंने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, मैं अब 50 क्वालिटीज निकालता हूं बैठ के उनके
1: अच्छी वाली,
2: फिर सोचता हूं उनके बारे में, लेट मी प्ले द गेम अगेन, दे हैव टू हैव क्वालिटीज, नो इट कांट हैपन, नोबडी कैन हैव ओनली वीकनेसेस, सो प्ले दिस गेम इनसाइड। ये करने से हम परफेक्शन की तरफ रीच कर जाएंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे वो लाइन थी कि यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम एवरीबडी ना, या तो आप उनको एक्सेप्ट करो या उनसे अलग हो जाओ।
1: कितनों से होंगे
2: आज हम चूज करते हैं अलग होना,
1: कितनी शादियां कर लेंगे, कितनों से अलग होंगे, कितने स्टाफ चेंज करेंगे,
2: इन द सेंस कि ये नहीं कि हम बार बार ऑफिस बदल रहे हैं या बार बार स्पाउस बदल रहे हैं, नॉट लाइक दैट, लेकिन हम लोगों से
1: एटीट्यूड
2: कटे कटे हो जाते हैं,
1: एटीट्यूड
2: अपने एक अलग रहने लग जाते हैं। आज हम लोगों से ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी के साथ रहना पसंद करते हैं, आज हम एक्चुअल फ्रेंड से बात करने की बजाय फेसबुक पर या कोई ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्ट्रेंजर से चैट करना प्रेफर करते हैं, तो हम लोगों से दूर हो रहे हैं।
1: इवन फोन कॉल टेक्स सम करेज टू टॉक एंड से हेलो हैप्पी बर्थडे, इट्स सो इजी टू राइट ऑन द थिंग हैप्पी बर्थडे लव यू बाय, ये आप मुंह से नहीं बोल सकते इतनी इजीली, बिकॉज आपको उसकी बातें याद आती हैं, ये हाँ मेरे से भाई झगड़ा किया था, ये मेरी बहन ने उस दिन ऐसा बोला था, उसका बर्थडे है, अब मैं फोन उठाऊं और किस मुंह से उसको बोलूं, छोड़ो यार इसका मूड खराब होता है, लिख दो
2: मैसेज कर दो। हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं और हम अपने आप को अलग अलग करते जा रहे हैं, इसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, हमें लग रहा है कि हम बच रहे हैं, वी थिंक वी प्रोटेक्टिंग आवर सेल्व्स, कि लोगों से दूर होने से हमारी प्रोटेक्शन होती है। हम लोगों से दूर दो रीजन से हो सकते हैं, उनके संस्कार की वजह से, कई बार अपने संस्कार की वजह से भी, कि इनके साथ ना हमेशा मेरा या तो मुझे गुस्सा आ जाता है या तो मैं हर्ट हो जाती हूँ, बेटर आई विल जस्ट कीप अवे। हम अपने संस्कार की वजह से भी कई बार लोगों से दूर हो जाते हैं, लेकिन जितना हम लोगों से दूर होंगे हमारी अपनी एनर्जी सर्कुलेट नहीं होगी, इट विल नॉट मूव अनलेस आई कम इन टू इंटरेक्शन विद पीपल।
1: इवन इफ आई हेट अदर्स और माई सेल्फ, हेटरेड तो अंदर से आ ही रही,
2: हेटरेड तो अंदर से आ ही रही है, लेकिन अगर मैंने ये ऑप्शन चूज किया कि मैं लोगों से दूर हो जाऊं, बजाय कि ये ऑप्शन चूज करूं कि मैं अपनी थॉट्स को बदलूं, वी हैव टू चूज दैट ऑप्शन, लेकिन हमने चूज किया कि हम लोगों से दूर हो जाते हैं। लोगों से दूर होने से, सपोज मैं किसी से दूर हो गई, मेरी हेट की एनर्जी स्टॉप हो गई, ठीक है मेरी स्टॉप हो गई, चलो मेरा बेनिफिट है, लेकिन लोगों से दूर होने से मेरी लव की एनर्जी भी तो स्टॉप हो गई।
1: सही बात,
2: अनलेस आई कम इन इंटरेक्शन, इसीलिए कहते हैं ना रिलेशनशिप्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि रिलेशनशिप में आने से ही, किसी आत्मा के साथ एनर्जी एक्सचेंज में आने से ही मेरी एनर्जी क्रिएट होती है और रेडिएट होती है।
1: हमारे सत्संग में मैंने यही सवाल पूछा था आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, तो उनका जवाब आया था कि देखो बदला नहीं लेना, बदल जाना,
2: बदल जाना, बदला तो नहीं लेना,
1: बदला मतलब कि टिट फॉर टैट, उसने ऐसा किया अच्छा बात नहीं किया मैं भी नहीं करूं, उसने विश नहीं किया मैं भी नहीं करूं, तुम बदल जाओ।
2: मोस्ट इम्पोर्टेंट, किनारा भी नहीं होना,
1: बदल जाने इन द सेंस अगेन पॉजिटिव।
2: हाँ, आज वी शुड नॉट चूज द ऑप्शन कि हम विड्रॉ हो जाएं उनसे,
1: एक्सेप्टेंस से बदलना।
2: रिलेशनशिप्स इतने इम्पोर्टेंट हैं, आज छोटे छोटे बच्चे भी बच्चों के साथ खेलने की बजाय टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, एंड इससे सोल पावर पर इफेक्ट आएगा, जैसे हम शरीर का कोई अंग यूज नहीं करते तो उसकी पावर कम हो जाती है, इसी तरह जब तक हम आत्मा की पावर को रिश्तों में यूज नहीं करेंगे उसकी पावर कम हो जाएगी।
1: इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आया, मेरे घर में बेटे का भी बेटा है बेटी का भी है, तो दोनों को हम लोग ना एक लॉक चेयर्स में बिठा देते थे और एक एक के सामने आईपैड रख के वो देखते गेम्स खेल खेल के खाते थे। तो फिर मैंने एक दिन ट्राई किया, दोनों को खोल दिया, बिठा दिया और वो आईपैड नो गेम्स
2: नो टेक्नोलॉजी।
1: तो जब हमें खिलाने गया तो वो उसके मुंह में डाल रहा है, वो उसके मुंह में डाल रहा है।
2: सी
1: दुख का, अर्जुन का, विवान का, वो उसके मुंह में, मैं खिलाऊं तेरे को खिलाऊं, आपस में खिला। व्हाट अ चेंज जमीन आसमान का फर्क।
2: दिस इज
1: रिलेशनशिप।
2: एंड नहीं तो वो क्या कर रहे थे, नहीं तो वो आईपैड पे कोई कार्टून देख रहे थे और खाना दे रहे। दिस इज आवर लाइफ। तो मतलब अगर हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी आ जाती है, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके जी रहे हैं, और यही अगर हम टेक्नोलॉजी को हटा के एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो आपको दिखा होगा कि उनकी अपनी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी।
1: नाच रहे थे, प्लेट में से उठा रहे थे, अपने आप भी खा रहे हैं, एक एक को खिला रहे हैं।
2: द होल सर्कुलेशन विल चेंज ऑफ फीलिंग्स। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अभी इन बच्चों से हमें सीखने को मिलता है ना, पर हमारा भी सीन यही है आज का कि हम यहाँ अपने साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की बजाय हम कहते ठीक है इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं।
1: हैविंग लंच एंड डिनर सिस्टर, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, अपना ये करते थे, एक रोटी डाली ऐसा किया, यहाँ कोई अपने आईपैड खोल के बैठ गया,
2: हमारा नुकसान कर रहा है।
1: अपने कान में कोई लगा के बैठे हैं,
2: ये हमारा नुकसान कर रहा है।
1: पिकनिक पे भी जाते हैं चारों गाड़ी में, एक अपना अपना फोन पे लगे हुए, कान में दर्द होता है, वाई भी कोई
2: टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। टेक्नोलॉजी रिश्तों का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती है कि किसी से बात करने की बजाय जाके हम इंटरनेट पे एक घंटा बैठ जाते हैं, मेरे पास एक घंटे का टाइम है। टेक्नोलॉजी विल ओनली टेक अस अवे फ्रॉम आर ओरिजिनलिटी, क्योंकि उसमें हमारी फीलिंग्स और इमोशंस सर्कुलेट नहीं हो रही हैं, विच नीड्स टू हैपन। इवन अगर मैं गुस्से में हूँ, मैं दर्द में हूँ, तो मैंने सोचा चलो उनसे किनारा कर लो, कंप्यूटर के साथ बैठ जाओ, टीवी के साथ बैठ जाओ, लेकिन वो इमोशन यहाँ है, उसको मैंने रिजोल्व नहीं किया, उस फीलिंग को चेंज नहीं किया, फिर इंटरेक्शन में नहीं आए, सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ बैठ गए, तो वो चोट तो वहीं की वहीं रह जाएगी।
1: तो कितने लोनली हो जाएंगे हम लोग,
2: दिस इज व्हाट, कितने लोनली हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी शक्ति यूज नहीं हो रही है। This is so, so important today, and that's why that line is so beautiful. Either accept them or then live without them. And if I live without them, I will reduce my power. So we are left with only one option. Hamare paas ek hi option.
1: Acceptance.
2: Accept people as they are.
1: Aur choti si perfection ke liye. Aap affection ko bhi chhod rahe ho aur pyar ko bhi chhod rahe ho.
2: Right.
1: It's not fair.
2: मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी खुशी और सेहत को भी छोड़ रहे हो। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि इस परफेक्शन के प्रोसेस में हमने अपनी सेहत को भी खोया है। हम परफेक्शन बाहर, हमने अपनी सेहत को खोया है उसकी वजह से, क्योंकि एवरी थॉट वॉज अफेक्टिंग एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो फिर इतने टाइट पर्सनैलिटी बन गए हैं हम, नेचुरल सिंप्लिसिटी, फ्लोइंग लव, प्योरिटी, इनसे दूर।
1: मैं तो सोच रहा था सिस्टर कि आई विल नॉट कॉल दिस वर्ड परफेक्शन, आई विल कॉल इट फाइंडिंग फॉल्ट्स। सच भी, अगर मैं इसको व्हाट इज परफेक्ट, एक आदमी लेफ्ट हैंड से खाता है, एक राइट हैंड से, एक आदमी चम्मच ऐसे रख देता है, ऐसे, तो जैसे बनाया है, इवन व्हेन प्लेइंग क्रिकेट, एक टेक्स्ट बुक शॉट्स मारता है और एक तो सिक्सर मारता ही है विदाउट टेक्स्ट बुक, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स, एंड ही मेक्स द मैक्सिमम। कोई नहीं पढ़ के भी बनता है, परफेक्शन नाम का है नहीं एक्चुअली, परफेक्शन का एक हमने बहाना बना लिया, एक्चुअली दूसरे की गलती निकालने की अपनी आदत है वो,
2: और जितना वो करते गए मोस्ट,
1: और आदत पकती जाएगी मेरी,
2: और जितना आदत पकती गई आत्मा की शक्ति कम होती गई
1: और लोगों से दूर होते जाएंगे,
2: लोगों से तो दूर हो ही जाएंगे, अपने आप से, अपने आप से दूर हो रहे हैं ना,
1: आपके नजदीक भी कोई आना पसंद नहीं करेगा ना।
2: yes.
1: चिट चिट चिट बोलेंगे, नोबडी कॉल्स की यू नो सुरेश व्रत लव्स परफेक्शन, सच अ नाइस मैन, ही वांट्स एवरीथिंग परफेक्ट, नोबडी सेज दैट।
2: ऐसे नहीं कहेंगे,
1: कोई भी नहीं बोलेगा ऐसा।
2: right.
1: सब लिए तो खिटखिट करता है।
2: बिल्कुल। तो अब हमें इस चीज को मंत्र बनाना है कि अफेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन, एंड अफेक्शन से परफेक्शन की तरफ जाना, दैट वी कैन अचीव। आप प्यार से काम करें सबके साथ, तो प्यार में हमें दिखेगा कि जो काम भी हो रहा होगा ना, वो परफेक्शन की तरफ चला जाएगा। एंड अगर थोड़ा सा परफेक्ट नहीं भी होगा ना, हम इतना इंजॉय करेंगे उस काम करने के तरीके को। हम आज खुशी परफेक्शन में ढूंढ रहे हैं कि जब परफेक्ट होगा तब हम खुश होंगे। खुश होकर अगर परफेक्शन की तरफ चलते, मतलब डूइंग आर बेस्ट की तरफ चलते, तो अगर हम उस परफेक्शन को उस डेफिनेशन तक अचीव भी नहीं करते, एटलीस्ट वी वुड हैव एंजॉयड द होल प्रोसेस। नो, दैट इज द जर्नी ऑफ लाइफ, एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, नॉट बीइंग हैप्पी आफ्टर इट इज डन। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट।
1: थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच। एक छोटा मेडिटेशन करते हैं।
2: डेफिनेटली, सिट बैक। पर्पस ऑफ माई लाइफ, प्यार एंड अफेक्शन अपने लिए और मेरे आसपास सब जो हैं उन सब के लिए, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। परफेक्शन अपने मन की स्थिति में, परफेक्शन सबके मन की स्थिति के प्रति, दिस इज पर्पस ऑफ माई लाइफ। आज से मेरे जीवन का लक्ष्य, प्रायोरिटी, मेरे मन की स्थिति, औरों के मन की स्थिति, एंड टुगेदर जो हम काम कर रहे हैं वो परिस्थिति, स्थिति को परफेक्ट करके फिर हम मिलजुल कर परिस्थिति को परफेक्ट करेंगे। दिस इज लव इन एक्शन, दिस इज स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी, दिस इज पर्पस ऑफ माई लाइफ। ओम शांति।
1: ओम शांति।
2: थैंक यू।
1: थैंक यू सो मच। ओम शांति।
3: नेवर लीव अ रिलेशन बिकॉज ऑफ फ्यू फॉल्ट्स। नो वन इज परफेक्ट इन एनी रिलेशनशिप और इंटरैक्शन। अफेक्शन इज ग्रेटर देन परफेक्शन। व्हेन वी प्रायोरिटाइज perfection over affection, we seek perfection in people, perfection in situations, and perfection in everyone's way of working. When perfection becomes our focus, our affection gets blocked, and we shift from the soul's original state of perfection. While handling any situation, our first responsibility is to take care of our state of being, that is, our emotional state. Second responsibility is to take care of the emotional state of others involved in the situation. And then, together, we can take charge of the work or situation. If we withdraw from people because of their sanskars or because of our own sanskars, our energy of love, sharing and caring does not flow. The more we adapt and cooperate with others, the more our soul power increases.
4: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 099-99-559-660.

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: आज मैं आत्मा ड्राइवर ये गाड़ी मुझे चलानी है कि मेरी आंखें मेरे हिसाब से चले, मेरा मुख मेरे हिसाब से बोले, मेरा हाथ वो ही करे जो सही है कर्म, और मन वही सोचे जो सही है। दैट वुड बी दैट माई कार इज इन माई कंट्रोल। सो लाइक दिस फाइव पीपल आर स्टेइंग इन द हाउस, पांच आत्माएं ड्राइवर और उनकी अपनी अपनी एक गाड़ी। अगर हर आत्मा का अपनी गाड़ी पे कंट्रोल होता तो जर्नी कैसी होती उस रोड के ऊपर? ब्यूटिफुल। हर एक ने प्यार से निकल जाना, हर एक ने एक स्टीयरिंग व्हील घुमाना है, थोड़ा सा दूसरा आ भी रहा होगा तो उसने ऐसे टर्न करना है, उसने घूम जाना, एक्सीडेंट कभी होता ही ना। द पावर टू मोल्ड, द पावर टू एडजस्ट, द पावर टू टर्न हियर, द पावर टू ब्रेक स्टॉप, सब कुछ हो जाता अगर ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में होती तो। और अगर पांचों की होती तो वो जीवन, वो घर स्वर्ग होता, राइट? अब अगर सपोज चार की भी नहीं है, एक भी अपने करना शुरू करते हैं, सी, तो कितनी सारी चीजें बचेंगी अगर एक आत्मा अपने ऊपर संयम ले आए। दिस इज द पावर दैट वी हैव। लेकिन अगर पांचों ने अपना ध्यान नहीं रखा, अपनी उनकी ब्रेक्स चलती नहीं, उनका स्टीयरिंग व्हील उनके कंट्रोल में नहीं, लेकिन वो चाहते हैं कि वो बाकी सब गाड़ियां मेरे हिसाब से चलें, तो एक क्षण भी बिना एक्सीडेंट के नहीं चलेगा उस घर के अंदर। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर लाइफ टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर दिशा में भारत का एक अलग दृश्य दिखाई देता है। कहीं पहाड़ी इलाके हैं, तो कहीं रेतीले मैदान, कहीं बर्फीले क्षेत्र हैं, तो कहीं गर्म हवाएं। हर ओर चढ़ा कला संस्कृति का अनोखा रंग रोज भारत को सजाकर एक नया रूप देता है। आइए हम आपको भारत के उस राज्य की तरफ ले चलें, जहाँ के संगीत, बोली, व्यंजन सब में एक मिठास है। स्वागत है आपका गुजरात में।

गुजरात पश्चिमी भारत में स्थित एक राज्य है। इसकी उत्तरी पश्चिमी सीमा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, पाकिस्तान से लगी है। प्राचीनता एवं ऐतिहासिकता की दृष्टि से गुजरात भारत का अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य है। गुजरात भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। इसके पश्चिम में अरब सागर, उत्तर में पाकिस्तान तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर राजस्थान, दक्षिण पूर्वी सीमा पर मध्य प्रदेश और दक्षिण में महाराष्ट्र है। गुजरात नाम गुर्जरत्रा से आया है। गुर्जरों का साम्राज्य 6वीं से 12वीं सदी तक गुर्जरत्रा या गुर्जर भूमि के नाम से जाना जाता था। गुर्जर एक समुदाय है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों का संबंध सूर्यवंश या रघुवंश से बताया है। कुछ विद्वान इन्हें मध्य एशिया से आए आर्य भी बताते हैं। गुर्जरों की भूमि के रूप में गुजरात को जाना जाता है। इस प्रकार गुर्जर राष्ट्र से विकृत होते होते उसका नामांतरण गुजरात के रूप में हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से गुजरात की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ की गाथाएं प्रचलित हैं तथा यहाँ का गौरव बहुत ऊंचा है। कहा जाता है कि ईसवी सन पूर्व 2500 वर्ष पहले पंजाब से हड़प्पा वासियों ने कच्छ के रण पार कर नर्मदा की उपत्यका में मौजूदा गुजरात की नींव डाली थी। गुजरात ईसवी सन पूर्व 3री शताब्दी में मौर्य साम्राज्य में शामिल था। जूनागढ़ के अभिलेख से इस बात की पुष्टि होती है। 5वीं शताब्दी में हूणों के आक्रमण के बाद उत्तराखंड से गुर्जरों का इस क्षेत्र में आगमन हुआ। गुजरात पर 4थी-5वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंश का शासन रहा। 9वीं शताब्दी में यहाँ सोलंकी वंश का शासन रहा। 10वीं शताब्दी में मूल राज सोलंकी ने आधुनिक गुजरात की स्थापना की। गुजरातवासी वाणिज्य व्यापार में कुशल होते हैं। विदेशों में बसे असंख्य गुजरातवासियों ने अपने व्यापार कौशल से अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में भी ख्याति अर्जित की है। महात्मा गांधी का जन्म प्रदेश गुजरात द्रुत गति से औद्योगिक विकास कर रहा है। गुजरात का इतिहास ईसवी सन पूर्व लगभग 2000 साल पुराना है। यह भी मान्यता है कि श्री कृष्ण मथुरा छोड़कर सौराष्ट्र के पश्चिमी तट पर जा बसे थे, जो द्वारका अर्थात प्रवेश द्वार कहलाया। बाद के वर्षों में मौर्य, गुप्त, प्रतिहार तथा अन्य अनेक राजवंशों ने इस प्रदेश पर शासन किया। चालुक्य, सोलंकी राजाओं का शासन काल गुजरात के लिए प्रगति और समृद्धि का युग था। मोहम्मद गजनवी की लूटपाट के बाद भी चालुक्य राजाओं ने यहाँ के लोगों की समृद्धि और भलाई का पूरा ध्यान रखा। इस गौरवपूर्ण काल के पश्चात गुजरात को मुसलमानों, मराठों और ब्रिटिश शासन के दौरान बुरे दिनों का सामना करना पड़ा। आजादी से पहले आज का गुजरात मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित था, एक ब्रिटिश क्षेत्र और दूसरा देसी रियासतें। गुजरात में सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र लोथल था, जो उस समय का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल सूत कोतड़ा भी इसी प्रदेश में था। आधुनिक खुदाई से सिंधु सभ्यता से संबंधित एक प्रमुख स्थल धौलावीरा प्रकाश में आया है, जो इसी प्रदेश में था। गुजरात पर क्रमशः मौर्य, गुप्त, प्रतिहार तथा उनके परवर्ती राजवंशों ने शासन किया, किंतु गुजरात में प्रगति तथा समृद्धि चालुक्य राजाओं के समय में हुई। इसीलिए इस काल को गुजरात के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है।

सेनापति भट्टाकर द्वारा वल्लभी ने 5वीं शताब्दी के अंतिम चरण में एक नए राजवंश की नींव रखी गई, जिसे मैत्रक राजवंश के नाम से जाना जाता है। 475 ईसा में मैत्रकों के सरदार भट्टाकर की नियुक्ति वहां के सेनापति के पद पर हुई थी। भट्टाकर तथा उसके पुत्र दोनों ने अपने साथ सेनापति की पदवी का ही इस्तेमाल किया। मैत्रकों के तीसरे राजा द्रोण सिंह द्वारा सर्वप्रथम महाराजा की उपाधि धारण की गई। मैत्रकों का प्रथम तिथि युक्त अभिलेख गुप्त संवत 206 यानी कि 526 ईसा को ध्रुवसेन प्रथम का प्राप्त हुआ। मैत्रक शासक ध्रुवसेन द्वितीय की शादी हर्षवर्धन की पुत्री के साथ हुई थी। ध्रुवसेन द्वितीय के समय ही ह्वेन स्वांग गुजरात आया था। गुजरात के चालुक्य अथवा सोलंकी राज्य के संस्थापक गुर्जर जाति के नेता वनराज को माना जाता है, जिसने 765 ईसा में इस वंश की नींव डाली। हालांकि सोलंकी वंश का प्रथम शासक मूल राज को माना जाता है। भीमदेव प्रथम के काल में मोहम्मद गजनवी तथा भीम द्वितीय के काल मोहम्मद गौरी का आक्रमण अन्हिलवाड़ को झेलना पड़ा। सोलंकी राजवंश के बाद दक्षिण गुजरात के बघेलों के शासन की स्थापना हुई, जिसकी नींव लवण प्रसाद बघेल द्वारा डाली गई। 13वीं सदी के अंत में यह प्रदेश अलाउद्दीन खिजली के अधिकार में चला गया। कुछ समय बाद गुजरात के सुल्तान स्वतंत्र हो गए। इन्हीं में से अहमद शाह प्रथम ने 15वीं सदी के पूर्वार्ध में अहमदाबाद की स्थापना की। महमूद बघेरा के समय में गुजरात बहुत समृद्ध हुआ, लेकिन अंत में 16वीं सदी में अकबर ने इस प्रदेश पर अधिकार कर लिया। वर्ष 1800 में अंग्रेजों ने सूरत पर कब्जा कर लिया। वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्र होने तक वे ही गुजरात पर राज्य करते रहे। गुजरात का भारत की स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि इस प्रदेश ने राष्ट्र को महात्मा गांधी तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेता दिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मस्थली गुजरात का ही एक गांव पोरबंदर है। कुवांशी गुजरात के मोरवी शहर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव है। कुवांशी गांव में 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पदरी गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। पदरी से हड़प्पाई नगर, हड़प्पा पूर्व व विकसित हड़प्पा काल के दो सांस्कृतिक चरणों को स्पष्ट करता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गुजरात का योगदान अमूल्य है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में गुजरात के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने योगदान दिया है, जिसमें से प्रमुख है कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी, अश्विनी कुमार दत्त, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जीवराज मेहता, हंसा मेहता, गणेश वासुदेव मावलंकर, विठल दास जवेर भाई पटेल, महादेव देसाई, मनी भाई देसाई। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनको ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेता और राष्ट्रपिता माना जाता है। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। राजनीतिक और सामाजिक प्रगति की प्राप्ति हेतु अपने अहिंसक विरोध के सिद्धांत के लिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। मोहनदास करमचंद गांधी भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे। साबरमती आश्रम से उनका अटूट रिश्ता था। इस आश्रम से महात्मा गांधी आजीवन जुड़े रहे, इसीलिए उन्हें साबरमती का संत की उपाधि भी मिली है।

एक और महान व्यक्तित्व जिनका अमिट योगदान भारतवर्ष आज भी याद करता है, वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा देने के कारण सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त किया। वास्तव में वे आधुनिक भारत के शिल्पी थे। उनके कठोर व्यक्तित्व में बिस्मार्क जैसी संगठन कुशलता, कौटिल्य जैसी राजनीति सत्ता तथा राष्ट्रीय एकता के प्रति अब्राहम लिंकन जैसी अटूट निष्ठा थी। जिस अदम्य उत्साह, असीम शक्ति से उन्होंने नवजात गणराज्य के प्रारंभिक कठिनाइयों का समाधान किया, उसके कारण विश्व के राजनीतिक मानचित्र में उन्होंने अमिट स्थान बना लिया। कितनी ही कुर्बानियां और अटल निश्चय के कारण आखिरकार 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।

भारत के स्वतंत्र होने के समय तक गुजरात मुंबई राज्य का अंग था। अलग गुजरात का जन्म 1 मई 1960 को हुआ। चलिए अब थोड़ा जानते हैं गुजरात के भूगोल को। गुजरात को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला सौराष्ट्र प्रायद्वीप, जो मूलतः एक पहाड़ी क्षेत्र है, बीच बीच में मध्यम ऊंचाई के पर्वत हैं। दूसरा कच्छ, जो पूर्वोत्तर में उजाड़ और चट्टानी है। विख्यात कच्छ का रण इसी क्षेत्र में है।

और तीसरा गुजरात का मैदान जो कच्छ के रण और अरावली की पहाड़ियों से लेकर दमन गंगा तक फैला है। गुजरात की सबसे ऊंची चोटी गिरनार पहाड़ियों में स्थित गोरखनाथ की चोटी है जो 1117 मीटर ऊंची है। गुजरात की जलवायु उष्ण प्रदेशीय और मानसूनी है। वर्षा की कमी के कारण इस प्रदेश में रेतीली और बलुई मिट्टी पाई जाती है। प्रदेश में पूर्व की ओर उत्तरी गुजरात में वर्षा की मात्रा 50 सेंटीमीटर होती है। इसके दक्षिण की ओर मध्य गुजरात में मिट्टी कुछ अधिक उपजाऊ है तथा जलवायु भी अपेक्षाकृत आर्द्र है। वर्षा 75 सेंटीमीटर तक होती है। नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, सरस्वती, माही, भादर, बनास और विश्वामित्री इस प्रदेश की सुपरिचित नदियां हैं। सरदार सरोवर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। नर्मदा नदी पर स्थित यह बांध 800 मीटर ऊंचा है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर दो सबसे बड़े बांध परियोजनाएं हैं, किंतु इनका हर बार विरोध होता रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है। कर्क रेखा इस राज्य की उत्तरी सीमा से होकर गुजरती है, अतः यहाँ गर्मियों में खूब गर्मी तथा सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है। शहरीकरण की प्रक्रिया ने राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न कुछ स्वरूप धारण किए हैं। राज्य का सर्वाधिक शहरीकृत क्षेत्र अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक पट्टी है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के किनारे उत्तर में ऊंझा से दक्षिण में वापी के औद्योगिक मैदान में एक बृहद नगरीय क्षेत्र उभर रहा है। सौराष्ट्र कृषि क्षेत्र में क्रमिक बसाव प्रणाली को देखा जा सकता है, जबकि उत्तर और पूर्व के बाह्य क्षेत्रों में बिखरी हुई छोटी छोटी बस्तियां हैं जो शुष्क पर्वतीय या वनाच्छादित क्षेत्र हैं। आदिवासी जनसंख्या इन्हीं सीमांत अनुत्पादक क्षेत्रों में केंद्रित है। शिक्षा हर जीवन, हर नगर, हर प्रदेश और देश का मूल आधार है। जानते हैं थोड़ा गुजरात में शिक्षा व्यवस्था के बारे में। गुजरात में 500 या इससे ज्यादा जनसंख्या वाले लगभग सभी गांवों में 7 से 11 वर्ष के सभी बच्चों के लिए प्राथमिक पाठशालाएं खोली जा चुकी हैं। आदिवासी बच्चों को कला और शिल्प की शिक्षा देने के लिए विशेष विद्यालय चलाए जाते हैं। यहाँ अनेक माध्यमिक और उच्चतर विद्यालयों के साथ साथ 9 विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में शिक्षा संस्थान हैं। अभियांत्रिकी महाविद्यालयों और तकनीकी विद्यालयों द्वारा तकनीकी शिक्षा उपलब्ध कराई जाती है। शोध संस्थानों में अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी, अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन, सेठ भोलाभाई जयसिंह भाई इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड रिसर्च, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और द सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च और द सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल रिसर्च वडोदरा में ओरिएंटल इंस्टीट्यूट तथा भावनगर में सेंट्रल सॉल्ट एंड मरीन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल है। गुजराती और हिंदी राज्य की अधिकृत भाषाएं हैं। दोनों में गुजराती का ज्यादा व्यापक इस्तेमाल होता है, जो संस्कृत के अलावा प्राचीन भारतीय मूल भाषा प्राकृत और 10वीं शताब्दी के बीच उत्तरी और पश्चिमी भारत में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषा से व्युत्पन्न एक भारतीय आर्य भाषा है। समुद्र मार्ग से गुजरात के विदेशों से संपर्क ने फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली और अंग्रेजी शब्दों से इसका परिचय करवाया। गुजराती में महात्मा गांधी की विलक्षण रचनाएं अपनी सादगी और ऊर्जस्विता के लिए प्रसिद्ध हैं। इन रचनाओं ने आधुनिक गुजराती गद्य पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। गुजरात में राजभाषा गुजराती भाषा के अतिरिक्त
हिंदी, मराठी और अंग्रेजी का प्रचलन है। गुजराती भाषा नवीन भारतीय आर्य भाषाओं के दक्षिण पश्चिमी समूह से संबंधित है। इतालवी विद्वान तेस्सेतोरी ने प्राचीन गुजराती को प्राचीन पश्चिमी राजस्थानी भी कहा, क्योंकि उनके काल में इस भाषा का उपयोग इस क्षेत्र में भी होता था, जिसे अब राजस्थान राज्य कहा जाता है। यहाँ की संस्कृति पूरे विश्व में मशहूर है। रंग बिरंगे परिधान, नाचते झूमते त्योहार और स्वादिष्ट व्यंजन गुजरात की शान है। गुजरात की अधिकांश लोक संस्कृति लोक गीत हिंदू धार्मिक पुराण में वर्णित श्री कृष्ण से जुड़ी किंव दंतियों से प्रतिबिंबित होती है। कृष्ण के सम्मान में किया जाने वाला रास नृत्य और रास लीला प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा के रूप में अब भी प्रचलित है। यह नृत्य देवी दुर्गा के नवरात्र पर्व में किया जाता है।

अनेक लोक नाट्य भवे भी अभी अस्तित्व में हैं। गुजरात में शैववाद के साथ साथ वैष्णववाद भी लंबे समय से फलता फूलता रहा है, जिनसे भक्ति मत का उद्भव हुआ। प्रमुख संतों, कवियों और संगीतज्ञों में 15वीं सदी में पदों के रचयिता नरसिंह मेहता, अपने महल को त्यागने वाली 16वीं सदी की राजपूत राजकुमारी, भजनों के रचनाकार मीराबाई, 18वीं सदी के कवि और लेखक प्रेमानंद और भक्ति मत को लोकप्रिय बनाने वाले गीतकार दयाराम शामिल हैं। भारत में अन्य जगहों की तुलना में अहिंसा और शाकाहार की विशिष्टता वाले जैन धर्म ने गुजरात में गहरी जड़ें जमाई। जरथुस्त्र के अनुयायी पारसी 17वीं सदी के बाद किसी समय फारस से भागकर सबसे पहले गुजरात के तट पर ही बसे थे। गुजरात की भूमि ने ही जन्म दिया महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को, जो आर्य समाज के प्रवर्तक और प्रखर सुधारवादी सन्यासी थे। छूट का उन्होंने जोरदार खंडन किया, दूसरे धर्म वालों के लिए हिंदू धर्म के द्वार खोले, महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए प्रयत्न किए। मिथ्या आडंबर और असमानता के समर्थकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया। अपने मत के प्रचार के लिए स्वामी जी 1863 से 1875 तक देश का भ्रमण करते रहे। 1875 में आपने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की और देखते ही देखते देश भर में इसकी शाखाएं खुल गई। गुजरात की संस्कृति में मुख्यतः शीशे का काम तथा गरबा एवं रास नृत्य पूरे भारत में प्रसिद्ध है। प्रदेश का सर्व प्रमुख लोक नृत्य गरबा तथा डांडिया है। गरबा नृत्य में स्त्रियां सिर पर छिद्र युक्त पात्र लेकर नृत्य करती हैं, जिसके भीतर दीप चलता है। डांडिया में अक्सर पुरुष भाग लेते हैं, कभी कभी स्त्री पुरुष दोनों मिलकर करते हैं। प्रदेश के रहन सहन और पहनावे पर राजस्थान का काफी प्रभाव देखा जा सकता है। प्रदेश का भवई लोक नाट्य काफी लोकप्रिय है। स्थापत्य शिल्प की दृष्टि से प्रदेश काफी समृद्ध है। इस दृष्टि से रुद्र महालय, सिद्धपुर, मातृमूर्ति पावागढ़, शिल्प गौरव गलतेश्वर, द्वारिकानाथ का मंदिर, शत्रुंजय पालिताना के जैन मंदिर, सीधी सैयद मस्जिद की जालियां, पाटन की काष्ठकला इत्यादि काफी महत्वपूर्ण है। हिंदी में जो स्थान सुरदास का है, गुजराती में वही स्थान नरसिंह मेहता का है।

भारत के पश्चिमी भाग में बसा समृद्धशाली राज्य गुजरात अपने त्योहारों और सांस्कृतिक उत्सवों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भाद्रपद यानी कि अगस्त सितंबर मास के शुक्ल पक्ष में चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी के दिन तरणेतर गांव में भगवान शिव की स्तुति में तरणेतर मेला लगता है। श्री कृष्ण द्वारा रुक्मणी से विवाह के उपलक्ष में चैत्र यानी कि मार्च अप्रैल के शुक्ल पक्ष की नवमी को पोरबंदर के पास माधवपुर में माधवराय मेला लगता है। उत्तरी गुजरात के बनासकांठा जिले में हर वर्ष माँ अम्बा को समर्पित अम्बाजी मेला आयोजित किया जाता है। राज्य का सबसे बड़ा वार्षिक मेला द्वारका और डाकोर में श्री कृष्ण के जन्म दिवस जन्माष्टमी के अवसर पर बड़े हर्षोल्लास से आयोजित होता है। इसके अतिरिक्त गुजरात में मकर संक्रांति, नवरात्र, डांगी दरबार, श्यामला जी मेले तथा भावनाथ मेले का भी आयोजन किया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पर मनाया जाने वाला पतंग उत्सव अपनी रंग बिरंगी छवि के कारण गुजरात राज्य में अत्यंत लोकप्रिय है और भारत ही नहीं विदेशों में भी अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है। जनवरी माह के मध्य में 14 जनवरी को उत्तरायण पर्व आता है। भगवान भास्कर उत्तरायण को प्रयाण करते हैं। वसंत ऋतु का आगमन होता है। किसानों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता क्योंकि फसल पककर तैयार हो जाती है। कटाई का समय आ जाता है। नव धाने से बने सुस्वादु मिष्ठान सभी को उत्सव का आनंद देते हैं। गुजरात में इस पर्व को मनाने का निराला रंग है। गुजरात वासी रंग बिरंगी पतंगों से आसमान भर देते हैं। ये रंग विविधता में एकता, आनंद, उत्साह और परस्पर स्नेह सौहार्द के प्रतीक हैं। यह एक ऐसा रंगीन उत्सव है जहां बच्चे बूढ़े, धनी निर्धन, स्वदेशी विदेशी सभी भेदभाव भूलकर अनंत आकाश में एकता के रंग भर देते हैं।

गुजरात में कला का भी अति महत्व है। यहाँ की वास्तुकला शैली अपनी पूर्णता और अलंकारिता के लिए विख्यात है, जो सोमनाथ, द्वारका, मोधेरा, थान, धुमली, गिरनार जैसे मंदिरों और स्मारकों में संरक्षित है। मुस्लिम शासन के दौरान एक अलग ही तरीके की भारतीय इस्लामी शैली विकसित हुई। गुजरात अपनी कला व शिल्प की वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। इनमें जामनगर की बांधनी, पाटन का उत्कृष्ट रेशमी वस्त्र पटोला, इधर के खिलौने, पालनपुर का इत्र, कोनोदर का हस्तशिल्प का काम और अहमदाबाद व सूरत के लघु मंदिरों का काष्ठ शिल्प तथा पौराणिक मूर्तियां शामिल हैं। राज्य के सर्वाधिक स्थायी और प्रभावशाली सांस्कृतिक संस्थानों में महाजन के रूप में प्रसिद्ध व्यापार और कला शिल्प संघ है। अक्सर जाति विशेष में अंतर्गठित और स्वायत्त इन संघों ने अतीत कई विवादों को सुलझाया है और लोक हित के माध्यम की भूमिका निभाते हुए कला व संस्कृति को प्रोत्साहन दिया है। गुजरात राज्य में की जाने वाली वास्तुशिल्पीय नक्काशी कम से कम 15वीं शताब्दी से गुजरात भारत में लकड़ी की नक्काशी का मुख्य केंद्र रहा है। निर्माण सामग्री के रूप में जिस समय पत्थर का इस्तेमाल अधिक सुविधाजनक और विश्वसनीय था, इस समय भी गुजरात के लोगों ने मंदिरों के मंडप तथा आवासीय भवनों के अग्र भागों, द्वारों, स्तंभों, जरोखों, दीवार गिरों और जालीदार खिड़कियों के निर्माण में बेझिझक लकड़ी का प्रयोग जारी रखा। मुगल काल 1556-1707 के दौरान गुजरात की लकड़ी नक्काशी में देशी एवं मुगल शैलियों का सुंदर आयोजन दिखाई देता है। 16वीं सदी के उत्तरार्ध एवं 17वीं सदी के जैन काष्ठ मंडपों पर जैन पौराणिक कथाएं एवं समकालीन जीवन के दृश्य तथा काल्पनिक बेल बूटे, पशु पक्षी एवं ज्यामितीय आकृतियां उत्कीर्ण की गई हैं। आकृति मूर्तिकला अत्यंत जीवंत एवं लयात्मक है। लकड़ी पर गाढ़े लाल रोगन का प्रयोग आम था। 19वीं सदी के कई भव्य काष्ठ पुरोभाग संरक्षित हैं, लेकिन उनका अलंकरण पहले के निर्मितियों जैसा ललित और गत्यात्मक नहीं है। इतना कुछ है गुजरात की हवाओं में जानने को और साथ साथ है कई आकर्षक पर्यटन स्थल। यहाँ द्वारका, सोमनाथ, पालीटाना के निकट शत्रुंजय पहाड़ी, पावागढ़, अंबाजी, भद्रेश्वर, श्यामलाजी, तरंगा और गिरनार जैसे धार्मिक स्थलों के अलावा महात्मा गांधी की जन्मभूमि, पोरबंदर तथा पुरातत्व

माता निर्देशक महबूब खान की फिल्म सन ऑफ इंडिया के एक गीत के साथ, जो देश प्रेम का एक अनोखा वर्णन है। क्योंकि ये गाना एक बाल कलाकार पर प्रदर्शित है, तो खास हमारे नन्हे श्रोताओं के लिए पेश है ये गीत।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो मेरे अंदर है, और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है। दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी। बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी। ये लैपटॉप है, तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता। ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है। ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता, बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है। तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स, क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स। कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है। तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद मैं उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं, या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं। यू नो, इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं। डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी, कि ये होगा तो खुशी। दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है, हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है, एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयरएवर, एंड फॉर हाउएवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माय चॉइस। सो नाउ इट्स योर चॉइस, आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: किसी का एक लाइन ना, इवन अगर कल बीत गया, इट डजेंट मैटर, आज भी तो कोई ना कोई कुछ लाइन बोलेगा, आज भी तो लाइन्स आएंगी, आज भी तो बातें आएंगी। तो जब ऐसी कोई बात होती है, इवन अगर हमें उस टाइम याद नहीं रहता, हम उस पे रिफ्लेक्ट करके नेक्स्ट टाइम के लिए चेंज करते हैं अपने आप को।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: का सफर आरजे सनी के साथ रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम। खाबों का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, खाबों का सफर इस कार्यक्रम में हम लोग ओल्ड फिल्मी गीत आपको सुनाते हैं और काफी प्यारे प्यारे गीत आप सुनते हैं और आपका जो प्यार है मैसेज के जरिए हम सभी तक पहुंचता है तो हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। तो आइए, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज फिर से हम लोग नैना और मैं आपके साथ हूँ और नैना के पास बहुत सारे अच्छे अच्छे कलेक्शन है के अक्षर वाला। तो आइए आज हम लोग के अक्षर के बहुत ही खूबसूरत गाने सुनेंगे। तो आप सभी की तरफ से नैना का बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: नैना, कैसे फील कर रहे हैं आप?
2: और अच्छा फील कर रही हूँ, फिर से मौका मिला।
1: चलिए, आप मौका लेते रहिए और चौका मारते रहिए अपने गानों का। हमें भी अच्छा लगता है और हमारे श्रोताओं को भी काफी अच्छा लगता है। काफी लोगों ने मैसेज करके बताया कि नैना की आवाज बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा गाती हैं। तो चलिए, हमें भी अच्छा लगता है कि आप बहुत ही अच्छा गाते हैं। तो आइए, आज के इस कार्यक्रम के शुरुआत में मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं को कौन सा एक गीत आप सुनाने वाले हैं जो के अक्षर से शुरू होता है।
2: आज मैं पहला गीत लेके आई हूँ रफी साहब का, कह दो कोई ना करे यहाँ प्यार।
1: ओके ओके, लेकिन लोग तो प्यार कर रहे हैं।
2: वो गीत के ऐसे फिल्म के हिसाब से शब्द है।
1: जी जी जी जी, और बताइए इसके भाव क्या हैं और एक थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं को ताकि गीत का भाव पता चले।
2: जी, इस गीत का सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, गमगीन है। इसमें उस प्रेमी के दिल का दुख है जो कि प्रेम में असफल हो गया है, अनसक्सेसफुल हो गया है। वो जिसे चाहता था उसे लेने के लिए किसी और की बारात आ गई है, यानी उसकी प्रिया की शादी आज किसी और से होने वाली है। लव स्टोरी का आज एक अनसक्सेसफुल दी एंड होने वाला है। तो उसी गम में वो सबको कह रहा है कि मत करो प्यार।
1: चलिए, बताइए इस गीत को थोड़ा सा गुनगुना के हमारे श्रोताओं को।
2: जी,

चलिए श्रोताओं, बहुत ही खूबसूरत गीत है, लेकिन सैड सॉन्ग है, इसलिए थोड़ा सा फील हो रहा है मुझे भी, लेकिन बहुत ही खूबसूरत गीत है ये, भरत व्यास का लिखा है, मोहम्मद रफी साहब ने इसे अपनी खूबसूरत आवाज से गाया है और वसंत देसाई साहब ने इसे संगीत से संवारा था। फिल्म थी गूंज उठी शहनाई, 1959 में ये फिल्म रिलीज हुई थी और विजय भट्टा द्वारा ये फिल्म निर्देशित किया गया था। राजकुमार, अनिता गुहा, इन सभी ने काम किया था। चलिए, उस समय जब ये फिल्म रिलीज हुई थी तो रिलीज होने के साथ साथ इस फिल्म ने 18 मिलियन इंडियन रुपीस का इन्होंने बिजनेस किया था। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय अगर इतना अच्छा कमाई किया हो तो आज का बहुत ही बड़ा बजट वाला, बड़ा बिजनेस करने वाली ये फिल्म थी। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए आगे बढ़ते हैं नैना, अब अगला गाना कौन सा है आपके पिटारे में?
1: अगला गाना है कहना है कहना है आज तुमसे ये पहली बार। ये गीत मुझे बहुत बहुत पसंद है और हमारी जनरेशन के यानी कि यंग जनरेशन के लोगों को भी बहुत पसंद है, हो भी क्यों ना, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर सॉन्ग रहा है। मैं समझती हूँ कि ये एक एवरग्रीन सॉन्ग है क्योंकि इसका जो कॉम्पोजिशन है वो लाजवाब है। इसमें जो म्यूज़िक दिया गया है वो बेहतरीन म्यूज़िक दिया गया है और ऊपर से एवरग्रीन किशोर दा ने इसे अपनी आवाज़ दी है। इसकी जो मूवी थी सुपर हिट हुई थी पड़ोसन, मैंने भी देखी है। इसमें एक सीधा साधा युवक अपने दोस्त की मदद से एक फैशनेबल मॉडर्न युवती के सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है। और खास बात यह है कि वो इसे खुद गा नहीं रहा है बल्कि ये उसके दोस्त यानी खुद किशोर कुमार गा रहे हैं और वो केवल लिपसिंग कर रहा है।
0: तो नैना, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। गीतकार राजेंद्र कृष्ण का लिखा, किशोर दा का गाया हुआ, राहुल देव बर्मन का बहुत ही खूबसूरत संगीत है और पड़ोसन 1968 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म जो है अपने आप में बहुत ही खास था और लोगों ने इसे बहुत ही एंजॉय किया और बहुत ही क्या बोलते हैं कॉमेडी फिल्म थी। इस कॉमेडी फिल्म में किशोर दा ने चार चांद लगा दिया अपनी एक्टिंग के जरिए, अपने गानों के जरिए। तो मैं चाहूँगा कि इसको एक बार आप गुनगुना दीजिए
1: जी।

0: नमस्कार। बहुत ही खूबसूरत गीत आपने अभी सुना, किशोर दा, सायरा बानो, सुनील दत्त और ओम प्रकाश पर पिक्चराइज किया गया था ये गाना, और पड़ोसन 1968 का ये गाना था जो आपने अभी सुना। ज्योति स्वरूप के निर्देशन में ये फिल्म बनी थी और बहुत हिट थी, लोगों ने इसे उस समय काफी पसंद किया और लोगों ने इस गाने को, इनके गाने, इनके एक्शंस, इसमें कॉमेडी जो थी वो भी बहुत ही मजेदार थी। आशा करता हूँ आपने देखा होगा तो आपको याद आ गया होगा। तो चलिए, आपकी इसी तरह चेहरे पे खुशी की फुहार बनी रहे, आगे बढ़ते हैं और थोड़ी आपकी खुशी बढ़ा देते हैं। नैना, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी हूँ।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन सा गीत है आपके पास अभी?
1: अगला गीत है लता जी का, खाई है ये हमने कसम। ये बहुत ही मधुर गीत है। इसमें एक प्रेमी और प्रेमिका जीवन भर साथ रहने की कसम खा रहे हैं।
0: बहुत ही अच्छा गीत आपने याद कराया है। तलाश 1969 में एक फिल्म आई थी। ये एक बहुत ही अच्छा फिल्म है जिसमें एक महत्वाकांक्षी युवक अपनी विधवा माँ के साथ रहता है। वो जहाँ काम करता है जल्दी वहाँ भागीदार बन जाता है। तो इस तरह का ये कहानी इसमें बताया गया है। और जो गीत आपने अभी याद कराया नैना, बहुत ही सुंदर गीत है और क्लासिकल सॉन्ग है। मजरू सुल्तानपुरी साहब ने इसे लिखा था, लता मंगेशकर ने आवाज दी थी, सचिन देव बर्मन का संगीत। तो चलिए नैना, थोड़ा सा गुनगुना दीजिए हमारे श्रोताओं के लिए आप।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। शर्मिला टैगोर, हेलन और राजेंद्र कुमार पर पिक्चराइज किया गया था ये खूबसूरत गीत आपने सुना, तलाश फिल्म का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुझे लगता है कि इतने खूबसूरत गाने जो 50s एंड 60s में बने थे, उस फिल्मों के गाने जो है, उस समय जो संगीत था, जो कलाकार थे गाने वाले, उनके अंदर एक कशिश थी। कोई भी गाना आप सुनते हो वो अपने आप में आपको आकर्षित कर लेता है, और इस गीत को पर्टिकुलर जब आप सुने तो मुझे लगता है कि आप यहाँ नहीं होंगे जहाँ पर है अभी। कहीं ना कहीं आप गुम हो जाते हो, आशा करता हूँ आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। तो चलिए आपको एक नया एहसास और कराते हैं, आगे बढ़ते हैं। नैना, अब आगे कौन सा गीत की तरफ आपका इशारा है?
1: अगला गीत है ख्यालों में किसी के इस तरह आया नहीं करते, बहुत मधुर गीत है।
0: जी जी जी

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आपने बहुत ही खूबसूरत गीत सुना, आशा करता हूँ सभी को अच्छा लग रहा है। बावरे 1950 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। इस फिल्म का ये गीत था जो अभी आपने सुना, केदार शर्मा का लिखा हुआ, मुकेश और गीता दत्त का गाया हुआ, रोशन साहब का संगीत से सजा ये गीत था जो बहुत ही खूबसूरत गीत था। बावरे 9 इस फिल्म की स्टोरी इस तरह से है, एक प्रेमी जो है अपने प्रेयसी को छोड़कर काम की तलाश में विदेश जाता है और विदेश जाने के बाद आपको पता है वहां पर वो किसी और लड़की से शादी कर लेता है। तो ये क्लाइमेक्स इस फिल्म में बताया गया है। तो इस फिल्म के कलाकार हैं राज कपूर और गीता बाली। तो चलिए, आशा करता हूँ आप सभी को बड़ा अच्छा लग रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं खूबसूरत गानों का सिलसिला ख्वाबों के सफर में। नैना, अब आगे कौन सा गीत है आपके पास?
2: अगला गीत है खेलो ना मेरे दिल से।
1: अच्छा अच्छा
2: ये लता जी का काफी सैड सॉन्ग है और इसका कॉम्पोजिशन काफी कठिन है, अक्सर बेसरा होने के चांसेस हो जाते हैं इसमें।
1: जी जी जी,
2: बहुत ही अच्छा गाया है लता जी ने, मेलोडी क्वीन तो वो है ही। इस गीत में एक प्रेमिका जिसके प्रेमी ने उसे चीट किया है, धोखा दिया है, वो उससे शिकायत कर रही है।

क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपने प्रेजेंट किया इस गीत को। आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा और कब इस गीत को सुने ऐसी उनके अंदर जिज्ञासा पैदा हो गया होगा। तो चलिए आपकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। ये गीत है टेलो ना मेरे दिल से, लता मंगेशकर का गाया, कैफी आजमी साहब का लिखा ये खूबसूरत गाना, मदन मोहन का संगीत से सजा ये फिल्म था हकीकत 1964 में जो रिलीज हुई थी। जी हाँ, इसमें 1962 का चीन और भारत युद्ध के बारे में बताया गया है, जहां पर सैनिकों की एक पलटन को लद्दाख के पर्वतीय इलाकों में मृत्यु माना गया, लेकिन हालांकि उन्हें लद्दाखी जनजातियों ने कैप्टन बहादुर सिंह द्वारा उन सभी को बचाया जाता है और ये बाद में पता चलता है। चीन भारत का युद्ध का एक सुंदर जो है हिस्सा इसमें बताने की कोशिश की गई थी। चेतन आनंद साहब का डायरेक्शन में ये फिल्म बनी थी। इसमें कलाकार थे धर्मेंद्र, बलराज सहानी, विजय आनंद, प्रिया राजवंश और संजय खान। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इस खूबसूरत गीत का आनंद उठाते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है ख्वाबों का सफर। इस कार्यक्रम में बहुत ही खूबसूरत गाने आप सुन रहे हैं और एक से बढ़कर एक गीत आज के इस एपिसोड में नैना के कलेक्शन में है। नैना, आप बताइए आगे कौन सा गीत की तरफ आपका इशारा है?
1: अगला गीत तो ऐसा है कि जिसके बारे में मुझे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। खोया खोया चांद, रफ़ी साहब का ये बहुत ही पॉपुलर गीत है। और इस गीत की खासियत है कि उन्होंने इसे काफ़ी नशीले अंदाज में गाया है, इसमें जान डाल दी है।

0: अगर ऐसा लगता है कि हम भी साथ में गाएं, तो चलिए बहुत ही अच्छा गीत आपने गुनगुनाया, याद दिलाया और सुनाया। आगे बढ़ते हैं, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर।
1: अगला गीत भी एक और सुपर हिट मार्बल सॉन्ग है, रफी साहब का ही। ये गाना कुछ ऐसा है कि इसे सुनकर पुराने गाने ना पसंद करने वाले भी ये कह उठेंगे कि सच में मोहम्मद रफी साहब की गायकी लाजवाब है, बेजोड़ है, उनके जैसा कोई गा ही नहीं सकता। इस गाने की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक प्रेमी है जो कि ये जानता है कि वो जिससे प्रेम करता है वो भी उसे पसंद करती है, मगर मुश्किल ये है कि वो ना कर देती है, बार बार इनकार कर देती है। तो ऐसी हालत में उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो जिए या मरे, क्योंकि उनके बिना जीना भी मुश्किल है और मरना भी मुश्किल है, यानी कि बंदा बीच मझधार में फंस गया है।
0: मुझे लगता है कि ये आप प्रोफेसर 1962 का फिल्म की बात कर रहे हैं।
1: जी
0: जी, बहुत ही खूबसूरत ये फिल्म थी। शैलेंद्र साहब का लिखा ये गीत है, मोहम्मद रफी साहब का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत बद्ध ये गीत जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे कि आपने बताया, वैसे ही कहानी थोड़ा सा रजड़ी वाला है। एक प्रीतम नाम का व्यक्ति लड़का है जो अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए पैसे की सख्त जरूरत होती है। दो लड़कियों के लिए एक बुजुर्ग प्रोफेसर के रूप में गीत रचते हैं और उनकी चाची की हट है कि उन्हें कोई युवा पुरुष सिखाएगा नहीं। अब बात यहाँ थोड़ा सा कश्मकश वाली आती है और इनको पैसे की जरूरत है और ये संगीत के माध्यम से पैसे इकट्ठा करना चाहता, लेकिन वहां पर उनकी चाची जो है लड़के को संगीत सिखाना नहीं देती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शम्मी कपूर, ललिता पवार और टुनटुन पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म है जिसका गाना अभी हम चाहेंगे कि थोड़ा सा गुनगुना के बताइए।
1: जी,

0: चलिए, बहुत ही खूबसूरत गाना आपने सुना, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, ख्वाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और एक से बढ़कर एक गीत आपने अभी सुना। और जिस तरह के गीत पहले बने थे वो कहीं ना कहीं स्टोरी के साथ रिलेट करते हैं, और आजकल जो फिल्म में गीत बनते हैं स्टोरी कुछ होती है, गीत कुछ होता है, तो ये थोड़ा सा जो मुश्किल वाली जो चीजें हैं आज के समय में हम देख पा रहे हैं। और मोहम्मद रफी साहब के लिए बताया जाता था, जिस कलाकार के लिए वो गाते थे पहले उस कलाकार के साथ उनकी बातचीत होती थी। और मोहम्मद रफी साहब का एक बहुत बड़ा ये अंदाज था गाने का कि जिस व्यक्ति के लिए गा रहे हैं पहले उनको वो सुनते थे, उसी आवाज के माध्यम से वो गाने की कोशिश करते थे उसी लहजे में, ऐसा बताया जाता है। एक बार जॉनी वॉकर साहब के लिए उनको गाना गाना था। अब जॉनी वॉकर के लिए बहुत मुश्किल से, मानो वो तो एक कॉमेडी कलाकार थे, कोई हीरो हो तो उनकी बातें उनको समझ में आती थी, उनकी वॉइस भी वो सुनी हुई थी। लेकिन अब जॉनी वॉकर साहब को गाने के लिए, कॉमेडी एक्टर अब गाना गाएगा तो किस तरह से गाना गाएगा, ये उनके थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था। तो इसीलिए गाना जब डायरेक्टर साहब ने बोला कि मोहम्मद रफी साहब आप जॉनी वॉकर के लिए गाना गाना है, चिट्ठी तो ले ली उन्होंने, उसने यस किया, लेकिन उन्होंने कहा मुझे 15 दिन का वक्त दीजिए। अब 15 दिन के बीच में इन्होंने जॉनी वॉकर के साथ रहे, उनकी आवाज सुनी, उनके स्टाइल को देखा, फिर उसके बाद उन्होंने उस गाने को उसी अंदाज में गाया था जो बहुत ही पॉपुलर गाना है, शायद आपको याद आ गया होगा, तेल मालिश। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नैना कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छे।
0: आइए, अब मुझे लगता है कि हम लोग आखिरी मोड पे कार्यक्रम के आखिरी गीत में पहुंच चुके हैं। आखिरी गीत कौन सा है नैना आपके पास?
1: आखिरी गीत है खामोशी खुद अपनी सदा हो। ये एक बहुत ही ठहराव भरा डीप गजल है जिसे देश के बेहतरीन गजल गायक जगजीत सिंह जी ने अपनी आवाज में पेश किया है। जगजीत सिंह जी की आवाज बहुत ही यूनिक थी। सबसे ज्यादा ठहराव अगर किसी की गायकी में थी तो वो जगजीत सिंह ही थे। उनकी मखमली आवाज में वो जादूगरी थी कि वो कुछ भी गुनगुना दे, कुछ भी गा दे, सुनकर दिल को बड़ा आराम मिलता था। ज्यादा काम नहीं करते थे वो, यानी कि ज्यादा खटके, मुर्कियां, लहरियां ये सब नहीं लेते थे वो, आराम से गाते थे। अपनी गायकी में बहुत ठहराव के साथ गाना, बहुत भाव के साथ और बहुत हल्के से गाना ही उनकी खासियत थी, और जो कि अपने आप में बहुत यूनिक थी। इसी गायकी के दम पे उन्होंने जग को जीत लिया था, जगजीत सिंह बन गए थे वो।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया जगजीत सिंह के बारे में, और काफी अच्छे गजल आर्टिस्ट रहे, बहुत ही सुंदर गाने उन्होंने गाए। आज भी उनको सुनते हैं तो कहीं न कहीं एक व्यक्ति को जो है बड़ा सुकून मिलता है, उनकी आवाज में वो आकर्षण है, वो कशिश है, जब भी उनको सुनते हैं तो बड़ा ही आनंद महसूस होता है। आज वो नहीं है लेकिन उनके गीतों के जरिए हम उन्हें याद करते हैं। तो चलिए अब जाते जाते हम लोग आपको उनका एक बहुत ही खूबसूरत जो गीत है खामोशी खुद अपनी सदा हो, ये आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। जाका सिद्दीकी का लिखा, जगदीश सिंह का ही संगीत बद ये खूबसूरत गीत आपके लिए, और इसी के साथ मैं चाहूंगा यानी हम चाहेंगे इजाजत। नैना थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच।
0: चलिए दोस्तों, नैना और मुझे दीजिए इजाजत, अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर कुछ नए गानों के साथ हम आपके साथ होंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। सलाम नमस्ते, खबा गनीसा।

0: रखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: कैसी उलझन, कैसी पहेली,

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो ऐसे गुस्सा करना ही है, कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: लाइफ का जो स्टाइल है उसको लाइफस्टाइल कहते हैं। लाइफस्टाइल इज नॉट ओनली अबाउट व्हाट वी आर ईटिंग, ड्रिंकिंग, वेयरिंग। लाइफस्टाइल इज अबाउट व्हाट वी आर थिंकिंग, स्पीकिंग, बिहेविंग। दैट्स माय लाइफस्टाइल।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार

0: प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किसके पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: तो हमारे थॉट्स का सोर्स है, स्रोत है, संकल्प भी किस आधार पर उठ रहे हैं। एक है पास्ट एक्सपीरियंसेस, कोई बीती हुई बातें, दूसरी इन्फॉर्मेशन जो हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, और तीसरी हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारी मान्यताएं ये हैं। तो वो मान्यता के आधार से, जैसे कभी खुशी कभी गम, जीवन ही ये है, तो ये एक मान्यता है। तो थॉट ऑटोमेटिकली गम की थॉट, उदासी की थॉट क्रिएट करने की आप अपने आप को परमिशन दे देते हैं। जहां आपने अपनी बिलीफ सिस्टम को चेंज किया कि खुशी इज एवरलास्टिंग, तो फिर आपकी थॉट प्रोसेस ऑटोमेटिकली उस डायरेक्शन में जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब तक हम चाहिए चाहिए करते हैं तब तक हम औरों पे डिपेंडेंट हैं। अब हमें समझ में आ गया कि हम खुद भरपूर हैं, हमें उसका सिर्फ ध्यान रखना है। जैसे ये कप है, अब अगर मुझे लगे कि ये जो मेरा कप है ये खाली है, तो आई विल कीप टेलिंग यू कि इस कप को भरिए। तो आई एम डिपेंडेंट, जब आप भरेंगे तब, और अगर आप भर पाए, और अगर आपके पास है उसको भरने के लिए, यू नो यू हैव टू हैव दैट लव टू गिव इट टू मी, नहीं तो आई कैन कीप वेटिंग टिल द एंड ऑफ माई लाइफ फॉर पीपल टू फिल माई कप, इट विल नेवर गेट फिल्ड। एंड राजयोग से हमने ये रियलाइज किया कि मेरा जो कप है ये ऑलरेडी भरा हुआ है, मैं हूं ही प्रेम स्वरूप। अब मुझे सिर्फ ध्यान रखना है कि इसको बहुत संभाल के चलना है, कि आपका कोई शब्द, कोई और परिस्थिति मुझे उस व्यर्थ चिंतन की तरफ ना ले जाए जिससे मेरी खुशी गायब हो। हम ये वर्ड भी ये यूज करते हैं कि मेरी खुशी को वो छीन गई, मतलब वो मेरे पास ऑलरेडी थी। उतना ध्यान हमें रखना है कि इस भरे हुए कप को अंदर भरा हुआ ही रहने देना है। जब तक उसको खाली समझेंगे मांगते रहेंगे, एंड दैट जर्नी जस्ट गोज ऑन लाइक दैट।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारे थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, जस्ट द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

उठे सबके कदम, देखो रम पम पम। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम।

पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हेलो मनु, अरे आज किन ख्यालों में खोई हो? क्या सोच रही हो?
1: एक्चुअली पुराना स्तंभ जी, मैं ना अपने एक दोस्त की कविता याद कर रही थी। बड़ी ही अच्छी कविता लिखता है वो।
0: अच्छा,
1: हाँ, और वो अब एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में भाग भी लेने जा रहा है।
0: और ये ऑनलाइन कॉन्टेस्ट क्या होता है?
1: पुराना स्तंभ जी, आपको नहीं पता, आजकल ना हर चीज के लिए इंटरनेट के माध्यम से कोई ना कोई प्रतियोगिता का आयोजन होता ही रहता है। कभी किसी न्यूज़पेपर द्वारा, तो कभी किसी अन्य कंपनी द्वारा। हाँ, थोड़ी जांच पड़ताल तो जरूर कर लेनी चाहिए भाग लेने से पहले। पर ये सारे कॉन्टेस्ट हमें हमारा टैलेंट दिखाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं।
0: अच्छा, तुम्हें मैं अपनी पसंदीदा पंक्तियां सुनाऊं?
1: हाँ, बताइए ना, जरूर।
0: वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं, क्या हमारे दिल में है। खींच कर लाई है सबको कत्ल होने की उम्मीद, आशिकों का आज जमघट कूच आए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है।
1: वाह, ये तो कमाल की पंक्तियां हैं। ये पंक्तियां तो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई है ना?
0: हाँ, हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के जज्बे को मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। भारत माँ धन्य है जिसने भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, बाल गंगाधर तिलक, राजगुरु जैसे अनेक बेटों और बेटियों को जन्म दिया।
1: तो पुराना स्तंभ जी, आज इन्हीं में से किसी की कहानी सुनाइए ना।
0: हाँ, जरूर जरूर सुनाऊंगा। चलो आज मैं तुम्हें बाल गंगाधर तिलक की कहानी सुनाता हूँ।

0: बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को भारत के रत्नागिरी नामक स्थान पर हुआ था और उनका पूरा नाम था लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिलक।
1: अच्छा,
0: तिलक का जन्म एक सुसंस्कृत मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनके पिता का नाम था श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक। श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक पहले रत्नागिरी में सहायक अध्यापक थे।
1: अच्छा।
0: और फिर पूना और उसके बाद ठाणे में सहायक उप शैक्षिक निरीक्षक हो गए थे। वे अपने समय के बहुत लोकप्रिय शिक्षक थे मनु। उन्होंने त्रिकोणमिति और व्याकरण पर पुस्तकें भी लिखी थी जो बहुत प्रकाशित हुई, लेकिन वो अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा पूरी करने के लिए अधिक समय तक जीवित नहीं रहे। लोकमान्य तिलक के पिता श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक का सन 1872 ईस्वी में निधन हो गया था और बाल गंगाधर तिलक अपने पिता की मृत्यु के बाद 16 वर्ष की उम्र में ही अनाथ हो गए। उन्होंने तब भी बिना किसी व्यवधान के अपनी शिक्षा जारी रखी और अपने पिता की मृत्यु के 4 महीने के अंदर मैट्रिक की परीक्षा भी पास कर ली।
1: अच्छा।
0: वे डेकन कॉलेज में भर्ती हो गए। सन 1876 ईस्वी में उन्होंने बीए ऑनर्स की परीक्षा पास की और सन 1879 में उन्होंने बंबई विश्वविद्यालय से LLB की परीक्षा पास की।
1: अरे वाह।
0: जब वे कॉलेज में कानून की पढ़ाई कर रहे थे तब उनकी दोस्ती गोपाल गणेश आगरकर से हुई।
1: अच्छा।
0: यही से आगरकर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। तिलक लोगों को शिक्षित करना चाहते थे और उनका विचार था कि लोग जितने शिक्षित होंगे उतना ही स्वतंत्रता आंदोलन में सहायक होंगे।
1: अच्छा।
0: इसी सोच के साथ उन्होंने अपने कुछ मित्रों की सहायता से एक स्कूल की स्थापना की। तिलक का मुख्य उद्देश्य देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना था। इसके लिए उन्होंने 2 पत्रिकाएं शुरू की, मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा। धीरे धीरे ये पत्रिकाएं लोगों के बीच बहुत प्रचलित होने लगी।
1: हाँ, इनका नाम तो मैंने भी सुना है।
0: तिलक के लेख अति लोकप्रिय होते जा रहे थे। तिलक ने अंग्रेजी शासन की क्रूरता और भारतीय संस्कृति के प्रति हीन भावना की बहुत आलोचना की। और इन्होंने मांग की कि ब्रिटिश सरकार तुरंत भारतीयों को पूर्ण स्वराज्य दे।
1: अच्छा।
0: केसरी में छपने वाले उनके कुछ लेखों की वजह से उन्हें जेल भी भेजा गया। दोनों दोस्तों ने इस बात पर विचार करते हुए अनेक रातें गुजारी कि वे देशवासियों की सेवा की कौन सी सर्वोत्तम योजना बना सकते हैं।
1: और फिर
0: अंत में उन्होंने संकल्प किया कि वे कभी सरकारी नौकरी स्वीकार नहीं करेंगे और नई पीढ़ी को सस्ती और अच्छी शिक्षा प्रदान करने के लिए एक प्राइवेट हाई स्कूल और कॉलेज चलाएंगे। उनके साथी छात्र इन आदर्शवादी बातों पर उनकी हंसी उड़ाते थे, लेकिन इन उपहासों या बाहरी कठिनाइयों का कोई असर उन दोनों उत्साही युवकों पर कतई न पड़ा।
1: अच्छा।
0: तिलक जी ने स्कूल के भार से स्वयं को मुक्त करने के बाद अपना अधिकांश समय सार्वजनिक सेवा में लगाने का निश्चय किया। अब उन्हें थोड़ी फुर्सत मिली थी। इसी समय लड़कियों के विवाह के लिए सहमति की आयु बढ़ाने का विधेयक वायसराय की परिषद के सामने लाया जा रहा था। तिलक पूरे उत्साह से इस विवाद में कूद पड़े।
1: अच्छा।
0: इसलिए नहीं कि वो समाज सुधार के सिद्धांतों के विरोधी थे, बल्कि इसलिए कि वे इस क्षेत्र में जोर जबरदस्ती करने के विरुद्ध थे।
1: अच्छा।
0: सहमति की आयु का विधेयक, चाहे उसके उद्देश्य कितने ही प्रशंसनीय क्यों न रहे हों, वास्तव में हिंदू समाज में सरकारी हस्तक्षेप से सुधार लाने का प्रयास था। अतः समाज सुधार के कुछ कट्टर समर्थक इसके विरुद्ध थे। इस विषय में तिलक के दृष्टिकोण से पूना का समाज दो भागों, कट्टरपंथी और सुधारवादियों में बंट गया।
1: अच्छा।
0: दोनों के बीच की खाई नए मतभेदों और नए झगड़ों के कारण बढ़ती ही गई। उसी समय इन्हीं विचारों के एक बुजुर्ग व्यक्ति विष्णु कृष्ण चिपलूणकर उनसे मिले, जो विष्णु शास्त्री के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने इन्हीं दिनों सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया था।
1: अच्छा।
0: क्योंकि अपने अफसरों से उनकी नहीं बनती थी। वे इस निश्चय के साथ पुणे आए थे कि वहां एक प्राइवेट स्कूल चलाएंगे। वे मराठी के सर्वोत्तम गद्य लेखक के रूप में प्रसिद्ध हो चुके थे।
1: अच्छा।
0: तिलक और आगरकर ने उनकी योजना को जानने के बाद उनके साथ विचार विमर्श किया।
1: और फिर
0: बाद में इन तीनों के साथ एक और व्यक्ति शामिल हो गया।
1: वो कौन?
0: बताता हूँ। उनका नाम था एम.बी. नाम जोशी। वे असाधारण बुद्धि और ऊर्जा से परिपूर्ण थे। चिपलूणकर और तिलक ने नाम जोशी की सहायता से 2 जनवरी सन 1880 ईस्वी को पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की शुरुआत की।
1: अच्छा।
0: वी.एस. आप्टे और आगरकर वर्ष के अंत में एमए करने के बाद उसी स्कूल में शामिल हो गए। लेकिन इन 5 व्यक्तियों ने अपनी गतिविधियों को स्कूल ही तक सीमित नहीं रखा।
1: पुराना स्तंभ जी, ऐसा लगता है मानो उन दिनों सभी की रगों में खून की जगह आजादी बहती हो।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने मनु। उस समय मानो सभी का बस एक ही धर्म था भारत, और बस एक मान्यता आजादी। आज हम जिस आजाद भारत में सांस ले रहे हैं, वो इन सभी वीरों की कुर्बानी के वजह से है।
1: वो तो मैं भी मानती हूँ, पर लगता है जिस स्वतंत्र भारत की कल्पना भारत माँ के इन सपूतों ने की थी, हम उसे बनाने में कामयाब नहीं हुए, बल्कि आपस में झगड़ कर उनका अपमान करते रहते हैं। क्या हमारा फिर से एक धर्म सिर्फ और सिर्फ भारत नहीं हो सकता?
0: हो सकता नहीं है मनु, हम सब भारतीय हैं। हम सभी रंगों से मिलकर ही भारत की तस्वीर पूरी होती है। अगर इन वीरों का ऋण चुकाना है तो हमें देश को सर्वोपरि रखना होगा। जब भी कोई नया व्यक्ति मिले तो उसकी जात धर्म जानने के बजाय बस अपनी भाई की नजर से देखो, किसी का अपमान न करो।
1: वो कहते हैं ना पुराना स्तंभ जी, कि रमजान में है राम और दिवाली में है अली। चलिए, अब मेरे जाने का वक्त हो चला है, तो मैं आगे की कहानी बाद में सुनूंगी। थैंक यू पुराना स्तंभ जी। बाय बाय।
0: बाय बाय मनो।

चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। एक नई श्रृंखला के साथ इन दिनों हम आपके साथ हैं और हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की, यानी कि मेरी खुशी कितनी बार दिन में ऊपर होती है, कितनी बार नीचे। तो क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि मेरी जो हैप्पीनेस है या मेरा खुशी का जो क्वेश्चन है वो स्टेबल रहे? ये कैसे संभव है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज फिर चर्चा शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जब खुशी की बात करते हैं तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने बहुत सी बातें की जो जीवन से जुड़ी थी, मेरी खुशी से जुड़ी थी। हमने ये देखा कि खुशी जब लोगों पर डिपेंड कर रही थी कि वो खुश होते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा बॉस है, तो मैं खुश हो रही थी। अगेन वो डिपेंडेंसी जो थी, और वो कहीं ना कहीं उनका खुश होना या ना होना मेरी किसी बात से मेरा अपना फेलियर बन रहा था, और मेरी अपनी जो खुशी थी वो छिन रही थी। और दूसरा, हमने जो पिछली कड़ी को देखा था उसमें बात की थी मटेरियलिस्टिक चीजों की। दे वर एक्चुअली गिविंग मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस टिल द टाइम यू टोल्ड मी कि वो पर्टिकुलर चीजें खुशी नहीं दे रही, मैं खुशी का थॉट क्रिएट कर रही हूँ। यहीं पर हम बात थी। वंडरफुल। sure. यहां तक हम बात पहुंची थी कि वो थॉट मैंने क्रिएट किया कि ये मुझे मिल गया है तो मुझे खुशी हुई। लेकिन अभी तक बात ये हो रही थी, ज्यादातर लोग जो हम जो सोचते हैं वो ये कि खुशी एक फीलिंग है, तो क्रिएट करना और नॉन क्रिएट करना थॉट कैसे होगा फिर? सो यहां से आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है?
1: गुड वन। खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है? खुशी ऑब्वियसली एक फीलिंग है, इट इज एन एक्सपीरियंस दैट आई गो थ्रू। अब लेकिन ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए सोर्स तो चाहिए ना। फीलिंग कहाँ से क्रिएट हो रही है? यस, इट्स अ फीलिंग। आई एक्सपीरियंस बहुत सारी फीलिंग्स सारा दिन के अंदर। कभी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कभी आई एक्सपीरियंस पेन, कभी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी। लेकिन ये फीलिंग्स किस आधार पर मैं अनुभव करती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन उस पल मैंने कौन सा थॉट क्रिएट किया है।
0: ओके, आई सी अ फ्लावर, बहुत सुंदर एक फूल देखा मैंने।
1: इट डजंट गिव, इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग, राइट?
0: इट गिव्स मी सो मच ऑफ अ, यू नो, लाइक सच नाइस फीलिंग।
1: पहले आप एक थॉट क्रिएट करते हो, कितनी ब्यूटीफुल फ्लावर है,
0: मुझे तो पता भी नहीं कि मैं करती हूँ।
1: अगर किसी को वो थॉट नहीं क्रिएट करेगा, अब वही फ्लावर आपको बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है। आई मे बी कि मैं उसको क्रॉस करके चले जाऊं और मेरे को कुछ लगे ही ना। फ्लावर तो वही है, मुझे उसने कोई फीलिंग नहीं दी, यू नो। आई मे जस्ट नॉट इवन रियलाइज कि यहाँ पर बहुत सुंदर फूल पड़े हुए हैं, एंड आई विल जस्ट क्रॉस एंड आई विल गो अवे, क्योंकि मैंने उस फ्लावर को देख कर रुक कर उसके ऊपर थॉट नहीं क्रिएट किया, तो फीलिंग नहीं जेनरेट हुई उसके बाद। आप रुके, कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट किया कि ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत अच्छा कलर, फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, या यू नो कितना व्हाटएवर जो जो थॉट्स क्रिएट
0: करते हैं। बोलते हैं हम, एक बार फीलिंग आ जाती है उसके बाद हम बोलते हैं,
1: राइट? तो पहले थॉट क्रिएट किया,
0: अच्छा,
1: फिर फीलिंग
0: थॉट क्रिएट करना, तो आई एक्चुअली डोंट
1: नो। एक दिन उसको ऑब्जर्व करना, क्या होता है, प्रोसेस तो यही चल रहा है, हमें तब रियलाइज आता है आफ्टर इट कम्स आउट इनटू वर्ड्स, राइट? प्रोसेस तो वही चल रहा है। अब उसी टाइम जो हमने पिछली बार भी देखा, वही फ्लावर है, वो फ्लावर अभी तक उतना ही सुंदर है, आप भी उन फूलों के सामने ही बैठे हैं, आप थॉट क्रिएट कर रहे हो, सच
0: खुशी देती है। When I buy a new dress, you know.
1: You're wearing a new sari today.
0: Yes. People have been talking about my sari, actually, if I look at it. Yeah. लेकिन जिस वक्त मैं नई साड़ी कुछ ऐसी खरीदूं, या मैं एक नई गाड़ी खरीदूं जो मैं खरीदना चाह रही हूँ कब से, या फिर अगर मैं घर की बात करती हूँ, इवन बेडशीट्स या इवन पिलो कवर्स, यू नो, कई बार, या फर्नीचर, सुंदर सा कुछ खरीदते हैं जो डिजाइनर है, जो बहुत, इट definitely gives me happiness.
1: So let's keep buying every day new things.
0: No, but we can't.
1: We can't do that. सही बात है. It is true. एक तो दो लेवल पर हुआ कि एक तो हम, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपनी खुशी को साधनों में जरूर ढूंढते हैं. एक्चुअली तो अगर हम अपनी पूरी दौड़ को देखें, ये जो जर्नी पर हम भागते जा रहे हैं, और ये जो इकट्ठा करने का हमें वो चढ़ गया है. दिस इज ऑल्सो एन एडिक्शन, समटाइम्स एन एडिक्शन. ये भी खरीद लूं, ये भी खरीद लूं, ये भी आ जाए, फिर हमारी टू डू लिस्ट में वो सारे ऑब्जेक्ट्स ही आते जाते हैं, ये भी खरीदना, ये भी खरीदना. समवेयर आई एम ट्राइंग टू बाय हैप्पीनेस.
0: अच्छा, इनफैक्ट एक और बात है, आई जस्ट क्लिक्ड कि मैंने कोई चीज देखी, सपोज मैंने शोरूम में देखी, सपोज मैंने कोई एडवर्टाइजमेंट में गाड़ी देखी, कोई मोबाइल फोन नया देखा, कोई ड्रेस देखी, इट स्टेज विद मी टिल द टाइम आई बाय इट, इट स्टेज, यू नो, एंड द थॉट कीप्स ऑन कमिंग दैट आई हैव टू बाय दैट.
1: बिकॉज जैसे ही मैंने उसको देखा, मैं उसके साथ अटैच हुई. यू नो, अगर आप अटैचमेंट की बहुत सिंपल लेवल पर देखो, आप मार्केट में जा रहे हो एंड अगर आप एक विंडो को क्रॉस करते हो, एक पर्टिकुलर वहां पे ड्रेस है या गाड़ी है, व्हाटएवर, आपने क्रॉस कर लिया उसको, लेकिन क्रॉस करने के बाद भी इफ इट इज देयर ऑन योर माइंड, यू आर अटैच्ड. चली गई है, ऑब्जेक्ट चली गई है, बट इट्स स्टिल ऑन माय माइंड. एनीथिंग व्हिच इज ऑन माय माइंड व्हेन इट इज नॉट देयर
0: इज
1: माय अटैचमेंट. पीपल ऑन माय माइंड,
0: एक्टर, पिक्चर देखने के बाद भी वो हीरो कंटिन्यूस रहता है आपके दिमाग में.
1: मेरा माइंड फिर प्रेजेंट में ना होकर
0: हमेशा, हाँ, यस,
1: इट इज लिविंग विद दोज पीपल या वो ऑब्जेक्ट्स या वो सिचुएशंस. तो ये कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं मेरी आइडेंटिटी उनके साथ जुड़ती जाती है कि ये होगा तो आई विल फील गुड, अगर मैंने ये खरीद लिया तो आई विल फील गुड. तो एक तो हमें ऑब्जेक्ट्स को, एक बहुत पहले तो बेसिक लेवल पर अगर हम लें कि हम उनको बोलते हैं सुख सुविधाओं के साधन, यू नो, सुख भी सुविधा भी. तो सुविधा डेफिनेटली कम्फर्ट, बट समवेयर कम्फर्ट एंड हैप्पीनेस को हमने मिक्स कर दिया और सारा प्रोसेस चलता रहा, ये खरीदना, ये खरीदना, ये खरीदना, ये आएगा तो खुशी आएगी.
0: लेकिन इफ आई एम कंफर्टेबल, आई एम हैप्पी.
1: कंफर्टेबल फिजिकली,
0: नो, अदरवाइज
1: लेट्स लुक एट इट. फाइन, अगर मैं लेट्स लुक एट इट, डज दिस लॉ वर्क फॉर मी, कि अगर मैं फिजिकली कंफर्टेबल हूँ देयरफॉर मैं खुश हूँ, विल दैट ऑलवेज बी एप्लीकेबल?
0: I feel that way.
1: अच्छा, this is what I आज feel. आपके लिए मर्सिडीज गाड़ी खरीदते हैं, ठीक है?
0: It feels good, yes.
1: It feels good. और फिर आप उस गाड़ी में बैठ गए, गाड़ी इज कम्फर्टेबल. गाड़ी वी हैव, इट्स कम्फर्टेबल. हम पहले 4 लाख की गाड़ी खरीदी, खरीदते खरीदते खरीदते हम 40 लाख की गाड़ी तक पहुंच गए. ऑफकोर्स फीचर्स
0: बढ़ते गए,
1: कम्फर्ट्स वो बढ़ते गए, हैप्पीनेस भी उतनी बढ़ती गई, प्रोपोर्शन फ्रॉम 4 लाख to 40 लाख.
0: No, when I am sitting there, see, I'll tell you. Huh. When I'm sitting there and I'm playing with the gadgets, see, when I was in London, we did that. There were like so many gadgets in the car. I enjoyed them, you know. Yeah, wo happiness.
1: Stimulant.
0: Yes.
1: स्टिम्युलेंट है, एक नवीनता है, एक कुछ एक्साइटिंग है, वो मैं कर रही हूँ, मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है. कितनी देर?
0: हाँ, उतनी देर तक,
1: है ना. अब उतने ही देर में वो कम्फर्टेबल गाड़ी, कम्फर्ट, वो गाड़ी कम्फर्टेबल है और वो हमेशा कम्फर्टेबल रहेगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग हैपेंस इन द वर्ल्ड, ठीक है ना. लेकिन क्या वो गाड़ी हमेशा खुशी देगी, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर हैपेंस इन द वर्ल्ड?
0: नहीं.
1: दिस इज व्हाट वी हैव टू से, कि वो ऑब्जेक्ट किस क्या चीज देने के लिए बना है.
0: वो कम्फर्ट दे रही है, वो बहुत अच्छा स्मूथ ड्राइव कर रही है, वो सब कुछ.
1: उसका एसी बहुत अच्छा है,
0: उसके हैं ये.
1: उसका एसी बहुत अच्छा है, उसका म्यूजिक सिस्टम बहुत अच्छा है, उसका सब कुछ बहुत अच्छा है. ये चीजें मेरे शरीर को, मेरे कानों को, मेरे कम्फर्ट को, मेरे बैठने के पोस्चर को, मेरी बैक को, ये सब चीजों को बहुत कम्फर्टेबल है. आज कम्फर्टेबल है, कल होगा और हमेशा रहेगा. उसका कम्फर्ट देने का जो इंडेक्स है वो वेरी नहीं करने वाला है. लेकिन डिड द मैन्युफैक्चरर ऑफ द कार से कि आपका हैप्पीनेस इंडेक्स भी इस कार के साथ हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा? नहीं. आपका कम्फर्ट लेवल हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा. जो फीचर उसने आपको सेल किया, उस कार ने, उसने आपको कहा कि जब भी आप इस कार में बैठेंगे आपकी बैक का पोस्चर ठीक रहेगा, तो हमेशा रहेगा ना. हमेशा रहेगा, आप कभी भी उसमें बैठो. लेकिन क्या आप हमेशा खुश होंगे जब आप उस कार में बैठेंगे?
0: लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि अगर हम कंफर्टेबल है तो हम खुश है.
1: अभी आप ऑफिस से निकले, आपके अपने बॉस के साथ लड़ाई हो गई, अब आप जाके बैठ गए अपनी वो 40 लाख की गाड़ी में, खुश हैं या कंफर्टेबल?
0: नहीं है, खुश.
1: कंफर्टेबल तो है ना, लेकिन
0: तो कंफर्टेबल होते ही मैं थोड़ा सा मेरा थॉट प्रोसेस बदल सकता है. सी
1: कंफर्ट तो इज नो डिनाइंग कि हमें फिजिकल कंफर्ट चाहिए, लेकिन अगर हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो फिर हम एक ही को प्राप्त करने में लगे रहेंगे. हमने कहा, आपने ही अभी थोड़ी देर पहले कहा कि इफ आई एम कंफर्टेबल आई विल बी हैप्पी, बट एक्चुअली नॉट नेसेसरी. नॉट नेसेसरी। आज मैं 40 लाख की गाड़ी में भी बैठकर हो सके बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, मेरे इतने कॉम्प्लेक्सेस हैं लाइफ में कि मैं एक्चुअली सुसाइड करने का सोच रही हूँ, या मैं अभी अभी साइकाइट्रिस्ट से ही आ रही हूँ उस गाड़ी के अंदर बैठ के।
0: सही बात है, वो तो एक्चुअली
1: आई मीन इट जस्ट द कार इज नॉट बीइंग एबल टू सॉल्व माय इश्यूज इन लाइफ, द कार इज नॉट बीइंग एबल टू गिव मी हैप्पीनेस।
0: लेकिन उतनी देर तक तो दे रही है ना हैप्पीनेस,
1: कंफर्ट दे रही है ना, कंफर्ट दे रही है। सी, अब हो सकता है कि मैं 1-2 लाख की या 3 लाख की गाड़ी में हूँ।
0: यहाँ ना अगर मैं एंगर में हूँ, आई एम वेरी एंग्री अपने, या मैं कुछ बहुत पेन में या हर्ट में आती हूँ और यहाँ मैं बैठ जाती हूँ, अब यहाँ पे ये कम्फर्ट भी ना होता तब तो मैं और एंग्री हो जाती।
1: नो डिनाइंग दैट,
0: कम से कम एक नॉच कम तो किया उसने एंगर को।
1: गुस्से को आपको ये कम नहीं करेगा।
0: हाँ मतलब
1: आपका
0: मेरे
1: शरीर कंफर्टेबल हो जाएगा तो आपका एक जिस चीज का आपको ध्यान रखना होता है एक चीज आपके यहाँ से निकल जाएगी। लेट से एसी भी नहीं है तो बहुत पसीना है तो मैं उस बात से परेशान हूं, लेकिन चलो कम से कम कुर्सी तो ठीक है ना। ठीक है, अगर कुर्सी भी कंफर्टेबल नहीं होती तो एसी भी नहीं है, कुर्सी भी नहीं है, लाइट्स भी इतनी ज्यादा, तो ऑब्स्टिकल्स जो मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही मुझे किसी ने कंफर्टेबल कुर्सी दे दी तो मेरा वो एक
0: ऑब्स्टिकल कम
1: ऑब्जेक्ट
0: हो।
1: जिसके बारे में मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ वो मेरी लिस्ट से बाहर चला गया। लेकिन कुर्सी मुझे खुशी दे देगी
0: ये नहीं हो
1: या
0: सकता,
1: मुझको
0: मेरा
1: ताकत
0: जो
1: दे
0: वो
1: देगी
0: बेसिक वो था वो नहीं कर
1: वो
0: पाती
1: नहीं
0: हूँ।
1: करेगी। हाँ ये है कि कंफर्टेबल कुर्सी होने की वजह से मैं उसके बारे में एटलीस्ट निश्चिंत हो गई, नहीं तो मैं कुर्सी पर भी बैठ के बोलती रहती बैठा ही नहीं जा रहा, इधर भी दर्द हो रहा है, इधर भी दर्द हो रहा है। लेकिन कुर्सी खुशी नहीं दे रही है, खुशी नहीं दे रही। अगर ये मुझे खुशी दे देती तो मैं अपने सारे दर्द भूल जाऊं ना इस पर बैठते। आई एम स्टिल इन पेन, आई कुड बी इन एंग्जाइटी, आई कुड बी इन एंगर। कुर्सी पर बैठने से आपका गुस्सा कम नहीं हो सकता। हाँ एक और बात जिसके लिए आप गुस्सा करने वाले थे
0: वो
1: वो
0: एक्स्ट्रा गुस्सा नहीं आने देता।
1: ठीक
0: और
1: है।
0: दूसरा एक और भी है कि थोड़ा सा कंफर्ट लेवल आते ही, आई हैव सीन दैट, मतलब ज्यादातर लोगों के सामने, कि अगर वो बहुत गुस्से में है कुछ है, अपनी कंफर्टेबल जगह पे आते ही एक बार को तो थोड़ा सा पॉज लेते हैं, मतलब ले सकते हैं
1: इफ दे
0: वो।
1: डू दैट दैट्स फाइन,
0: हाँ
1: बट फिर भी गुस्से का,
0: हाँ पूरा साइकिल तो चलता
1: और जो
0: रहता
1: ये ऑब्जेक्ट्स जो
0: है।
1: हम
0: एक्चुअली हम भूल
1: खरीदते
0: ही
1: हैं
0: जाते हैं उसके बाद, तो
1: उस टाइम
0: जब
1: वो
0: इतनी
1: याद भी नहीं
0: मेजर
1: रहता।
0: प्रॉब्लम चल रही होती है। यस ऑफ कोर्स, आई थिंक यू ऑल एग्री कि जब हमारे सामने कोई क्राइसिस आ जाता है तब हम ये भूल जाते हैं कि जो हमने गैजेट्स खरीदे हैं ये क्या कर रहे
1: आपने
0: हैं।
1: जब पहले दिन अगर बड़ी गाड़ी खरीदी तो एवरीवन इन द हाउस इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज वेरी एक्साइटेड, बट फॉर हाउ लॉन्ग? 8 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, उसके बाद इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन द हाउस। जैसे बाकी चीजें पड़ी हुई हैं, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। फिर वही जीवन है, झगड़े, वही आर्ग्यूमेंट्स, वही डिस्कशंस। फिर हम कहें कौन सी नेक्स्ट ऑब्जेक्ट लें। सी व्हाट इज हैपनिंग, मेरी जीवन जैसे आपने शुरू में बोला वो यो-यो की तरह जो चल रही है, बहुत उतार चढ़ाव है। अब मुझे कुछ कुछ ऐसा करना है हर थोड़े दिन बाद जिससे आई गो टू द पीक।
0: यस यू नो बिकॉज़ आई यस
1: आई
0: बिकॉज़
1: अग्रीड कि माई लाइफ इज गोइंग लाइक दिस, अप्स डाउन्स, अप्स डाउन्स। अब डाउन्स किस सिचुएशन में आ रहे हैं, रिलेशनशिप में आती हूँ तो आई एम नॉट गेटिंग अलोंग विद पीपल, कहीं ना कहीं मेरे संस्कार स्वभाव टक्कर में आ रहे हैं, मेरा दर्द है। अब मैं क्या करूं ऐसा जीवन में जिससे मैं अप वाली फीलिंग क्रिएट कर
0: क्योंकि
1: सकूं?
0: जैसे ही हम ज्यादा देर लो में होते हैं ना वो बहुत मुश्किल हो जाता है,
1: नाउ
0: फिर लगता है कि उससे बाहर निकालने के लिए कुछ चाहिए।
1: अब अगर मेरी फैमिली ऑफ 4 मेंबर्स है और कुछ ना कुछ थोड़ा सा डिससैटिस्फाइड है हम एक दूसरे से, ये चलो आज मैं एक चीज खरीद के लाती हूँ घर के लिए, एक प्लाज्मा ले लिया आज, ठीक है। सी द होल एनवायरमेंट इन द हाउस
0: चेंजेस
1: चेंजेस,
0: यस, वी रीच
1: सारे
0: टू दैट अगेन, वो योयो का वो ऊपर वाला आ गया।
1: और सब एक दूसरे से आज बहुत अच्छी तरह से बात कर रहे हैं, सब बहुत एक्साइटेड हैं, सब कहते हैं आज तो ट्रीट होनी चाहिए,
0: लेट्स थ्रो अ
1: डिनर।
0: डिनर पार्टी,
1: ओ ना
0: यू नो,
1: ना,
0: अगेन कई रिलेशनशिप्स में देखा है कई कपल्स में कि जब ज्यादा कम्युनिकेशन गैप हो जाता है सो दे डू कि फ्रेंड्स के साथ एक डिनर कर लेते
1: यस
0: हैं।
1: यस, सो व्हाई आर वी डूइंग ऑल दीज थिंग्स? तो जैसे हम ये लाते हैं घर के अंदर तो एक नवीनता आती है, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है, एक कुछ हमारी वो फीलिंग कि हमने अचीव किया वो बढ़ता है, और सडनली सब लोगों का अटेंशन किस चीज पर चला जाता है, उस ऑब्जेक्ट पर, और वो ऑब्जेक्ट आने पर और उसके एक्साइटमेंट पे, तो पूरा एनर्जी लेवल घर में क्या हो जाता है,
0: बहुत अच्छा।
1: इट्स वेरी हाई, एवरीवन इज वेरी हैप्पी, एवरीवन इज टॉकिंग वेरी नाइसली। कल झगड़ा कर रहे थे, कल आए तो आई वॉज कंप्लेनिंग टू द हस्बैंड, हस्बैंड वॉज कंप्लेनिंग टू द वाइफ, बच्चे कह रहे हैं आपके पास तो हमारे लिए ये। लेकिन आज घर का वातावरण कैसा है, बहुत अच्छा है। 2-3 दिन वो प्लाज्मा का इफेक्ट रहेगा पूरे घर पे. फिर फाइनली कितने दिन कितने दिन
0: प्लाज्मा एक तरह पर वो लड़ाई फिर से
1: फिर नॉर्मल आ गया. इट्स वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द वॉल. फिर उसके बाद मेरी वही वाली चल रही है साड़ी. फिर मैं थोड़े दिन के बाद अब मैं क्या नया खरीद.
0: दिस इज व्हाट लाइफ इज. सी व्हाट इज द
1: यो-यो इज व्हाट लाइफ इज.
0: नो बट दैट्स व्हाट वी से यू नो कि कभी खुशी है मतलब जिंदगी में यही तो है कि अब हमेशा तो खुशी नहीं रह सकती इन द सेंस कि हमेशा ही तो कुछ नहीं आप अचीव कर सकते. तो जब आप अचीव करो जब आपको वो मिले तब आप यू नो यू शुड एंजॉय इट. एंजॉय द मोमेंट्स एज मच एज यू कैन. लिव द मोमेंट्स यू नो दीज आर ऑल.
1: नो डिनाइंग नो डिनाइंग लेकिन फिर अंडरस्टैंडिंग कि कितनी बार चीजें खरीदते रहोगे. कितने बार साल में नई गाड़ियां खरीदोगे. कितने बार नए टेलीविजन नए मोबाइल. नया मोबाइल आया नहीं मार्केट में तो I want to buy the new mobile.
0: And, you know, now to, another thing which has started happening to Sachivani is, I want it. Yeah. People have just, you know, the moment they see it.
1: Now, ye jo aapne expression create kiya, I want it. This is an expression of so much, you
0: need,
1: know.
0: Need, yes.
1: So
0: yes.
1: much stress. Till I get it.
0: Mm.
1: Jab tak mujhe nahi mila, meri
0: you know, I had
1: state
0: a,
1: of mind
0: an altercation with my daughter, actually. I don't want to talk about it. But then that happened. She wanted different colored lenses, you know. And why? Because she had seen in the ad. And this was like, I want them. I need them.
1: You know? No, it's not I need them. I want them.
0: I want them, yes. You know, because what for? Everyone else has them.
1: ठीक है. तो फिर उसके लिए जब तक वो नहीं मिलेगा तब तक वो चिड़चिड़ापन गुस्सा हो सकता है घर में झगड़ा भी. फिर सपोज वो आ गया तो वेरी हैप्पी. कितने दिन
0: गुम अगले दिन गुम जाते हो जी.
1: दो दिन के बाद कोई नया ऑब्जेक्ट है जिसके लिए हम. सो वी हैव टू बी नॉट सेइंग दैट वी डोंट वांट दीज ऑब्जेक्ट्स. भले घर में जितना खरीदना है खरीदते जाएं लेकिन कई बार तो इन चीजों के पीछे ही घर में स्ट्रेस क्रिएट हो चुका है कि मेरे घर में ये नहीं है उनके घर में है या हमारे पास ये होना चाहिए. तो ला तो खुशी के लिए रहे हैं लेकिन क्रिएट क्या कर रहे हैं इन द प्रोसेस. जब वो आ जाएगा बहुत क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें हमें क्या देती हैं. इट्स बी वेरी क्लियर ये हमें आराम देती हैं. आराम देने के लिए बनी है. शरीर को आराम देने के लिए बनी है. मन को आराम देने के लिए ये नहीं बनी थी. और ये शरीर को आराम देने के साधन इकट्ठे करने में कहीं ना कहीं हम मन को तंग कर रहे हैं सारा दिन. यू नो आई क्रिएट पेन जेलसी कॉम्पिटिशन एवरीथिंग जस्ट सो दैट आई acquire these objects. तो ये तो comfortable हो गया. That's one part of the story. इसका क्या हाल है? और फिर इसको तो अगले दिन ये तो comfortable रहेगा. जितना दिन कुर्सी पर बैठेगा comfortable रहेगा. इसके comfort का ध्यान रखने का क्या? तो जितना ध्यान शरीर के comfort का रखते हैं उतना ही ध्यान इसीलिए हमने कहा साथ साथ मन को comfortable करने का क्या.
0: तो हमारी ये इच्छा रखना कि मुझे ये चाहिए very true. One thing which you've said, which we need to actually think about, कि हम जो चीजें चाह रहे हैं वो हमें क्या देंगी पहले इस पे हमें क्लैरिटी रहे. यू नो बिकॉज दिस इज अंडरलाइन.
1: जो एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री है ये हमारे इमोशंस को बहुत अच्छी तरह से
0: समझ
1: यूज करती है. दे आर वेरी गुड साइकाइट्रिस्ट आई फील. जो भी एड बनती है वो क्या दिखाती है कि ये जब आप ऑब्जेक्ट खरीदते हैं आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत खुश हो जाएगी. आपके बच्चे आपके बहुत खुश हो जाएंगे. आपका रूठा हुआ हस्बैंड आपसे खुश हो जाएगा. नाउ दिस प्लेज विद माय साइकोलॉजी एंड आई से ओके इफ आई आल्सो गेट दिस मेरे भी ये जो सारे लोग हैं ना ये खुश हो जाएंगे. तो एक चीज है कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों को जो इकट्ठा करने में लगे हुए हैं. वन इज फॉर फिजिकल कम्फर्ट वेरी गुड बट रिमेम्बरिंग खुशी नहीं देगी. दूसरा है

0: लोगों को खुश करने के लिए हम इकट्ठा करने में लगे हुए हैं कि अगर मैंने ये खरीदा तो मेरा परिवार खुश हो जाएगा। एक बार रुक कर चेक करना पड़ेगा उनका हैप्पीनेस इंडेक्स क्या आज का, बच्चों का कितने दर्द में है वो बच्चे आज, नोबडी इज लुकिंग एट दैट। हम रोज शाम को घर आते आते उनके लिए कोई एक प्ले स्टेशन, कोई ये वीडियो गेम, कोई ये ले आते हैं, सोचते हैं कि ये दे देंगे तो वो खुश हो जाएंगे।
1: एक्चुअली वो थोड़ी देर के लिए वो
0: हो जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे हम, अगर मैं खाली हाथ आ रही हूँ तो उन्होंने तो गुस्सा करना है, आप आए इतने लेट, मुझे आज मेरे स्कूल में वो था, प्रोग्राम था, आप आए नहीं, व्हाटएवर। सो आई गेट वन प्ले स्टेशन व्हाइल कमिंग फ्रॉम वर्क, उनको दे दिया, वो भूल गए उस बात को, वो डिस्ट्रैक्टेड हो गए, उसको खेला, हमें लगा हमने उनको खुशी दी, हमने उनको थोड़ी देर के लिए एक स्टिमुलेंट दिया, उल्टा हमने उनको और भी उस प्रोसेस से हटा दिया कि खुशी कैसे क्रिएट करनी है, हमने उनको एडिक्शंस की तरफ लेकर गए कि जितनी ये चीजें आपके पास आती जाएंगी आपको खुशी मिलेगी। फिर कल हम बाद में मुड़कर कहते हैं इनकी तो डिमांड्स ही नहीं खत्म होती, ये रोज नई नई चीजें मांगते हैं, सिखाया हमने ही था कि ये कैसे लाना। सो वन इज टू गिव हैप्पीनेस टू फैमिली। डिजायर बहुत प्योर है, हमें ये याद रखना पड़ेगा, इट्स नॉट दैट वी आर बैड और व्हाटएवर, हमारी इंटेंशन बहुत प्योर है, लेकिन तरीका समवेयर
1: हमने खुद के लिए भी तो यही रखा ना। See, somewhere we need to understand, so actually हम गलत नहीं कर रहे, क्योंकि हमने यही समझा कि खुद को खुशी देने के लिए भी तो मैं साड़ी खरीद के लाऊंगी, या मैं एक नई ड्रेस खरीद के, शॉपिंग में बहुत दुखी हूँ, so I'll just go and buy something good, you know, like, and I bought something good, or I'll go out.
0: It definitely, ये जो buying something good की चीज है, ये हमें थोड़ी देर के लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग क्रिएट करती है, लेकिन साड़ी नहीं क्रिएट करती है, मैं क्रिएट करता हूँ एट द थॉट ऑफ हैविंग बॉट दैट साड़ी। आपने अभी इतनी सुंदर ब्लू कलर की साड़ी पहनी है, लेकिन वो साड़ी के पास फीलिंग्स थोड़ी है आपको देने के लिए, यू आर फीलिंग गुड
1: बिकॉज आई ओन दिस और व्हाट,
0: यू अचीव्ड इट, आपने कुछ खरीदा, आपको वो अच्छा लगा, यू वर एबल टू बाय इट, आपने लिया, ये एक पहले थॉट क्रिएट करती है। फिर आपको चार लोग जरूर मिलेंगे जो बोलेंगे न्यू साड़ी कहाँ से ली, बहुत अच्छे लग रहे हो, आपको और वो खुशी मिलती है,
1: पूरी वैल्यू मिल गई, यू नो, यस।
0: साड़ी इतनी देर में कुछ भी नहीं कर रही है, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ क्लॉथ जिसके पास कोई फीलिंग्स नहीं है। लेट्स बी वेरी क्लियर, जिसके पास फीलिंग्स ही नहीं है वो मुझे फीलिंग कैसे दे सकता है। अब चार लोगों के बाद एक पांचवें इंसान ने आकर अगर कह दिया कनुप्रिया दिस कलर आई डोंट नो वेदर इट्स लुकिंग वेरी गुड ऑन यू,
1: आई डोंट लाइक हिम,
0: यू डोंट लाइक हिम एंड यू डाउट द साड़ी आल्सो,
1: ओह गॉड इज इट राइट और नॉट।
0: सी साड़ी वही की वही है लेकिन फीलिंग्स चेंज हो गई, तो फीलिंग्स मैं क्रिएट कर रही हूँ, फर्स्ट कि मैंने साड़ी खरीदी या गाड़ी खरीदी या नया मोबाइल जो लॉन्च हुआ है वो खरीदा, उसकी अचीवमेंट की थॉट जो मैं क्रिएट करती, एंड ऑपोजिट ऑफ दैट मैं नहीं खरीद पाती अगर
1: तो वो भी मैं
0: तो उसकी फेलियर की थॉट जो मैं क्रिएट करती वो मुझे दुख देता है, मैं नहीं खरीद पा रही हूँ, मेरे आसपास के सब लोग ये खरीद पा रहे हैं। सपोज एक नया मोबाइल लॉन्च हुआ 20,000 का है, लेकिन मेरा जो मोबाइल है वो तो वही पुराना वाला है, उसमें वो गाने नहीं बजते या जो भी फीचर्स है नहीं है, सबके पास दूसरा वाला है, मोबाइल नहीं खुशी दे रहा, लेकिन ये फीलिंग सबके पास है मेरे पास नहीं है। फिर जिस दिन मैंने खरीद लिया जो सबके पास है वो मेरे पास, या मेरे पास जो है
1: वो किसी के
0: औरों से भी ज्यादा अच्छा है, एंड देन शोइंग इट टू एवरीवन, नॉट मे बी टू एवरीवन बट एटलीस्ट फॉर माई सेल्फ कि मेरे पास वो है, ये सब फीलिंग्स क्रिएट हो रही हैं। मोबाइल क्या कर रहा है, उसके पास पावर कहाँ है फीलिंग क्रिएट करने की, लेकिन मैं क्योंकि वो मोबाइल खरीदने के बाद वो फीलिंग क्रिएट कर पाती हूँ, तो आई थिंक कि मोबाइल मुझे खुशी दे रहा है, मोबाइल कैसे देगा उसके पास तो है नहीं।
1: हाँ एक्चुअली वेयर वी हैव रीच्ड इज कि मैंने ये समझा था कि गाड़ी के कारण मुझे खुशी मिल रही है, तो गाड़ी क्योंकि चैतन्य तो नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस बीइंग नहीं है, मटेरियल है, वो कुछ भी नहीं दे सकती मुझे,
0: फिजिकल कंफर्ट,
1: यस फिजिकल कंफर्ट दे सकती है जरूर, लेकिन खुशी जो है वो मैं खुद क्रिएट करती हूँ, अनहैप्पीनेस है वो भी मैं खुद क्रिएट करती
0: हूँ। एब्सोल्युटली ना, अभी सपोज आपके पास इतनी सुंदर ब्लू साड़ी है, मैं तो नहीं ले सकती, लेट्स से मैं व्हाइट साड़ी पहना है, मुझे तो अलाउड नहीं है ब्लू साड़ी पहनना, अब ये सोच सोच के मैं अंदर परेशान होती रहूं, सो लकी कनुप्रिया तो ब्लू भी पहन सकते है, रेड भी पहन सकते है, आई एम वेयरिंग ओनली व्हाइट, तो ये व्हाइट साड़ी थोड़ी दुख दे रही है मेरे को बैठकर, लेकिन मैं जो सोच रही हूँ उसको, आपको देखकर, अपने को देखकर, औरों को, मैं जो सोच

0: प्रे हो, आपको देखकर आपने जो जो अचीव किया मैं नहीं अचीव कर पाई, तो दिस इज क्रिएटिंग माय दुख. देन आई गेट इन टू दिस कॉम्पिटिशन रेस कि इनके पास जो है वो मेरे पास भी होना चाहिए, क्योंकि जब वो मेरे पास आएगा तब मेरे पास खुशी आएगी. नो, वो ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा, मैं क्रिएट कर रही हूँ. हाँ, ये है कि मैं डिपेंडेंट हूँ कि जब वो ऑब्जेक्ट आएगा तब मैं वो अच्छे वाले थॉट्स क्रिएट करूंगी, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं लेकर आएगा वो वाली थॉट्स.
1: तो मैं अभी भी क्रिएट कर सकती हूँ?
0: अभी भी क्रिएट कर सकती हूँ. एग्जैक्टली.
1: ओके, बट हाउ? आई डोंट हैव एनीथिंग टू क्रिएट समथिंग, यू नो.
0: सो यू, ऑब्जेक्ट डजंट क्रिएट द थॉट्स हियर. हियर इज द
1: ऑब्जेक्ट, हैज टू बी देयर ना. सी, साड़ी हैज टू बी देयर सो दैट आई क्रिएट द थॉट.
0: लेकिन साड़ी पहनने के बाद, वही हमने अभी देखा, चार लोगों ने बोला बहुत अच्छी, तो आपने वो थॉट क्रिएट की. एक ने कहा नॉट वेरी नाइस, आपकी थॉट चेंज हो गई. साड़ी तो वही है. यू आर द क्रिएटर ऑफ द थॉट. आप क्रिएट कर रहे हो, आपके पास पावर है टू चूज कौन सी थॉट क्रिएट करनी है. साड़ी वही है.
1: नहीं तो साड़ी हो या ना हो, आई कैन क्रिएट अ थॉट कि आई एम हैप्पी. मतलब लाइक साड़ी इज देयर, ऐसा तो नहीं हो सकता ना. सी, ऑब्जेक्ट है. आपने कहा
0: साड़ी इज देयर, ये थॉट आप नहीं क्रिएट कर सकते, लेकिन ये तो थॉट क्रिएट कर सकते हो कि माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द साड़ी. माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन हैविंग अचीव्ड बाइंग दैट ऑब्जेक्ट. माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट ऑल आई हैव गैदर्ड. माय हैप्पीनेस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन व्हाट पीपल थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट्स व्हिच आई हैव अचीव्ड.
1: बट यहां से शिवानी, हैप्पीनेस इज नॉट अ थॉट, इट्स अ फीलिंग.
0: या सो जो थॉट क्रिएट होगी फिर ही तो फीलिंग जनरेट होगी ना उसके बाद.
1: दिस इज, वी नीड टू टॉक मोर अबाउट इट, बिकॉज व्हाटएवर वी हैव टॉक्ड टुडे इज एक्चुअली अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि कोई भी ऑब्जेक्ट कुछ भी क्रिएट नहीं करता है. वो कंफर्ट दे सकता है, वो मुझे यू नो लाइक जो जो उसको देने के लिए जो बना है वो दे सकता है. हैप्पीनेस या कोई भी फीलिंग जो है वो खुद नहीं क्रिएट कर सकता,
0: उसके पास है नहीं.
1: हाँ, ऑफ कोर्स, दिस इज टू वी ऑल अंडरस्टैंड.
0: आई नो वी ऑल अंडरस्टैंड.
1: बट ये है कि वो खुशी को अभी तक हम थॉट है ये नहीं मान रहे थे, हमें फीलिंग है. लेकिन थॉट के बाद फीलिंग कैसे आती है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, और साथ ही कि वो क्रिएट कैसे करना है जो है ही नहीं, इन द सेंस कि आई थिंक वी नीड टू रियली टॉक मोर अबाउट इट. बट थैंक यू सो मच, आज एक और क्लैरिफिकेशन हुआ कि जिन मटेरियलिस्टिक चीजों को हम सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए, और जो वो मुझे इतनी खुशी दे रहे थे, तो ये क्लियर रखना है वो नहीं दे रहे हैं, मैं खुद अपने आप को दे रहा था. यू नो समवेयर आई वॉज गिविंग इट टू माई सेल्फ. थैंक यू सो मच. शांति, बहुत लिबरेटेड फील करते हैं. इनफैक्ट अभी तो मैं फील कर रही हूँ कि वो कोई नहीं दे रहा था, ना तो ऑब्जेक्ट और ना ही कोई सिचुएशन भी. अगर हम देखें आज पूरी बातचीत में, ना मेरी गाड़ी ने मुझे दे नहीं सकता, दे वो कंफर्ट सकता है. मोबाइल बहुत अच्छे फीचर्स के साथ मेरा कंफर्टेबल कर देता है बात करना, या कोई भी और मटेरियलिस्टिक चीज जो है मैंने क्रिएट किया उसे खरीदते ही कि मैं खुश हो गई. अगर वो नहीं खरीद पाए तो क्या मैं हर बार यही क्रिएट करूंगी कि मैं खुश नहीं हुई, या कुछ और चीज है जो मैं क्रिएट कर सकती हूँ? अगर मैं उसे नहीं भी खरीद पाई तो मैं कैसे वो थॉट क्रिएट कर सकती हूँ? और वो तो सिर्फ थॉट ही रह गया, वो फीलिंग का बदल बनता है, क्योंकि अभी तक मेरे लिए हैप्पीनेस जो था वो एक फीलिंग है. सो हाउ माई थॉट क्रिएट्स माई फीलिंग, ये एक अलग चर्चा का विषय है जिस पर हम बातचीत जरूर करेंगे. लेकिन अभी आज की इस बात से जुड़ी कोई आपके मन में बात उठ रही है, प्लीज फील फ्री, आप हमें जरूर फोन करें या फिर ईमेल पर संपर्क करें. हमारे फोन नंबर हैं 01242667000, 9999344555, 9999344666, 9873666555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में खुशी के इंडेक्स को देखने के लिए, जांचने के लिए, जहां हमने लो गए वहां हमें हाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि ज्यादा लो हो गया तो हमें बहुत मुश्किल होती है. इसीलिए उसे स्टेबिलिटी पे कैसे लाना है ये प्रयास चलता रहेगा. फिलहाल आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखी, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गलती तो गलती हुई ना, दूसरे की गलती को अगर पहली बात हमें कोई राइट भी नहीं है, लेकिन दूसरे की गलती को चेक करने का आपको हक तब है जब आप बिल्कुल परफेक्टली राइट पर है। आप भी गलती करके दूसरे की गलती को सुधारे तो उसकी दूसरे के ऊपर कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट उस चीज का पड़ेगा ही नहीं। एंड इसीलिए हम सब लोग दूसरों को सुधारने की कोशिश करते रहते हैं, बट इट्स नथिंग इज रियली वर्किंग, इट वोंट वर्क दैट वे, क्योंकि हम खुद वो गलतियां या उससे भी बड़ी गलतियां कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। जिंदगी में कितने मुकामों से हम गुजरते हैं। कहा जाता है कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम कितने ही कलाकारों का जो पार्ट है वो अदा करते हैं, कितने ही रोल्स निभाते हैं। कभी मैं एक माँ होती हूँ, कभी मैं एक प्रोफेशनल हूँ, कभी एक एंकर हूँ जब आपसे बात कर रही हूँ, या फिर कभी कभी मैं बहुत कुछ और हो जाती हूँ। लेकिन क्या कभी मैंने सोचा कि मैं हूँ कौन? कई बार ये सवाल सर उठाता है और जब ये सवाल ज्यादा सर उठाने लगे तो उसका जवाब तलाशना जरूरी हो जाता है। हु एम आई, मैं हूं कौन? आज इस कड़ी में यही तलाशने की कोशिश करते हैं और इस तलाश में हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका हार्दिक स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। सिस्टर शिवानी, कई सारे रोल हम हर रोज अदा करते हैं कि और उसको बखूबी निभाते भी हैं। बड़ी जल्दी हम चेंज भी हो जाते हैं कि मैं एक माँ हूं तो बहुत सॉफ्ट बनी रहूंगी, उसके बाद एक टीचर हूं तो मैं बहुत स्ट्रांग हो जाऊंगी, एकदम से बाहर निकलूंगी तो कुछ और हो जाऊंगी। लेकिन एक वक्त आता है कि मन पूछता है,
1: कई बार ऐसा होता है ना, लेकिन सब कुछ करते हुए, सारे रोल निभाते हुए, कहीं ना कहीं मैं कौन हूं इन सब में से,
0: ये भी पूछता है।
1: यू नो रोल्स, जैसे आपने कहा हम कलाकार हैं जो रोल प्ले कर रहे हैं, तो रोल प्ले करने के बाद तो कलाकार को ये पता ना कि मैं कौन हूं जिसने ये रोल प्ले किया। लेकिन हम आजकल रोल प्ले करते करते करते उस रोल के अंदर इतना इंटैंगल हो जाते हैं, इतना फंस जाते हैं कि रोल को ही मैं समझना शुरू कर देते हैं, यू
0: एक्चुअली
1: नो।
0: ये अच्छे एक्टर्स के साथ कहा भी जाता है कि
1: हाँ
0: आप अगर एक फिल्म कर रहे हैं तो
1: राइट,
0: आप मानने लगते हैं,
1: बिल्कुल।
0: लेकिन वो कहीं ना
1: बट यू
0: कहीं
1: गेट इन टू द
0: साइकेट्रिक
1: रोल,
0: प्रॉब्लम है।
1: नहीं, दे से यू गेट इन टू द रोल, यू फील द रोल, विच इज वेरी गुड। कि आप जो भी रोल इस टाइम प्ले कर रहे हैं, जैसे आपने कहा एक एंकर का, गेट इन टू इट कम्प्लीटली, फील द रोल। बट लेकिन जब आप उससे बाहर निकलेंगे,
0: आई शुड रिमेम्बर हु एम आई।
1: यस, जब आप घर पहुंचते हैं, देन यू कांट बिहेव लाइक एन एंकर, तब आप एक अलग रोल अडॉप्ट करते हैं। लेकिन हम इतने सारे रोल्स, आप देखिए जो एक्टर्स होते हैं मूवीज में, वो लोग भी प्रायोरिटाइज करते हैं कि एक टाइम पे हम कितने रोल करेंगे, राइट? हम एक टाइम पे दो या तीन मूवीज ही कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा रोल वेरिएशन कहीं ना कहीं मेरी अपनी इंटरनल स्टेज पर एक इफेक्ट डालता है। लेकिन हम बहुत सारे रोल प्ले कर रहे हैं, एंड इसमें से कोई भी रोल ऐसा नहीं है जो मैं आई कैन विदड्रॉ।
0: एक्चुअली अगर हम जिंदगी में
1: आई
0: देखें तो
1: कांट,
0: कोई ऐसा रोल नहीं है जो मुझे अदा पूरी शिद्दत के साथ नहीं करना
1: बिल्कुल।
0: है।
1: और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ती जाएगी, जितने रोल्स मुझे प्ले करने वो बढ़ते जाएंगे। आप पहले सिर्फ एक बेटी थी किसी की, एक बहन थी, फिर आप एक पत्नी बनी, फिर आप एक माँ बनी, फिर आप किसी की चाची बनी, किसी की बुआ बनी, अब आप किसी की नानी बनेंगी, किसी की दादी बनेंगी। तो द रोल्स आर ओनली गोइंग टू गो ऑन इंक्रीजिंग, एंड इतने रोल्स प्ले करते करते वी जस्ट फॉरगेट हु एम आई जो ये रोल प्ले कर रहा है। तो दैट्स व्हाट वी टॉक अबाउट इज सेल्फ अवेयरनेस, कि जब सब कुछ करते हुए एम आई अवेयर कि ये कौन है जो ये रोल प्ले कर रहा है।
0: एक बात ये बताइए कि हम इस पूरी जर्नी की बात कर रहे हैं सिस्टर शिवानी की, कहाँ से शुरू होके, जब छोटे हैं तो शायद वो अवेयरनेस रहे भी कि हु एम आई, लेकिन जहां जब इतने रोल्स बढ़ते जाते हैं, इंटरमिंगल होते जाते हैं वो सारे रोल्स भी अपने आप में, ये मुझे याद रख पाना जरूरी है। वन इज लाइक वाई आई नीड टू नो, मुझे क्यों चाहिए कि मैं कौन हूं, ये जानना मेरे लिए क्यों इतना जरूरी है। जब मैं इतने सारे रोल्स अदा कर रही हूँ, बखूबी निभा रही हूँ, उन्हें इंजॉय भी कर रही हूँ, तो क्यों जानना जरूरी है मेरे लिए?
1: क्या हम सच में उनको एंजॉय कर रहे हैं? लेकिन आज
0: हाँ, क्योंकि सवाल उठते हैं,
1: हाँ, क्या हम
0: परेशानियां आती हैं।
1: सचमुच में उनको बखूबी निभा रहे हैं? क्योंकि नहीं तो अगर हम सचमुच में उनको उतनी सुंदर रीति निभा रहे होते और एंजॉय कर रहे होते, तो देन टेंशन, एंग्जाइटी, वर्ड्स वुड नॉट एग्जिस्ट, यू नो। कहीं ना कहीं हम

0: दूसरा मुझसे क्या चाहता है. यू नो, अ गुड मदर, अ गुड वाइफ, डिपेंडिंग ऑन, अगर मेरे बच्चे कहेंगे आई एम अ गुड मदर, देन आई एम अ गुड मदर. यू सी, अगर मेरे हस्बैंड कहते हैं आई एम अ गुड वाइफ, देन आई एम अ गुड वाइफ. तो आई एम ट्राइंग टू बी जो उनके मन में एक सही, एक आइडियल पत्नी का जो एक इमेज है, मैं उस इमेज की तरह बनने की कोशिश कर रही हूँ. मैं शायद वो नहीं हूँ और मैं कुछ बनने की और कोशिश कर रही हूँ. देयर विल बी अ कॉन्फ्लिक्ट. यू नो, आई एम ट्राइंग टू बी वॉट पीपल वॉन्ट मी टू बी बिकॉज आई वॉन्ट टू प्लीज देम.
1: एक्चुअली और उनकी डेफिनेशन है, यू नो, हमने डिफाइन किया हुआ है कि एक अच्छी बहू, एक अच्छी माँ, एक अच्छी स्त्री या एक अच्छा ह्यूमन भी ऐसा डिफाइंड है. उसके ऊपर अगर आप खड़े उतर रहे हैं तो आप अच्छे हैं. तो उस प्रोसेस में ही हमारी पूरी जिंदगी
0: तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप पति के सामने एक कुछ और पर्सनालिटी आएगी, क्योंकि वो पर्सनालिटी उनको चाहिए. मदर इन लॉ के सामने एक और पर्सनालिटी आएगी क्योंकि वो उनको चाहिए. प्रोफेशन में जाएंगे वहां कोई और पर्सनालिटी आएगी. अब ये हर फैसेट पे, हर एस्पेक्ट पे अगर पर्सनालिटी चेंज होती गई इन द प्रोसेस, ओरिजिनल पर्सनालिटी कौन सी थी?
1: वो एक्चुअली घूम गई.
0: इट्स लॉस्ट. एंड अब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं हम दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, उनकी अपेक्षाओं के अनुसार अपने आप को इतना परिवर्तन करते जाते हैं कि अपनी ओरिजिनल पर्सनालिटी कहीं ना कहीं गुम हो जाती है. और मेन चीज ये है कि इतना कोशिश करने के बावजूद सबको खुश नहीं कर पाते.
1: हाँ बिल्कुल. लेकिन यहाँ एक और मैं बात ये जानना चाहूंगी कि अडेप्टेबिलिटी तो जरूरी है,
0: हाँ,
1: क्योंकि हर रोल जो है वो अलग है.
0: अडेप्टेबिलिटी, लेकिन नॉट यू नो कि अपनी पर्सनालिटी को जानते हुए उसके अनुसार अडेप्टेबिलिटी. यू नो, अगर हमें अपना पोटेंशियल पता होगा, अभी हम एडजस्ट करते भी तो हैं तो घुट घुट के करते हैं. मुझे कितना सहन करना पड़ रहा है, मुझे दैट्स बिकॉज आई डोंट नो माई पोटेंशियल. अगर मुझे अपना पोटेंशियल, अपनी स्ट्रेंथ पता हो, तो फिर वो सहन करना एक बोझ नहीं लगेगा, वो एक नेचुरल अडेप्टेबिलिटी है. जैसे पानी बहते बहते इट जस्ट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू रास्ते में जो आता है. अकॉर्डिंगली वी आर लाइक अ फ्लोइंग रिवर. रास्ते में जो आएगा, आई विल जस्ट फाइंड माई पाथ अकॉर्डिंग टू दैट.
1: एक्चुअली ये कहना कितना आसान लगता है लेकिन जब करते हैं तो बहुत मुश्किल है. सबसे बड़ी बात सिस्टर शिवानी, जब हम हमारे पास ये सवाल का जवाब तो आया कि क्यों जरूरी है ये जानना कि हु एम आई, लेकिन हम हर बार अवेयरनेस की बात करते हैं. वी बीन टॉकिंग अबाउट इट. हमारा प्रोग्राम ही अवेकनिंग है, जागरूक करने की बात है, जागने की. कहाँ से जागेंगे, कौन सी सुप्त अवस्था में है हम, यू नो, और कैसे जागेंगे?
0: एंड ये है क्या आखिर अवेयरनेस? बिकॉज ये एक ऐसा शब्द हो गया है विच इज रियली कॉट ऑन. एवरीबडी सेज सेल्फ अवेयरनेस, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस क्या है? एक छोटी सी बात है. एक शिष्य गुरुजी के पास गए और गुरुजी उस दिन मौन में बैठे थे. तो उस बहुत चात्रक था शिष्य. तो शिष्य ने कहा, व्हाट इज अवेयरनेस, आप प्लीज मुझे इसका आंसर बता दो तो शायद मेरे जीवन बिल्कुल, यू नो, मैं मुक्ति की तौर या एनलाइटनमेंट की ओर चला जाऊंगा. तो गुरुजी मौन में थे उस दिन, तो उन्होंने एक कागज लेकर उस पर लिखा अवेयरनेस और उसे दे दिया. तो वो भागता हुआ चला गया. थोड़ी देर के बाद वापस आया. उसने कहा, अवेयरनेस तो मुझे पता है लेकिन अवेयरनेस का मतलब क्या है? तो उन्होंने फिर से कागज लिया और लिखा अवेयरनेस इज अवेयरनेस और फिर उसे वापस दिया. वो फिर भागते हुए चला गया, हाँ मुझे आंसर मिल गया. लेकिन थोड़ी देर के बाद जाके रियलाइज किया, नो आई हैवंट अंडरस्टूड. एंड वापस आए, फिर कहा, बट एक्चुअली व्हाट इज अवेयरनेस? तो उन्होंने फिर कागज लिया और उसमें लिखा अवेयरनेस मीन्स अवेयरनेस मीन्स अवेयरनेस.
1: ओके, नाउ लाइक
0: मीनिंग,
1: मेरे सवाल का भी यही है.
0: मीनिंग कि इसका कोई मीनिंग नहीं है. ये होने की बात है. इट इज नॉट अबाउट व्हाट डज अवेयरनेस मीन, इट इज अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट. यू नो, अवेयरनेस सिर्फ अपने आप के बारे में नहीं, लेकिन अवेयरनेस अर्थात एक जागृता, एक पहचान, एक भान होना चाहिए कि सारा दिन मेरे अंदर क्या चल रहा है. मुझे उसकी जागृता होनी चाहिए. ये नहीं कि मुझे पता ही नहीं है क्या हो रहा है. जैसे कि हम कहते हैं मुझे पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है. मुझे पेपर पढ़ना है, मुझे टीवी देखना है, मुझे मालूम तो होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है. हम अपने बच्चों को कहते हैं मुझे आकर अपनी सारी बात बताओ, मुझे पता तो होना चाहिए स्कूल में क्या हो रहा है. अवेयरनेस, आई नीड टू बी अवेयर व्हाट यू आर डूइंग इन योर लाइफ, विच इज फाइन. सो वी आर अवेयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड, We are aware about what's happening in other people's life. We are also aware about what's happening in our life. मेरे जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में भी पता है, लेकिन मेरे अंदर क्या हो रहा है? तो अवेयरनेस अबाउट कि मेरे अंदर सारा दिन क्या चल रहा है, और स्पेसिफिकली जब मैं औरों के साथ

0: इंटरेक्शन में आते हो, संबंध संपर्क में आते हो, तो औरों के साथ व्यवहार करते हुए, बातचीत करते हुए मेरे अंदर क्या चल रहा है? क्योंकि ये एक बहुत ऑटोमेटिक प्रोसेस है. आपने कुछ कहा, मैंने उस बात को सुना, अंदर लिया, अब उसके साथ सुनने के बाद मेरे अंदर क्या चल रहा है? डू आई हैव अ चॉइस?
1: यहाँ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, यू नो, बिकॉज ये प्रोग्राम हमें पूरी सीरीज करते करते व्हेन आई गो आउट एंड व्हेन आई टॉक अबाउट टॉक टू योरसेल्फ, हम ये बात करते हैं कि अपने आप से बात करो, जो ज्यादा जवाब मिलता है वो ये कि अपने आप से बात करने में डर लगता है.
0: डर लगता है इसलिए, जैसे जिसको हम नहीं जानते हैं उनसे बात करने में डर लगता है. यू नो, हम कभी मिले ही नहीं है. सपोज आई हैव नेवर मेट यू एंड मैंने बहुत ज्यादा आपके बारे में कुछ मुझे पता ही नहीं है, और तब मैं सोचू क्या बात करेंगे, और अगर बैठू भी बात करने तो शायद कोई मैटर ही नहीं मिलेगा किस
1: अच्छा, और
0: चीज पर
1: दूसरी
0: बात
1: तरफ ये
0: करें.
1: भी लगता है कि क्योंकि अपने अंदर है तो बहुत इम्पोर्टेंट है,
0: राइट,
1: तो वो कहीं क्या निकलेगा उसमें से,
0: बिल्कुल
1: तो वो अच्छा होगा या बुरा होगा,
0: सही
1: क्या होगा,
0: बात
1: क्या
0: है.
1: कहेगा.
0: हाँ, क्योंकि बहुत समय से देखा नहीं है, कोई चीज को बहुत समय से झांक कर नहीं देखा, और अब अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है. लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी. और जैसे हम किसी को पहली बार मिलते हैं, हम बातचीत करते हैं, शायद बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता है बात करने के लिए, दो सेंटेंस तो बात कर ही लेते हैं, आप कैसे हो, आप ठीक हो आज. अगर सामने वाले ने ये भी कहा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो भी नो प्रॉब्लम, दो सेंटेंस की कम्युनिकेशन तो हो गई ना. इस तरह से कम अगर दिन में दो चार बार रुक के अपने आप से सिर्फ ये पूछा जाए, आप ठीक हो, कोई बात परेशान तो नहीं कर रही है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है.
1: अच्छा, कौन किससे पूछ रहा है?
0: सही बात है.
1: मैं अपने आप में अंदर किससे पूछ रही हूँ, या मैं बॉडी तो नहीं पूछ रही, कहीं ना कहीं मेरी जुबान पूछ रही है या मेरा दिमाग
0: जुबान
1: पूछ
0: भी नहीं पूछती, क्योंकि जब हम अपने आप से बात करते हैं तो हम इस मुख से बात नहीं
1: नहीं
0: करते,
1: करते हैं.
0: हम संकल्पों में बात कर रहे हैं ना.
1: थॉट्स.
0: द थॉट विल आस्क एंड द थॉट विल आंसर. सी,
1: ओके.
0: इट्स लाइक मैं ठीक हूँ, हाँ मैं ठीक हूँ, नहीं आज मैं इस बात से परेशान हो रही हूँ. अच्छा, कौन है कारण आपकी परेशानी का? टॉक.
1: चलो सोल्यूशन निकालते हैं.
0: यस,
1: वाओ, इट्स सो नाइस.
0: या आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, सो हु इज टॉकिंग? थॉट्स ओनली. तो एक थॉट ने क्वेश्चन किया, तुरंत थॉट ने उसको आंसर किया. अब बैठ के चेक करें क्या आंसर ठीक था. जैसे आप अगर आकर मुझे पूछे मेरी ये प्रॉब्लम है, तो मैं आपको फिर समझाऊंगी ना. वी से काउंसलर के पास हम जाते हैं, काउंसलर समझाता है नहीं आप ऐसे देखो, आप इस दृष्टिकोण से. और काउंसलर दे आर सो गुड, यू नो, एक तो वो हमें कभी क्रिटिसाइज नहीं करते, हमें कभी डांटते नहीं है, हमें एक्सेप्ट कर लेते हैं, और फिर एक कोशिश करते हैं कि हमें एक सही दिशा पर लेकर जाए.
1: यही तो मैं कह रही हूँ कि अपने आप से मैं ये डर लगता है कि हमें अपनी सारी नेगेटिविटी दिखेगी
0: कि
1: कि हम
0: वो एक
1: कितने गलत हैं.
0: जब हम सेल्फ टॉक की हम बात करते हैं, वो कभी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए. नेगेटिव तो हम करते ही आए हैं. मेडिटेशन मीन्स पॉजिटिव सेल्फ टॉक, क्योंकि नेगेटिव नहीं, मैं तो हूं ही ऐसा, मेरे से तो नहीं होने वाला, या फिर मैं तो हूं ही बेस्ट, मेरे से तो कोई गलती नहीं है, तो ये रियलिटी नहीं है. सेल्फ टॉक मतलब रियली अपने आप को, दोनों साइड्स को, स्ट्रेंथ्स को भी वीकनेसेस को भी पहचानना, फिर उनके आगे डिस्कशन अपने आप से.
1: अंतरात्मा, राइट
0: आत्मा ही तो बात कर रही है ना,
1: राइट.
0: आत्मा ही जब सोचने का काम करती है, हम उसको मन कहते हैं. एनर्जी है ना, द सोल इज एनर्जी, माइंड इज थॉट पावर, इट्स एनर्जी, ये कोई फिजिकल चीज नहीं है. तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ, उसको मन कहते हैं. तो मन ही तो, जिसको हम अंदर की आवाज कहते हैं, कॉन्शियसनेस, तो दिस इज द माइंड टॉकिंग. तो माइंड की अगर कोई जवाब ठीक नहीं लगता, तो उसको भी तो मैं ही ठीक करती हूँ. अभी भी जैसे सपोज मैं आपसे बात करूं, तो कौन उसको स्वीकार करेगा? कान थोड़ी कुछ कर सकते हैं,
1: माय माइंड.
0: इट्स द माइंड. अब सिर्फ ये है कि अब आपने मेरे थॉट को लिया और फिर उसको प्रोसेस किया, धीरे धीरे आपको मेरे थॉट की जरूरत नहीं, आप अपने थॉट को लेकर उसको प्रोसेस कीजिए, जब आप खुद को काउंसिल करना शुरू कर देंगे,
1: क्योंकि समवेयर द सोल एक्चुअली नोज ऑल द आंसर्स.
0: जब आप अंदर, क्योंकि एक्चुअली आपकी सिचुएशन को आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है, नॉट द बेस्ट काउंसलर एंड नॉट द बेस्ट साइकेट्रिस्ट, इट इज जस्ट यू एंड गॉड विद यू. यू नो, क्योंकि कोई भी जो एक फिजिकल बॉडी के अंदर है, एक ईगो के अंदर है, वो बहुत ज्यादा मुझे नहीं समझ सकता, क्योंकि वो एक खुद एक बैरियर है उसके पास, क्योंकि हमारा अपना ईगो एक बैरियर होता है. मैं आत्मा जब इस बैरियर से बाहर निकल कर अपने आप से बात करती हूँ, या परमात्मा से बात करती हूँ, क्योंकि उसके पास कोई वो बैरियर नहीं है, तब वो कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर है. बिल्कुल यू नो इट्स लाइक द ट्रूथ. बाकी दूसरों से हम राय ले सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग किसी से हेल्प लेना, किसी से राय लेना, लेकिन द डिसीजन शुड बी माइन.
1: अगेन आई वॉन्ट यू नो वाई व्हेन आई आस्क यू अ क्वेश्चन, मैंने जब आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मुझे पता है कि आप मुझसे वाइज हैं,
0: right.
1: तभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ और आपके पास जवाब है. क्या मेरी आत्मा के पास मेरे हर क्वेश्चन का जवाब है?
0: क्या मुझ आत्मा के पास मेरे हर क्वेश्चन का जवाब है?
1: आई द सोल,
0: यस.
1: क्या मुझ आत्मा के पास मेरे हर सवाल का जवाब है?
0: हर क्वेश्चन का.
1: अच्छा,
0: हर क्वेश्चन का, क्योंकि आत्मा इज द ट्रूथ, इट्स द यूनिवर्सल ट्रूथ. इट्स जस्ट दैट वो थोड़ा सा डोमेंट है. जितना जितना हम उस अवेयरनेस में आते जाएंगे कि दिस इज हु आई एम, ईगो जितना जितना खत्म होता जाएगा, वो आवाज बिल्कुल एक राइट आंसर देगी.
1: ईगो पे भी आते हैं, क्योंकि ईगो इज अ बिग इश्यू.
0: देखो सारा दिन में एक्चुअली, जैसे हमने मन की बात की, सारा दिन में हम जो काम कर रहे हैं वो थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं. यू नो हमें अपने, हमें किस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज आई वुडंट नो कि, बिकॉज अवेयरनेस डजेंट मीन मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं. दैट इज नॉट अवेयरनेस ओनली. अवेयरनेस इज सारा दिन मेरे अंदर क्या प्रोसेस चल रहा है. एक मशीन है, एक अंदर जो काम कर रही है, एक प्लांट लगा हुआ है, मेरे को उसका प्रोसेस पता चलना चाहिए. अभी आई एम अवेयर ऑफ द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट है ये पर्सनालिटी, प्रोडक्ट है ये व्यवहार, प्रोडक्ट है मेरा आपसे बात करने का तरीका. लेकिन मैं आपसे इस तरह से क्यों बात कर रही हूं? सपोज आपसे मैं अभी गुस्सा करने लगूं, ये एक प्रोडक्ट है, लेकिन इसके पीछे एक प्रोसेस हुआ है, कोई रीजन है जो मैं आपसे इस समय उस तरह से बात करूं. तो मैं उस प्रोसेस को न जानने के कारण सिर्फ प्रोडक्ट को देखती हूं और परेशान होते जाती हूं, इसको कैसे ठीक करूं, मुझे इस प्रोडक्ट को ठीक करना है. प्रोसेस को जानना पड़ेगा.
1: अच्छा, बहुत ही सुंदर. मतलब ये है कि हम जब जो भी हम कुछ रिएक्ट कर रहे हैं या एक्ट भी कर रहे हैं, उसका वो रिजल्ट है जो अंदर हमारे बहुत कुछ चला है.
0: एंड दैट स्टार्ट्स विद द थॉट.
1: ओके,
0: यू नो एवरी प्रोसेस इट स्टार्ट्स विद द थॉट. एंड जैसे ही हम एक थॉट क्रिएट करते हैं, बिकॉज लेट्स सी द प्रोसेस हाउ इट गोज, कि ये प्रोडक्ट बनता कैसे है. सबसे पहले मन में एक संकल्प उठता है, है ना? कोई भी बात आती है सामने, परिस्थिति आती है, आप व्यक्ति आता है, एक संकल्प उठता है. क्वालिटी कुछ भी हो सकती है, लेकिन इट स्टार्ट्स विद अ थॉट. और जैसे ही एक थॉट आता है, उसका इमीडिएट क्या बाय प्रोडक्ट होगा?
1: एक रिएक्शन.
0: रिएक्शन बाहर आएगा. अगेन देयर इज अ प्रोसेस बीच में. रिएक्शन जो बाहर आएगा, जो एक बोल होगा या एक कर्म होगा, दैट्स द फाइनल प्रोडक्ट.
1: लेकिन वी थिंक कि थॉट इज लाइक स्ट्रेट अवे,
0: थॉट इज इनटू एक्शन. नो, थॉट इज नॉट इनटू एक्शन. देयर विल बी लिटिल स्टेप्स पहले, एंड देन वो एक्शन के रूप में आएगा. okay. है ना? तो सबसे पहले जब एक थॉट आती है, एक संकल्प आता है, इमीडिएटली डिपेंडिंग ऑन वो क्वालिटी ऑफ थॉट क्या है, एक फीलिंग उत्पन्न होती है. यू नो, जैसे एक थॉट आई कि कनुप्रिया इज अ नाइस पर्सन, एक थॉट है. एंड जैसे ही वो थॉट क्रिएट की, गुड फीलिंग, आई फील लाइक मीटिंग हर. कनुप्रिया इज नॉट अ नाइस पर्सन, आई डोंट फील लाइक मीटिंग हर. इमीडिएट है कि मैं अवॉइड करके कहीं और से चले जाऊं, क्योंकि मेरी थॉट आई के. सो जैसे ही एक थॉट उत्पन्न हुई, एक फीलिंग आ जाएगी. इमीडिएट है ये, बहुत फास्ट हो जाता है. और जितनी मेरी सारी फीलिंग्स होंगी आपके बारे में, किसी के भी बारे में, एक समस्या के बारे में, पूरे विश्व के बारे में, तो ऑल माई फीलिंग्स पुट टूगेदर विल डिवेलप माई
1: एक्शन.
0: दैट ऑल्सो लेटर. जस्ट माई फीलिंग्स विल डिवेलप माई वॉट टूवर्ड्स यू.
1: एटीट्यूड. ओके.
0: इज इट अ पॉजिटिव एटीट्यूड? इज इट अ नेगेटिव एटीट्यूड? इज इट वट एवर काइंड ऑफ एन एटीट्यूड?
1: वन थॉट इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ फीलिंग्स. नो, लॉट ऑफ थॉट.
0: अ लॉट ऑफ टाइम ना. बहुत बार मैंने आपके बारे में सोचा है. देखो एटीट्यूड पहली बारी में नहीं बनता.
1: इट टेक्स टाइम.
0: लेकिन कई बार मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा, कई बार ऐसा सोचा, तो फिर थोड़े टाइम के बाद एक एटीट्यूड बन गया. ये ऐसे ही है. अब उस एटीट्यूड को चेंज करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अब वो बन गया है. सी दैट्स द प्रोसेस. पहले जब थॉट्स था, थॉट को चेंज करना बहुत इजी है. इट्स जस्ट इन द बिगिनिंग स्टेज. जैसे जैसे वो एक प्रोसेस से गुजरता जाएगा, इट्स गोइंग टू बिकम अ लिटिल हार्डर. तो पहले संकल्प आया, जो संकल्प आया वो एक भावना उत्पन्न हुई, एक फीलिंग. एंड सारी मेरी जो भावनाएं आपके बारे में है, दैट डेवलप्स माई एटीट्यूड. मेरी वृत्ति आपके बारे में क्या वृत्ति है, और जो मेरा एटीट्यूड होगा वो फिर
1: एक्शन.
0: चाहे वो एक बोल के रूप में आएगा, एक कर्म के रूप में आएगा, लेकिन वो एक एक्शन के रूप में आएगा. और अगर मैं कोई भी कर्म बार बार रिपीट करती हूँ, कोई भी बोल बार बार करते हो, जैसे गुस्सा करना बार बार बार बार करते हो, तो धीरे धीरे इट बिकम्स माय
1: डेस्टिनी.
0: नो, पहले जस्ट द एक्शन, आई रिपीट इट नंबर ऑफ टाइम्स, इट बिकम्स माय हैबिट.
1: हैबिट यस,
0: है ना, एक आदत बन जाती है. झूठ बोला एक बार, दो बार, चार बार, दस बार, फिनिश्ड. आफ्टर दैट इट्स माय हैबिट. अभी वो करना बहुत नेचुरल हो गया है,
1: आसान है,
0: है ना, तो आदत बन गई. और अब जो मेरी सारी आदतें हैं, ऑल माय हैबिट्स पुट टुगेदर इज माय ओवरऑल पर्सनालिटी. दैट्स माय पर्सनालिटी, दिस इज मी. ये मेरी सारी आदतें हैं, ये मैं हूं,
1: ये बाहरी मैं हूं. अब मैं बाहर आने लग गया,
0: अब मैं बाहर आने लग गई ना, आदत से लेकर मैं बाहर आई, एक्शन से. एक्चुअली संकल्प अंदर आया, भावना अंदर उत्पन्न हुई, वृत्ति दृष्टि वो अंदर बनी, फिर जब वो कर्म में आया तब बाहर हुआ प्रोसेस. और कोई भी कर्म बार बार रिपीट किया वो मेरी आदत बन गई. और सारी मेरी आदतें टुगेदर माय पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व, दिस इज मी. और यही व्यक्तित्व फिर जब हर स्टेप पर जाता है, हर रोल प्ले करता है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, कर्म में जाता है, ऑफिस जाता है, घर जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पर्सनालिटी एट एवरी स्टेप, देन आई विल क्रिएट माय डेस्टिनी, मेरा भाग्य. जो अभी तक हम समझते थे कि मेरा भाग्य कहीं और से कंट्रोल होता है, कि पता नहीं मेरा भाग्य क्या है, या भगवान ने पता नहीं मेरे भाग्य में क्या लिखा है, हमारा भाग्य हम खुद निर्माण करते हैं,
1: हमारे अपने एक थॉट से आता है.
0: बिल्कुल, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनालिटी, डेस्टिनी. कितना सिंपल है. और जब ये समझ में आ जाता है कि हर जो संकल्प हम कर रहे हैं वो मेरा व्यक्तित्व निर्माण कर रहा है, और जैसा मेरा व्यक्तित्व होगा वो मेरा भाग्य निर्माण करता है. आप देखो कोई भी स्टेप पे आप उस समय जो डिसीजन लेंगे, आपका जो व्यक्तित्व होगा, आपका भाग्य परिवर्तन हो सकता है. आप किसी से मिले, उनका मूड अच्छा नहीं था, अगर आपकी भी संकल्प उस टाइम नेगेटिव है और आपने भी गुस्सा कर दिया, दूर हो गए, भाग्य बदल गया. अगर आपने उस टाइम उनको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उनसे प्यार से बात कर ली, जुड़ गए, भाग्य परिवर्तन हो गया एक संकल्प से. दिस इज सेल्फ अवेयरनेस.
1: हियर आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन. सी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, हम ये बात कर रहे हैं कि एक थॉट या थॉट्स जो हैं वो हमारी डेस्टिनी तक एक पूरा प्रोसेस है, उसमें कुछ अंदर चल रहा है, कुछ बाहर तक आ जाता है, आदत पे आके हम बाहर आते हैं. एक बात ये भी कही जाती है कि नेगेटिव, इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव थॉट
0: राइट,
1: यू नो, ये तो एक समझ में आती है बात. आई मेट अ पर्सन जो कहता है कि नेगेटिव थॉट्स, मुझे उससे जेलसी थी, तो मुझे लगा कि उसको गाड़ी चलानी आती है तो मैं, मेरे को क्यों नहीं आती, तो मैंने इससे मेरा प्रोसेस शुरू हुआ, मैंने तो इट मीन्स इट वॉज अ नेगेटिव थॉट, उसने गाड़ी चलानी सीख ली, और तो रिजल्ट तो उसने मुझे जब जवाब दिया वो कहता है कि रिजल्ट तो मेरा ये हुआ कि मैं गाड़ी चलाना तो सीख गया इस पूरे प्रोसेस.
0: वो एक अलग बात है, एक इंस्पिरेशन और जेलसी में अलग बात हो गई. आपको कुछ आता है, जैसे कहा आपको गाड़ी चलानी आती है, एंड इफ आई टेक इट एज एन इंस्पिरेशन, देखो सी दिस इज ऑल्सो द प्रोसेस, कि आपने बाहर गाड़ी चलानी तो सीख ली, लेकिन अंदर का मोटिवेटिंग एनर्जी की क्वालिटी क्या थी. सेल्फ अवेयरनेस इज नॉट कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, बाहर तो हम बहुत कुछ अचीव कर रहे हैं आज, लेकिन अंदर क्या हो रहा है.
1: और एक्चुअली अंदर वो पूरा ही फिर प्रोसेस जो है, क्योंकि वो जेलसी जो थी वही एक नेगेटिविटी और बढ़ती गई होगी, डेस्टिनी क्रिएट होगी.
0: तो आपने गाड़ी तो सीख ली, लेकिन शायद उस व्यक्ति से बहुत दूर हो गए, और अपनी क्वालिटी ऑफ एनर्जी जो अंदर उत्पन्न हुई उसकी क्वालिटी क्या थी. तो उसने मेरी स्टेट ऑफ माइंड को उन कुछ दिनों के अंदर कैसा बना के रखा होगा. तो मेरी खुशी, गाड़ी भी क्यों सीख रहे हैं, एक्चुअली खुशी देगी, लेकिन उसका मोटिवेटिंग फैक्टर ही खुशी नहीं है. तो समवेयर डाउन द लाइन इट वोंट गिव मी दैट हैप्पीनेस दैट आई एम लुकिंग फॉर. एक इंस्पिरेशन के रूप से अगर उसको ले लेते, सेम चीज, उसको एक इंस्पिरेशन के रूप से ले लेते, देखो इनको गाड़ी आती है, कितना आराम से ये हर जगह जा सकते हैं, मैं भी अगर गाड़ी सीख लूं तो मेरी लाइफ भी बहुत इजी हो जाएगी. स्टार्ट एंड लुक एट देम एज एन इंस्पिरेशन, जस्ट अ माइंड शिफ्ट, नथिंग एल्स, बाकी सारा कुछ सेम रहता है, जस्ट द क्वालिटी ऑफ द रॉ प्रोडक्ट.
1: सिस्टर शिवानी, इट्स लाइक इट एक्चुअली व्हेन आई टॉक हियर मुझे लगता है बहुत आसान है, लेकिन द मोमेंट यू स्टेप आउट, नो आई एम टेलिंग यू, इट बिकम्स सो डिफिकल्ट, बिकॉज नेगेटिविटी डज कम, नेगेटिव थॉट आता ही है. और हम अपने आप को, हमारे सारे दर्शक भी कहीं ना कहीं कोशिश ये करते हैं कि, क्योंकि हम इतना सुनते आ रहे हैं बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, लेकिन वो बाहर से तो पॉजिटिव रहने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ये इंटरनल प्रोसेस जो है
0: वो, क्योंकि हमें जैसे आपने कहा नेगेटिव थॉट तो आता ही है, नेगेटिव थॉट का सोर्स क्या है, संकल्पों को परिवर्तन करने के लिए संकल्प का स्रोत पता होना चाहिए. व्हाट इज द सोर्स ऑफ माय थॉट्स, थॉट्स किस चीज से उत्पन्न हो रही हैं. तीन फैक्टर्स प्ले करते हैं, एक तो पास्ट एक्सपीरियंस, अगर मैं कई बार आपसे मिली हूं और क्या मेरा अनुभव रहा है पहले, तो वो अनुभव के आधार से जब आप अब सामने आएंगे तो वही थॉट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा. तो पास्ट एक्सपीरियंसेस थॉट्स को क्रिएट करते हैं.
1: तो पहला अनुभव जो है वो काफी कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन एट टाइम्स,
0: दैट्स व्हाई, बिकॉज वो फर्स्ट इम्प्रेशन इतना डीप हो जाएगा कि नेक्स्ट टाइम आई डोंट टेक द ट्रबल ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू इम्प्रेशन. इट्स एक्चुअली नॉट रियली फर्स्ट इम्प्रेशन, लेकिन हम एक नया इम्प्रेशन क्रिएट ही नहीं करते, हम उस फर्स्ट इम्प्रेशन के आधार पर ही चलते हैं, धीरे धीरे वो बहुत पक्का हो जाता है. सेकेंड सोर्स इज इन्फॉर्मेशन. हम सारा दिन चारों तरफ से जो सुनते हैं पढ़ते हैं भरता जाता है. एंड टूडे द क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नेगेटिव. न्यूज़पेपर उठा लिया, ज्यादातर नेगेटिव. टेलीविजन ऑन कर लिया, लोगों से बात भी कर ली तो बातें भी ज्यादातर नेगेटिव. तो अगर भोजन की क्वालिटी नेगेटिव होगी तो उससे जो शक्ति निर्माण होगी वो नेगेटिव होगी. और तीसरी है बिलीफ सिस्टम, मान्यताएं. हम क्या मान्यताएं लेकर इस जीवन में चल रहे हैं. तो वो तीन फैक्टर्स, पास्ट एक्सपीरियंस, इन्फॉर्मेशन एंड बिलीफ सिस्टम, ये तीन चीजों के आधार पर संकल्प उत्पन्न होते हैं. अगर नेगेटिव आ रहे हैं तो इन तीनों में से चेक करना पड़ेगा.
1: ये हमारे ही हाथ में है कि हम कैसे चेक करें.
0: एब्सोल्युटली, इसको हम चेक करते हैं. अगर लाइक सबसे सिंपल है, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन लेना शुरू कर दें, बिलीफ सिस्टम को चेक करके चेंज करना शुरू कर दें, थॉट्स की क्वालिटी चेंज हो जाएगी.
1: बिल्कुल. लेकिन सिस्टर शिवानी, एक और बात यहाँ पे, क्योंकि अब वक्त नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि अगर हम एक बार अवेयर हो गए, अगर हम जान गए कि ये पूरा प्रोसेस जो हमारे अंदर भी चल रहा है, देयर इज अ टॉक विद इन अस, उसको कॉम्बैट कैसे किया जा सकता है, क्यों तब भी उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आती
0: है? मतलब ये है, चल रहा है, हम सुन भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसको कभी कभी फॉलो नहीं करते, क्योंकि बीच में जो चीज आ जाती है वो है ईगो, अहंकार, अहम. मुझे समझ भी आ रहा है कि मुझे इस टाइम गुस्सा नहीं करना चाहिए, समझ आ रहा है, दैट इनर वॉइस इज टेलिंग मी डोंट, इट्स वेरी डैमेजिंग, लेकिन क्यों मैं गुस्सा क्यों नहीं करूं, दैट अहंकार, ईगो, अहम, ये बीच में आ जाता है.
1: वंडरफुल. सो ईगो अगर देखा जाए आज के वक्त में, वो भी एक बहुत बड़ा इशू है. आज हमने उन इश्यूज को समझा जो जहां से शुरुआत करनी है. मैं सामने आया कि हु एम आई एंड हाउ टू बी अवेयर ऑफ माई सेल्फ. सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू.
1: आपको बताना चाहे कि हु एम आई आज हमने तलाशने की कोशिश की. हमने ये भी जाना कि किस तरह से पॉजिटिव थॉट मेरी डेस्टिनी लिख सकते हैं. कुछ हमारे अंदर चल रहा है, कुछ बाहर आता है. जो अंदर चल रहा है, पॉजिटिव थॉट जनरेट किस तरह से कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमें पॉजिटिव थॉट जनरेट करना चाहिए. ये एक पूरा प्रोसेस है, वक्त लगेगा, एक सेकेंड में नहीं होंगी चीजें, लेकिन हमें पहला कदम तो उठाना ही होगा. हो सकता है आपके पास कोई सवाल हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आपका स्वागत है. आप हमें फोन कर सकते हैं, ईमेल द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं. हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com. तो फिर अगली कड़ी में जानेंगे कि ईगो को कैसे कॉम्बैट करें, ईगो से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं और कैसे अपनी ईगो को पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब दीजिए इजाजत, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी से फिर होगी मुलाकात. नमस्कार.

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था, नहीं आ रहा था, नहीं नहीं जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो छपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ से, वो पीछे, अरे बचाओ, अरे बचाओ। मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाल दाल, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ बचाओ, अरे भागो, अरे भागो, अरे

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या, यहां नहीं कर सकते। क्यों स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई, क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप जाइए वहां, वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर। मैं स्मिता जयकर, खुश रहो, खुशियां बांटो।

आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

वतन का राग के श्रोताओं को हमारा नमस्कार और आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग। 1857 का स्वाधीनता संग्राम जिसकी शुरुआत हुई थी मेरठ से। दरअसल मेरठ में नेटिव सिपाहियों की एक पूरी राइफलमैन्स बटालियन थी, इसके अलावा एक रेजिमेंट और एक तोपखाना भी, यानी अंग्रेजों की नजर में एक ऐसी जगह जहां से संग्राम की शुरुआत हो ही नहीं सकती थी। मगर संग्राम हुआ अभूतपूर्व और अकस्मात। अंग्रेज इसके लिए तैयार नहीं थे, वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए। सैनिकों की तमन्ना थी इस संग्राम को राष्ट्रीय क्रांति का रूप देने की। एक लंबी साधना का पहला चरण तय हो चुका था।

0: अभी आप सुन रहे थे मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित एक देशभक्ति गीत।
1: ये वतन का
0: 10 मई 1857 को मेरठ से चला सैनिकों का काफिला 11 मई की अल सुबह दिल्ली पहुंच गया। सुबह की रोशनी में चमकते पावन यमुना के जल में प्रतिबिंबित हो उठा इतिहास का वो लम्हा जिसने आजादी के संग्राम की तस्वीर ही बदल दी। दिल्ली के तख्त का गौरव लौटा, बहादुर शाह जफर बादशाह घोषित कर दिए गए। दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोही स्वर उठने लगे। अंग्रेजी सेना को मजबूरन रिज के इलाके में सिमटना पड़ा और फिर 3 महीने तक क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को नाकों चने चबवाए। उसके बाद एक बार फिर लाहौरी गेट, कश्मीरी गेट और दिल्ली के तख्त पर अंग्रेजों का कब्जा हुआ। भले ही बहादुर शाह जफर ने हुमायूं के मकबरे पर जाकर आत्मसमर्पण कर दिया, मगर फिर भी क्रांति की लौ निरंतर जलती रही। हर शख्स के जहन में एक ही ख्वाब था, स्वराज। हर शख्स के दिल में एक ही तमन्ना थी, आजादी।

0: अभी आपने सुना एक गीत जिसे लिखा था मुजफ्फर ने।
1: वतन का राग।
0: स्वधर्म और स्वराज्य, यही संकल्प था 1857 के रण यज्ञ का। गुलामी की बेड़ियां तोड़ना ही था, आजादी का झंडा लहराना ही था। एक छोटा सा दिखने वाला संग्राम राष्ट्रीय क्रांति का रूप लेने लगा। अंग्रेज इतिहासकार अर्नेस्ट जोन्स ने लिखा था कि हिंदुस्तान के संग्राम के बारे में सारे यूरोप में सिर्फ एक ही राय होनी चाहिए। विश्व में जितने भी संग्रामों की चेष्टा की गई है, उनमें ये सबसे ज्यादा न्यायपूर्ण, शालीन और जरूरी संग्राम था। अंग्रेज इतिहासकार का ये स्वीकार्य एक तरह से आजादी के पहले संग्राम को सलाम करता था। जय हो भारत, जय हो मातृभूमि।

अभी आपने जो गीत सुना उसके रचयिता थे राष्ट्रकवि मैथिली शरण को। अभी आपने सुना कार्यक्रम वतन का राग। गायक कलाकार थे अभिषेक नागराज, सावेरी सत्यार्थी, मृदुल घोष, अजीत तिवारी, राहुल तिवारी, तापसी नागराज और श्रीधर नागराज। संगीतकार थे तापसी श्रीधर नागराज। आलेख और उद्घोषणा सुधा अनुपम, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय। आज के इस कार्यक्रम में आपने जो गीत सुने उन्हें हमने लिया था स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जन गर्जे श्रृंखला के अंतर्गत जारी ऑडियो एल्बम्स से।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: जैसे गुस्सा एक एनर्जी है, खुशी भी एक एनर्जी है। जैसे कोई मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, वैसे कोई मुझे खुशी भी नहीं दिला सकता। ये एक एनर्जी है जो

0: मेरे अंदर है और बाहर की कोई भी फिजिकल चीज, एक कार, एक बंगलो, एक डेजिग्नेशन, वेरी बिग सैलरी फिगर या एक व्यक्ति, वो मेरे अंदर उस एनर्जी को नहीं क्रिएट कर सकता है. दैट एनर्जी कैन ओनली बी क्रिएटेड बाय मी. बट व्हाट आई डू इज कि उस चीज को लेकर आई कैन क्रिएट दैट एनर्जी. ये लैपटॉप है तो लैपटॉप मेरे अंदर हैप्पीनेस नहीं क्रिएट कर सकता. ये एक फिजिकल चीज है, ये एक एनर्जी है. ये फिजिकल चीज उस एनर्जी को नहीं क्रिएट करता. बट द थॉट दैट आई क्रिएट, नाउ आई हैव अ लैपटॉप, यू नो, ये थॉट जो क्रिएट कर ली, ये थॉट वो पॉजिटिव एनर्जी को क्रिएट कर देता है. तो सबसे पहली रियलाइजेशन ये है कि कोई भी बाह्य चीज या व्यक्ति उस फीलिंग को नहीं क्रिएट कर रहा है, मेरी अपनी थॉट्स. क्योंकि हमने चेन में देखा कि थॉट गिव्स राइज टू फीलिंग, नथिंग एल्स. कोई भी और चीज वो फीलिंग नहीं क्रिएट कर सकती है. तो नाउ इट्स इन माई हैंड कि लैपटॉप लाने के बाद में उस अच्छी फीलिंग को क्रिएट करूं या बिना लैपटॉप के भी उसको क्रिएट कर लूं, या वेट करती रहूं, एक साल सेव करती रहूं कि जिस दिन लैपटॉप आएगा तब वो अच्छी वाली फीलिंग क्रिएट करूं. यू नो इट्स इन माय हैंड कि मैं कितना देर खुश रहना चाहती हूं. डू आई वांट देन, नाउ व्हाट हैज हैपेंड, हैप्पीनेस वी हैव मेड इट वेरी टेम्पररी कि ये होगा तो खुशी. दैट्स बिकॉज जब वो चीज होती है हम अपने आप को उस तरह की अच्छी थॉट्स देते हैं, अच्छी फीलिंग आती है. लेकिन जब हमें समझ में आ जाता है कि ये मेरी अपनी क्रिएशन है एंड आई कैन क्रिएट इट व्हेन, वेयर एवर एंड फॉर हाउ एवर लॉन्ग आई वॉन्ट, सो देन इट्स माई चॉइस. सो नाउ इट्स योर चॉइस. आप जितनी देर खुश रहना चाहते हैं, क्रिएट इट.
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM. खुश रहो, खुशियां बांटो.

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति एंड वेलकम टू बीइंग शक्ति।
2: थैंक यू सो मच।
1: लास्ट टाइम मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ तो किसी को एक्सेप्ट कर लो या उसे छोड़ के आप चले जाओ।
2: राइट right.
1: ठीक है, लेकिन छोड़ के चले जाने पर एक और चीज मुझे दिखी, नेवर लीव अ ट्रू रिलेशन फॉर फ्यू फॉल्ट्स। नोबडी इज परफेक्ट एंड एट द एंड affection is always greater than perfection.
2: Affection is greater than perfection. लेकिन हमने आज प्रायोरिटी चेंज कर दी है। हम सारा दिन परफेक्शन ढूंढ रहे हैं, चाहे लोगों में परफेक्शन, चाहे सिचुएशंस में परफेक्शन, चाहे काम किस तरह किया जाए उसमें परफेक्शन। एंड वो परफेक्शन ठीक है, हमें अपना बेस्ट करना था, लेकिन वो परफेक्शन ढूंढने के प्रोसेस में हम अपनी अफेक्शन को ब्लॉक कर देते हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपनी परफेक्शन की स्थिति से हिल जाते हैं। वी शिफ्ट ना, वी वर परफेक्ट, वी नीड टू कम बैक टू परफेक्शन। लेकिन औरों को परफेक्ट बनाने के प्रोसेस में या औरों से परफेक्शन एक्सपेक्ट करने के प्रोसेस में हम अपनी परफेक्शन से कितना दूर होते जाएंगे। एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट अपने अफेक्शन, प्यार की एनर्जी ब्लॉक होती जा रही है। तो थोड़ी सी इक्वेशन को सिर्फ चेंज करना पड़ता है। दीज आर इक्वेशंस ऑफ वे ऑफ लिविंग। ये इक्वेशन ऑपोजिट हो गई तो जीवन की क्वालिटी ऑपोजिट हो गई। आज हमारी इक्वेशन होनी चाहिए थी कि मेरे मन की स्थिति, लोगों के मन की स्थिति, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, फिर इसके बाद जो काम हम कर रहे हैं। तो प्रायोरिटी वो होनी थी। आज हमने कहा काम परफेक्ट होना चाहिए, हम डिस्टर्ब हुए तो कोई बात नहीं, सामने वाला डिस्टर्ब हुआ तो कोई बात नहीं, काम तो परफेक्ट होना चाहिए था ना। तो काम को ऊपर प्रायोरिटी दे दी।
1: रिजल्ट ओरिएंटेड,
2: रिजल्ट ओरिएंटेड, बट रिजल्ट ऑफ व्हाट? रिजल्ट ऑफ द वर्क दैट वी वर डूइंग, नॉट रिजल्ट ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द वर्क। आज अगर हम देखें, चाहे ऑफिसेज हैं, चाहे घर में स्टाफ से आपने कहा, चाहे बच्चों से, काम हो जाए, चीजें हो जाए, सब सही हो जाए, उसके प्रोसेस में मेरे मन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाए, सामने वाले के मन की स्थिति डिस्टर्ब हो जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि प्रायोरिटी वॉज काम हो जाए। इक्वेशन उस डायरेक्शन में चली गई, आज काम हो गए, अचीव कर लिया इतना कुछ, प्रोग्रेस इतनी सारी कर ली, लेकिन प्रोग्रेस एट व्हाट कॉस्ट? ये प्रोग्रेस एक बहुत बड़ी कीमत लेके आई है अपने साथ, बिकॉज इस प्रोग्रेस को करते समय हमने अपनी स्थिति को और सामने वाले की स्थिति को प्रायोरिटी नहीं रखा कि हाउ आई एम फीलिंग, हाउ यू आर फीलिंग, इट डजेंट मैटर, आई विल शाउट, यू विल गेट हर्ट, इट डजेंट मैटर, वर्क शुड गेट डन, काम हो जाना चाहिए। मैंने गुस्सा किया तो क्या हुआ, आप हर्ट हुए तो क्या हुआ, आपको हर्ट होना इज फाइन, आपकी गलती थी और आपने गलती की तो मेरा गुस्सा करना नेचुरल था। ये सब इक्वेशंस बना के प्रोग्रेस अचीव की, बट इट हैज कम एट अ वेरी बिग कॉस्ट। वी लॉस्ट आवर हैप्पीनेस, हेल्थ एंड ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स जस्ट टू अचीव दिस प्रोग्रेस।
1: बट यहाँ परफेक्शन में जो चाहते हैं हमें किसी
2: व्यक्ति के अंदर परफेक्शन,
1: हाँ, हस्बैंड वाइफ से, वाइफ हस्बैंड से, तो वो परफेक्शन एक्चुअली मैं अपने अंदर नहीं ढूंढ रहा हूँ कि एम आई परफेक्ट।
2: वो इसलिए हम अपने अंदर नहीं ढूंढ रहे हैं क्योंकि हमने सोचा मेरा मन परफेक्ट रहे, मेरा मन परफेक्ट रहे,
1: मतलब मेरा मन नॉन अनडिस्टर्ब रहे, डिस्टर्ब ना,
2: मतलब स्टेबल रहे, परफेक्ट रहे, वो तो तभी होगा ना जब सब मेरे अनुसार सही चलेगा।
1: ओके, बट दैट इज नॉट पॉसिबल,
2: बट दैट्स नॉट ट्रू,
1: बट दैट्स नॉट

0: पॉसिबल ऑल्सो ना,
1: ट्रू ऑल्सो,
0: क्योंकि मुझे हर एक को लगेगा ही नहीं कि मेरे अनुसार चल रहे हैं.
1: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरे मन की स्थिति उन पर डिपेंडेंट है ही नहीं. इट्स नॉट ट्रू.
0: क्यों?
1: क्योंकि मेरे मन की स्थिति तो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है.
0: कमाल कर रहे हैं.
1: क्यों?
0: मैं आपसे बात करते करते उठ के चला जाऊँ.
1: हाँ,
0: तो बोलेंगे ये शूटिंग छोड़ के कहाँ चले गए.
1: हाँ, तो मैं बोलूंगी ये शूटिंग छोड़ के चले गए, कोई बात थी.
0: इट्स नॉट सो सिंपल इन लाइफ.
1: इट्स मोर सिंपल.
0: मैं बोलूंगा ये प्रोफेशनलिज्म है, कोई तरीका है, कुछ बोल के तो जाओ, दिमाग तो नहीं खराब हो गया, उठ के चले गए बैठे बैठे. व्हाट्स हैपनिंग हियर?
1: ये दोनों ऑप्शंस पॉसिबल है ना.
0: दिस इज नेचुरल व्हाट आई एम टॉकिंग.
1: एनीबडी वुड डू फॉर मी व्हाट आई एम टॉकिंग. बट वी कैन शिफ्ट फ्रॉम दिस टू व्हाट सेकेंड ऑप्शन वी हैव क्रिएटेड राइट नाउ. आप भी कर सकते हैं, अब भी कर सकते हैं, अब भी. ये भी नहीं कि 10 दिन बाद या साल बाद.
0: कैसे?
1: चूज करें कि अब नेक्स्ट टाइम जब कोई गलती करेगा या कोई एकदम से उठ के चला जाएगा या कोई अनप्रोफेशनल बिहेव करेगा, आई विल जस्ट टॉक अबाउट इट विद कामनेस,
0: पीस,
1: फाइंड आउट क्या हुआ, क्यों ऐसा किया, एंड उनको डायरेक्शन कि नेक्स्ट टाइम आपको ऐसा नहीं करना है. मेरे मन की स्थिति उनके चॉइस से नहीं, मेरी चॉइस से चलती है. उनको परफेक्ट बनाने में, उनके अंदर परफेक्शन ढूंढने में, उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म ढूंढने में, ये सब कुछ करने में मैं हिल जाऊं तो देन इट्स नॉट वर्थ इट. हाँ, मैं स्थित होकर फिर उसको ढूंढूं और करवाऊं, दैट्स द वे टू डू इट. ये भी नहीं है कि फिर मैं अपनी स्थिति में स्थित हो जाऊं तो कोई काम करे नहीं करे, ठीक करे नहीं करे, आई विल नॉट से एनीथिंग. That's also not the way. इसीलिए हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ साथ साथ. प्रैक्टिकल लाइफ जी रहे हैं और स्पिरिचुअल नहीं है, मतलब आत्मा अपनी ओरिजिनलिटी पे स्थित नहीं है, उसमें भी मजा नहीं है. सारा दिन सिर्फ कहेंगे मेडिटेशन कर रहे हैं, पीसफुल रहेंगे, लेकिन कर्म में नहीं आएंगे, उसका भी मजा नहीं है.
0: डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं फिर आप दुनिया से कि भाई जो होए होए, कोई गलत कर रहा है करे, ऐसे थोड़ी होना है. आपने जो बोला अभी कि प्रैक्टिकल लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को लाना है.
1: हाँ, स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिकल बनाना है.
0: हाँ, तो प्रैक्टिकल लाइफ में लाना है मतलब उस तरह से जीना है,
1: वो ही जीवन जीने का तरीका बनेगा. अभी डिफरेंट तो, क्यों करा
0: तो सिंपल टर्म में, जिससे इफ आई एम राइट, अब बताइए कि पहले मैं ये सोचूं कि ये भी एक सोल है, मैं भी एक सोल हूँ, बोथ आर डूइंग देयर रोल्स, प्लेइंग देयर रोल्स,
1: राइट.
0: तो यहाँ से शुरू करें,
1: यहाँ से शुरू करें, एंड फिर मेरे जीवन का लक्ष्य है, पर्पस ऑफ माय लाइफ, कि मैं आत्मा अपनी स्थिति को भी परफेक्ट रखूं. ये मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर मेरी स्थिति से मैं औरों की स्थिति को भी ठीक रखूं, ये मेरी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. फिर हम दोनों मिलके परिस्थिति को ठीक करें, ये हमारी थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी.
0: वेरी नाइस.
1: रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रायोरिटी शुड बी सेट, सेल्फ, पीपल एंड देन वर्क. आज प्रायोरिटी क्या हो गई?
0: वर्क,
1: फिर पीपल, फिर सेल्फ. ऑर्डर चेंज हो गया.
0: वर्क फिर पीपल है. वर्क वर्क वर्क then people, then.
1: तो वो वर्क वर्क वर्क में इतना
0: comes.
1: Yes. So, जितना हम स्टेबिलिटी में स्थित रहेंगे, हमारी वाइब्रेशन से काम होते हैं. हमारी वाइब्रेशन सिर्फ लोगों पे नहीं, प्रकृति पर, जड़ चीजों पर, हर सिचुएशन पर असर डालती है. डिस्टर्ब्ड वाइब्रेशन से जब हम काम करते हैं तो काम पे भी उसका असर पड़ता है. जो काम में एक स्मूथनेस होनी चाहिए खत्म होती है. हम एक मेहनत करके काम करते हैं, जिसके लिए परमात्मा कई बार हमें लाइन सुनाते हैं कि मोहब्बत में अगर रहोगे, लव योर सेल्फ एंड लव गॉड, अगर मोहब्बत में रहकर करोगे तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा मिलेगी. आज मेहनत ज्यादा, सफलता कम. बहुत मेहनत करनी पड़ती है इतनी सफलता प्राप्त करने के लिए आज, क्योंकि वी आर नॉट अलाइंड विद द सेल्फ. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिस्ट बहुत क्लियर होनी चाहिए. सेल्फ का ध्यान रखना मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लोगों का ध्यान रखना मेरी सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और फिर मिलकर हम काम का ध्यान रखेंगे. तो हम रियली कलयुग से सत्ययुग की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. इट विल शिफ्ट एंड वी कैन ऑल डू इट. और इसीलिए जैसे उसने कहा, अफेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन.
0: ब्यूटीफुल ना,
1: वेरी नाइस ना. छोटी छोटी लाइन्स होती है
0: और छोटी छोटी बातों के लिए एक रिश्ता खराब करना है
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट. एंड इन छोटी छोटी बातों के लिए अपने आप से रिश्ता खराब करना, अपने आप के साथ रिश्ता.
0: छोटी बात बुरी लगती क्यों है?
1: कौन सी छोटी बात बुरी?
0: किसी की भी कोई छोटी बात हम उसको एक्सेप्ट कर क्यों नहीं कर लेते? ये सही है. जैसे देखिए अभी यहाँ कितने चिड़िया में सोच रहा था बैठ के, एक बोलती जा रही है बोलती जा रही है, एक कौवा बोलता जा रहा है. सुबह 6 बजे से बोल रहे हैं और एक शांति, जो व्हाइट क्रेन्स हैं इधर, बगुला टाइप जो भी कहते हैं इनको, आराम से बैठ के अपनी शूटिंग देखते हैं, चले जाते हैं, वॉक करते हैं, बात ही नहीं करते हैं, क्वाइट. सबके कितने अलग अलग नेचर्स हैं.
1: राइट.
0: और कभी मैंने ये सोचा नहीं कि ये अच्छा है या बुरा है. एक बार भी मैंने ये नहीं बोला दिस बर्ड इज बैड और दिस बर्ड वाई की करती रहती है.
1: दिस इज एक्सेप्टेंस. जब थॉट ही नहीं आता, एक्सेप्टेंस की हम इस स्थिति पर पहुंचेंगे जब थॉट ही नहीं आएगा.
0: बट ऐसा क्यों नहीं होता है इंसानों के साथ?
1: और उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाओ, वो भी हो जाएगा. हमारी ओरिजिनलिटी तो वही है कि इंसानों के साथ भी हम ऐसे ही होंगे. ये बुरा है, ये ऐसा है, ये गंदा है, ये खराब है, ये ऐसा. नो, जैसे ही हमने इस रास्ते शुरू किया ना चलना, वंस वी स्टार्ट वॉकिंग ऑन दिस रोड, वी विल रीच दिस स्टेज विच यू आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ.
0: लास्ट टाइम आपके 2-3 होमवर्क मैंने किए, उसके बाद मैं गोल्फ खेलने गया. गोल्फ खेलने गया तो एक अमेरिका से कोई ऐसे गेस्ट आया था, तो बोला कैन आई जॉइन यू ऑल. ही गिव मी सच अ ब्यूटीफुल कॉम्प्लीमेंट. ही सेड मैं सोच के हैरान हूँ कि आपका बॉल जब पानी में गया आप चिड़े नहीं, आपके शॉट्स रॉन्ग लगे आप चिड़े नहीं, आपने पट मिस किया छोटा सा, यहाँ से छोटा, आप चिड़े नहीं. ही सेड हाउ कैन यू डू दैट?
1: सी, और पहले कभी चिढ़ते थे इन चीजों पे?
0: लेकिन मुझे मालूम नहीं था मैं ऐसा नहीं किया.
1: नहीं, लेकिन पहले कभी चिढ़ते
0: पहले
1: थे?
0: बॉल जाता तो मैं आधा आधा घंटा, अगला होल भी खराब होता था मेरा.
1: दिस इज
0: मैं अपने कैडी को डांटता था, तूने रॉन्ग क्लब दे दिया.
1: अब पता नहीं चला ना ये ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ.
0: नहीं, बट आफ्टर दिस मैन टोल्ड मी कि मैंने ये बिहेव ऐसे नहीं किया, तब मुझे चला, पता चला कि अच्छा मैं ये पाथ पे जो चलने का सोच के आया, इट वॉज नॉट डेलिबरेट.
1: इट इज नॉट गोइंग टू हैपन डेलिबरेटली. लेकिन छोटे छोटे पुरुषार्थ जो किए होते हैं ना, छोटे छोटे चीजों में, और रोज जब मेडिटेशन किया होता है तो आत्मा में शक्ति बढ़ती है. अब वो आत्मा का स्वरूप में आने लग जाता है. अब जो परिस्थिति आएगी, जैसे पहले ही भी डिस्कस हुआ, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी.
0: एंड ऑल्सो ही सेड एंजॉयड प्लेइंग विद यू.
1: सी, विच मीन्स अपनी स्थिति अच्छी तो सामने वाले की स्थिति अच्छी, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम अच्छी. क्योंकि जैसे आपने कहा, पहले जब मैं इरिटेट होता था तो अगला भी जो हिट करना था वो भी खराब हो जाता
0: था. अगला नहीं सिस्टर. बाद में नहाने धोने, कपड़े बदलने, शाम घर तक जाने, घर में जाने के बाद भी
1: इरिटेबल.
0: वो शॉट मैंने इतना खराब खेला, वो इतना मार दिया मैंने, थोड़ा सा कर लेता और तो हो जाता. और उस डिस्टर्ब स्थिति में 50 बॉल लेके मैं उसको प्रैक्टिस करने जाता तो वो भी खराब होता.
1: जब तक स्थिति ठीक नहीं, जब तक स्थिति ठीक नहीं, यहाँ से सब कुछ रेडिएट होकर बाहर जाना है. यहाँ से इट इज लाइक पावर सप्लाई, और फिर इतने सारे अप्लायंसेस जब घर में है, जब पावर सप्लाई में ही फ्लक्चुएशन है, मेन पावर सप्लाई में ही फ्लक्चुएशन
0: है. नहीं बदली मेरी प्रैक्टिस नहीं
1: तो
0: बदली.
1: वो अप्लायंसेस भी नहीं बदले,
0: टीचर भी नया नहीं आया, गोल्फ क्लब भी नया नहीं आया, लेकिन आपके होमवर्क से. अच्छा, वो सबसे बेस्ट बात आई वॉन्ट टू रिपीट अगेन इज वाई इज इट दैट आई डिडंट इवन नो अनलेस टिल दिस मैन टोल्ड मी.
1: जैसे पहले हमें नहीं पता चलता था कि हम क्यों इरिटेट होते हैं.
0: Okay.
1: हम कॉन्शियसली इरिटेट नहीं होते थे, इरिटेट हो जाते थे. अब हमें कॉन्शियसली पीसफुल नहीं रहना पड़ेगा, मतलब नेचुरली पीसफुल हो जाएंगे क्योंकि ग्रूव चेंज हो रहा है. एक बार थोड़ी सी भी अटेंशन रख ली ना ग्रूव बनाने में, उसके बाद हर टाइम थोड़ी अटेंशन रखनी है उस ग्रूव पे जाने के लिए, वो तो नेचुरली चला जाएगा. बट मोस्ट इम्पोर्टेंट इज जैसे आपने अभी कहा कि वो गिल्ट, फिर वो उस चीज के बारे में सोचते ही जाना, क्योंकि हम में से मेजोरिटी आज ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं. ऑफिस में ये गेम है, लेकिन जहाँ ऑफिस है, बिजनेस है, बहुत बड़ी चीजें स्टेक पे है, टारगेट्स है, यू नो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ऑफिस में है, वो माइंड पे चलता ही जाता है. इट जस्ट गोज ऑन. नहीं मुझे ऐसे नहीं, नहीं उसको ऐसे नहीं, नहीं उसको. आई हैव टू टेल माई सेल्फ कि वहां कुछ ऊपर नीचे हो जाए, नुकसान भी थोड़ा हो जाए, गेम भी खराब हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जितना ऊपर नीचे हो रहा है अभी, अगर हम जितना अटेंशन इस पर रखते हैं कि क्यों मेरे से एक वो बॉल गलत चली गई, जैसे आपने कहा क्यों मैंने इतना हिट नहीं किया, जितना अटेंशन इस पर और जितना इस पर सोच रहे हैं, सोचो अपने लिए उतना सोचे तो क्यों मैंने
0: होमवर्क किया ना अपने लिए, सोच ना, के
1: क्यों हमने उनको क्रिटिसाइज किया, क्यों मैंने उनके लिए नेगेटिव सोचा, क्या ये राइट था. अगर हम एक गोल्फ की गेम के लिए इतना सोच सकते हैं कि अगर मैं थोड़ा सा ऐसे हिट करता तो कितना अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता, अगर मैं थोड़ा सा एक ऐसे सोचता मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिलता, अब करता हूं, अब करता हूं. अब जैसे आपने कहा अगर मैंने गलत हिट किया तो मैं फिर 50 बॉल्स निकाल के फिर प्रैक्टिस करता हूं. अपने साथ ये करें, मैंने गलत सोचा किसी के लिए, मैंने किसी के लिए नेगेटिव सोचा, मैं अब 50 क्वालिटीज निकालता हूँ बैठ के उनके
0: अच्छी वाली,
1: फिर सोचता हूँ उनके बारे में. लेट मी प्ले द गेम अगेन. दे हैव टू हैव क्वालिटीज, नो इट कांट हैपन, नोबडी कैन हैव ओनली वीकनेसेस. सो प्ले दिस गेम इनसाइड. ये करने से हम परफेक्शन की तरफ रीच कर जाएंगे. एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जैसे वो लाइन थी कि यू कैन नॉट गो अवे फ्रॉम एवरीबडी, ना या तो आप उनको एक्सेप्ट करो या उनसे अलग हो जाओ.
0: कितनों से होंगे
1: आज हम चूज करते हैं अलग होना,
0: कितनी शादियां कर लेंगे, कितनों से अलग होंगे, कितने स्टाफ चेंज करेंगे,
1: इन द सेंस कि ये नहीं कि हम बार बार ऑफिस बदल रहे हैं या बार बार स्पाउस बदल रहे हैं, नॉट लाइक दैट, लेकिन हम लोगों से
0: एटीट्यूड
1: कटे कटे हो जाते हैं,
0: एटीट्यूड
1: अपने एक अलग रहने लग जाते हैं. आज हम लोगों से ज्यादा अपनी टेक्नोलॉजी के साथ रहना पसंद करते हैं. आज हम एक्चुअल फ्रेंड से बात करने की बजाय फेसबुक पर या कोई ऐसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर स्ट्रेंजर से चैट करना प्रेफर करते हैं. तो हम लोगों से दूर हो रहे हैं.
0: इवन फोन कॉल टेक्स सम करेज टू टॉक एंड से हेलो हैप्पी बर्थडे. इट्स सो इजी टू राइट ऑन द थिंग हैप्पी बर्थडे लव यू बाय. ये आप मुंह से नहीं बोल सकते इतनी इजिली, बिकॉज आपको उसकी बातें याद आती हैं. ये हाँ मेरे से भाई झगड़ा किया था, ये मेरी बहन ने उस दिन ऐसा बोला था, उसका बर्थडे है, अब मैं फोन उठाऊं और किस मुंह से उसको बोलूं, छोड़ो यार इसका मूड खराब होता है, लिख दो
1: इसे मैसेज कर दो. हम लोगों से दूर होते जा रहे हैं और हम अपने आप को अलग अलग करते जा रहे हैं. इसका हमारे ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है. हमें लग रहा है कि हम बच रहे हैं. वी थिंक वी प्रोटेक्टिंग आवर सेल्फ्स, कि लोगों से दूर होने से हमारी प्रोटेक्शन होती है. हम लोगों से दूर दो रीजन से हो सकते हैं, उनके संस्कार की वजह से, कई बार अपने संस्कार की वजह से भी, कि इनके साथ ना हमेशा मेरा या तो मुझे गुस्सा आ जाता है या तो मैं हर्ट हो जाती हूँ, बेटर आई विल जस्ट कीप अवे. हम अपने संस्कार की वजह से भी कई बार लोगों से दूर हो जाते हैं. लेकिन जितना हम लोगों से दूर होंगे, हमारी अपनी एनर्जी सर्कुलेट नहीं होगी, इट विल नॉट मूव. Unless I come into interaction with people.
0: Even if I hate others or myself, hatred तो अंदर से आ ही रही है.
1: Hatred तो अंदर से आ ही रही है, लेकिन अगर मैंने ये option choose किया कि मैं लोगों से दूर हो जाऊँ, बजाय कि ये option choose करूँ कि मैं अपनी thoughts को बदलू, we had to choose that option. लेकिन हमने choose किया कि हम लोगों से दूर हो जाते हैं. लोगों से दूर होने से, सपोज मैं किसी से दूर हो गई, मेरी हेट की एनर्जी स्टॉप हो गई, ठीक है, मेरी स्टॉप हो गई, चलो मेरा बेनिफिट है. लेकिन लोगों से दूर होने से मेरी लव की एनर्जी भी तो स्टॉप हो गई.
0: सही बात.
1: अनलेस आई कम इन इंटरेक्शन. इसीलिए कहते हैं ना रिलेशनशिप्स क्यों इतने इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिलेशनशिप में आने से ही, किसी आत्मा के साथ एनर्जी एक्सचेंज में आने से ही मेरी एनर्जी क्रिएट होती है और रेडिएट होती है.
0: हमारे सत्संग में मैंने यही सवाल पूछा था आज से कुछ साल पहले, बहुत साल पहले, तो उनका जवाब आया था कि देखो बदला नहीं लेना, बदल जाना.
1: बदल जाना, बदला तो नहीं लेना, बदल
0: बदला मतलब कि टिट फॉर टैट, उसने ऐसा किया, अच्छा बात नहीं किया, मैं भी नहीं करूँ। हाँ। उसने विश नहीं किया, मैं भी नहीं करूँ। तुम बदल जाओ।
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट किनारा भी नहीं होना,
0: बदल जाना इन द सेंस अगेन पॉजिटिव।
1: हाँ, आज वी शुड नॉट चूज द ऑप्शन कि हम विड्रॉ हो जाएं उनसे,
0: एक्सेप्टेंस से बदलना।
1: रिलेशनशिप्स इतने इम्पोर्टेंट हैं। आज छोटे छोटे बच्चे भी बच्चों के साथ खेलने की बजाय टेक्नोलॉजी के साथ खेल रहे हैं, एंड इससे सोल पावर पर इफेक्ट आएगा। जैसे हम शरीर का कोई अंग यूज नहीं करते तो उसकी पावर कम हो जाती है, इसी तरह जब तक हम आत्मा की पावर को रिश्तों में यूज नहीं करेंगे उसकी पावर कम हो जाएगी।
0: इसका एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल याद आया, मेरे घर में बेटे का भी बेटा है, बेटी का भी है, तो दोनों को हम लोग ना एक लॉक चेयर्स में बिठा देते थे और एक एक के सामने आईपैड रख के वो देखते गेम्स खेल खेल के खाते थे। तो फिर मैंने एक दिन ट्राई किया, दोनों को खोल दिया, बिठा दिया, और वो आईपैड, नो गेम्स,
1: नो टेक्नोलॉजी।
0: तो जब हम मैं खिलाने गया तो वो उसके मुंह में डाल रहा है, वो उसके मुंह में डाल रहा है।
1: सी
0: तू खा, अर्जुन खा, इवान खा, वो उसके मुंह में, मैं खिलाऊं तेरे को, खिलाऊं आपस में खिलाए। व्हाट अ चेंज। जमीन आसमान का फर्क।
1: दिस इज
0: रिलेशनशिप।
1: एंड नहीं तो वो क्या कर रहे थे, नहीं तो वो आईपैड पे कोई कार्टून देख रहे थे और खाना दे रहे। दिस इज आवर लाइफ। तो मतलब अगर हमारे हाथ में टेक्नोलॉजी आ जाती है, हम सिर्फ टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके जी रहे हैं, और यही अगर हम टेक्नोलॉजी को हटा के एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो आपको दिखा होगा कि उनकी अपनी वाइब्रेशन चेंज हो जाएगी।
0: नाच रहे थे, प्लेट में से उठा रहे थे, अपने आप भी खा रहे, एक एक को खिला रहे,
1: द होल सर्कुलेशन विल चेंज ऑफ फीलिंग्स। दिस इज सो इम्पोर्टेंट। अभी इन बच्चों से हमें सीखने को मिलता है ना, पर हमारा भी सीन यही है आज का कि हम यहाँ अपने साथ एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने की बजाय हम कहते हैं ठीक है इससे भी नहीं, इससे भी नहीं, इससे भी नहीं।
0: हैविंग लंच एंड डिनर सिस्टर, सब अपने अपने मोबाइल पे लगे रहते हैं, अपना ये करते थे, एक रोटी डाली, ऐसा ऐसा किया, यहाँ कोई अपने आईपैड खोल के बैठ गया,
1: हमारा नुकसान कर रहा है,
0: अपने कान में कोई लगा के बैठे हैं,
1: ये हमारा नुकसान कर रहा है।
0: पिकनिक पे भी जाते हैं चारों गाड़ी में, एक अपना अपना फोन पे लगे हुए, कान में दर्द होता है, वाई भी कोई
1: टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट, दैट्स ऑल, फुल स्टॉप। टेक्नोलॉजी रिश्तों का सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकती, कि किसी से बात करने की बजाय जाके हम इंटरनेट पे एक घंटा बैठ जाते हैं, मेरे पास एक घंटे का टाइम है। टेक्नोलॉजी विल ओनली टेक अस अवे फ्रॉम आर ओरिजिनलिटी, क्योंकि उसमें हमारी फीलिंग्स और इमोशंस सर्कुलेट नहीं हो रही है, विच नीड्स टू हैपन। इवन इफ आई हेट समवन, इवन अगर मैं गुस्से में हूँ, मैं दर्द में हूँ, तो मैंने सोचा चलो उनसे किनारा कर लो, कंप्यूटर के साथ बैठ जाओ, टीवी के साथ बैठ जाओ, लेकिन वो इमोशन यहाँ है, उसको मैंने रिजोल्व नहीं किया, उस फीलिंग को चेंज नहीं किया, फिर इंटरेक्शन में नहीं आए, सिर्फ टेक्नोलॉजी के साथ बैठ गए, तो वो चोट तो वहीं की वहीं रह जाएगी।
0: तो कितने लोनली हो जाएंगे हम लोग,
1: दिस इज व्हाट, कितने लोनली हो जाएंगे, क्योंकि हमारी अपनी शक्ति यूज नहीं हो रही है। दिस इज सो सो इम्पोर्टेंट टूडे, एंड दैट्स व्हाई दैट लाइन इज सो ब्यूटिफुल, ईदर एक्सेप्ट देम और देन लिव विदाउट देम, एंड इफ आई लिव विदाउट देम आई विल रिड्यूस माई पावर। सो वी आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, हमारे पास एक ही ऑप्शन,
0: एक्सेप्ट
1: पीपल एज दे आर।
0: छोटी सी परफेक्शन के लिए,
1: हाँ,
0: आप अफेक्शन को भी छोड़ रहे हो और प्यार को भी छोड़ रहे हो,
1: राइट,
0: इट्स नॉट फेयर।
1: मोस्ट इम्पोर्टेंट, अपनी खुशी और सेहत को भी छोड़ रहे हो। दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट कि इस परफेक्शन के प्रोसेस में हमने अपनी सेहत को भी खोया है, हम परफेक्शन बाहर, हमने अपनी सेहत को खोया है उसकी वजह से, क्योंकि एवरी थॉट वाज अफेक्टिंग एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो फिर इतने टाइट पर्सनालिटी बन गए हैं हम, नेचुरल सिंप्लिसिटी, फ्लोइंग लव, प्योरिटी, इनसे दूर।
0: मैं तो सोच रहा था सिस्टर कि आई विल नॉट कॉल दिस वर्ड परफेक्शन, आई विल कॉल इट फाइंडिंग फॉल्ट्स। सच भी, अगर मैं इसको, व्हाट इज परफेक्ट, एक आदमी लेफ्ट हैंड से खाता है, एक राइट हैंड से, एक आदमी चम्मच ऐसे रख देता है, ऐसे, तो जैसे बनाया है, इवन व्हेन प्लेइंग क्रिकेट, एक टेक्स्ट बुक शॉट्स मारता है और एक तो सिक्सर मारता ही है विदाउट टेक्स्ट बुक, ब्रेकिंग ऑल द रूल्स, एंड ही मेक्स द मैक्सिमम। कोई नहीं पढ़ के भी बनता है, कोई परफेक्शन नाम का है नहीं, एक्चुअली परफेक्शन का एक हमने बहाना बना लिया, एक्चुअली दूसरे की गलती निकालने की अपनी आदत है वो,
1: और जितना वो करते गए मोस्ट
0: और आदत पकती जाएगी मेरी,
1: और जितना आदत पकती गई आत्मा की शक्ति कम होती गई
0: और लोगों से दूर होते जाएंगे,
1: लोगों से तो दूर हो ही जाएंगे, अपने आप से दूर हो रहे हैं ना,
0: आपके नजदीक भी कोई आना पसंद नहीं करेगा ना,
1: yes.
0: चिट चिट चिट बोलेंगे, नोबडी कॉल्स की यू नो सुरेश लव्स परफेक्शन, सच ए नाइस मैन, ही वांट्स एवरीथिंग परफेक्ट, नोबडी सेज दैट,
1: ऐसे नहीं कहेंगे,
0: कोई भी नहीं बोलेगा ऐसा,
1: right.
0: सब बोलेंगे तो किटकिट करता है,
1: बिल्कुल. तो अब हमें इस चीज को मंत्र बनाना है कि अफेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट देन परफेक्शन, एंड अफेक्शन से परफेक्शन की तरफ जाना, दैट वी कैन अचीव. आप प्यार से काम करें सबके साथ, तो प्यार में हमें दिखेगा कि जो काम भी हो रहा होगा ना, वो परफेक्शन की तरफ चला जाएगा. एंड अगर थोड़ा सा परफेक्ट नहीं भी होगा ना, हम इतना इंजॉय करेंगे उस काम करने के तरीके को, हम आज खुशी परफेक्शन में ढूंढ रहे हैं कि जब परफेक्ट होगा तब हम खुश होंगे. खुश होकर अगर परफेक्शन की तरफ चलते, मतलब डूइंग आर बेस्ट की तरफ चलते, तो अगर हम उस परफेक्शन को उस डेफिनेशन तक अचीव भी नहीं करते, एटलीस्ट वी वुड हैव एंजॉयड द होल प्रोसेस. नो, दैट इज द जर्नी ऑफ लाइफ, एंजॉयिंग द प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, नॉट बीइंग हैप्पी आफ्टर इट इज डन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
0: थैंक यू सिस्टर, थैंक यू सो मच. एक छोटा मेडिटेशन करते हैं.
1: डेफिनेटली, सिट बैक. पर्पस ऑफ माय लाइफ, प्यार एंड अफेक्शन अपने लिए और मेरे आसपास सब जो हैं उन सब के लिए, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है. परफेक्शन अपने मन की स्थिति में, परफेक्शन सबके मन की स्थिति के प्रति, दिस इज पर्पस ऑफ माय लाइफ. आज से मेरे जीवन का लक्ष्य, प्रायोरिटी, मेरे मन की स्थिति, औरों के मन की स्थिति, एंड टुगेदर जो हम काम कर रहे हैं वो परिस्थिति, स्थिति को परफेक्ट करके फिर हम मिलजुल कर परिस्थिति को परफेक्ट करेंगे. दिस इज लव इन एक्शन, दिस इज स्पिरिचुअलिटी इन प्रैक्टिकलिटी, दिस इज पर्पस ऑफ माय लाइफ. ओम शांति.
0: ओम शांति.
1: थैंक यू.
0: थैंक यू सो मच. ओम शांति.
2: Never leave a relation because of few faults. No one is perfect. In any relationship or interaction, affection is greater than perfection. When we prioritize perfection over affection, we seek perfection in people, perfection in situations, and perfection in everyone's way of working. When perfection becomes our focus, our affection gets blocked, and we shift from the soul's original state of perfection. While handling any situation, our first responsibility is to take care of our state of being, that is, our emotional state. Second responsibility is to take care of the emotional state of others involved in the situation, and then together we can take charge of the work or situation. If we withdraw from people because of their sanskars or because of our own sanskars, our energy of love, sharing and caring does not flow. The more we adapt and cooperate with others, the more our soul power increases.
3: If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us on awakening@pmtv.in or call us on 0999 55 9 660.

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस। क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी हेल्दी वेल्दी होंगे। तो हम आज देखते हैं कि योगाभ्यास एक इंसान की जीवन का एक पहलू बनता जा रहा है, लेकिन इसकी विधि क्या है, योग और योगा में अंतर क्या है, इसे नहीं जानने के कारण हम योग को ही योगाभ्यास समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम इसकी विधि को जाने तो हमें पता चल जाएगा कि योग क्या होता है, इसे हमें कैसे करना चाहिए। तो आज हम इसी पे चर्चा करते हैं, योगाभ्यास के लिए इसकी क्या विधि है। तो योगाभ्यास के लिए विधि और विधान, यहाँ पर हम देखते हैं, प्रायः यह माना जाता है कि योगाभ्यास के लिए तो मनुष्य को कहीं दूर जंगल में या गुफा में चले जाना पड़ता है, या अलग थलग एक कुटिया बनाकर और एक लोटिया मात्र ही अपने पास रखकर साधना करनी पड़ती है। लेकिन गीता में इस सत्यता की साक्षी है कि भगवान ने तो ऐसा कुछ भी आदेश निर्देश नहीं दिया है। वास्तव में बात तो यह है कि ये जो हमारा शरीर है, शरीर ही आत्मा की एक कुटिया है। अतः भृकुटी जिसमें कि आत्मा का वास है, एक कुटी अथवा गुहा ही तो है। अतः जंगल में जाकर कंकड़ पत्थर को जोड़कर कुटिया बनाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कुटिया में तो आत्मा पहले से ही है। योगी के लिए विधान यह नहीं है कि वह किसी निर्जन स्थान पर कुटिया बनाकर रहे, बल्कि यह है कि वह अपने मन को निर्जन करे, अर्थात उसमें मित्र जन संबंधी जन की बजाय एक परमात्मा, परमपिता परमात्मा की स्मृति को स्थापित करे। फिर वह इस सत्यता का मनन करे कि यह शरीर तो एक कुटिया है, मैं इस कुटिया का वासी एक चेतन आत्मा हूं। अब हमें चैतन्य में ही आत्मा को कुटिया में महसूस करना है, उसे जानने की कोशिश करनी है कि आखिर वो कुटिया में कहाँ है, कैसे है। यही हमारा परमात्मा के साथ, जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो परमात्मा से हमारा कैसे संबंध होगा, इसे हम इसी विधि से जानेंगे कि मैं एक चैतन्य आत्मा हूं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

नमस्कार दोस्तों, तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। हमारा आज का विषय है योगाभ्यास के लिए विधि। यदि हम देखते हैं कि ज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो मनुष्य की भूल यह है कि वह इस संसार को एक मुसाफिर खाना मानने की बजाय अपना देश मान बैठता है और घर को अपना घर समझ लेता है। फिर जब वह उससे लगाव छोड़ना चाहता है तो यहाँ से निकलकर दूर कहीं कुटिया बनाने की सोचता है। परंतु यदि वह यह समझकर चले कि मैं तो एक यात्री हूँ, यह संसार एक मुसाफिर खाना है, आखिर तो मुझे यहां से परम धाम अपने प्यारे घर अथवा देश में जाना है, तो उसमें आसक्ति अथवा मोह नष्ट हो जाएगा और वह भ्रिकुटी अथवा देह को ही अपना शिविर अथवा पड़ाव मानकर तथा स्वयं को इसमें जागती हुई एक ज्योति मानकर उन्नति कर सकेगा। तो यही है योग की विधि। अगर हम ये समझ ले हाँ कि इसकी विधि क्या है, तो इसकी विधि के द्वारा ही हम योग कि जो एक सफल प्रयास है उसमें संपूर्ण जो उसकी स्थिति है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत।

नमस्कार दोस्तों। तो ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना आपका फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का हमारा विषय है योगाभ्यास के लिए विधि। तो हम अपनी आगे की चर्चा इसी तरह जारी रखते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि योग के लिए एक अन्य बात की ओर भी ध्यान देना जरूरी है। हम देखते हैं कि घर की तार को जब बिजली घर से आ रही तार से जोड़ा जाता है तभी घर की तार में भी करंट आता है। परंतु तार को तार से जोड़ने की विधि यह है कि दोनों के ऊपर से जो रबड़ अथवा प्लास्टिक उतार कर ही धातु को धातु से जोड़ना पड़ता है। वरना यदि रबड़ या प्लास्टिक समेत तारों को जोड़ दिया जाए तो बिजली का करंट और लाइट तथा उसका जो पावर है नहीं आ सकती वहां तक। ठीक इसी प्रकार शरीर भी आत्मा के लिए रबड़ है, प्लास्टिक या चमड़ा ही है। जब एक मनुष्य देह के भान से अगर वो उससे परे होकर रहे तो ही वो आत्मा को समझ सकता है। देह के भान में रहकर परमात्मा को याद करेगा तब तक उसे ईश्वरीय लाइट और पावर की प्राप्ति नहीं होगी। उसकी जो शक्ति है उसकी प्राप्ति उससे नहीं होगी। अतः योगाभ्यास जो भी है, जो इसे करते हैं, एक योगाभ्यासी को चाहिए कि वह इस प्रकार से मनन करे कि मैं एक आत्मा हूँ, ज्योतिर्बिंदु हूँ, अचर अमर अविनाशी, मैं देह नहीं हूँ। देह तो मेरी कुटिया है, मैं अजर अमर अविनाशी एक आत्मा हूँ। इस तरह अपने को आत्मा समझ कर ही हम इस देह के भान से बाहर आ सकते हैं। इस प्रकार गज के चिंतन से आत्मा देह भान से न्यारी हो जाएगी और तभी उसकी स्मृति रूपी तार परमात्मा से जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमात्मा से तार को जोड़ने के लिए हमें अपने देह के भान से निकलना बहुत जरूरी है। अगर हम उसे नहीं छोड़ते हैं तो हम परमात्मा को भी नहीं पहचान सकते, क्योंकि हमारा स्वरूप क्या है। अगर हम कहते हैं कि वो हमारा परम पिता परमेश्वर है, हाँ, अगर हम परमात्मा को परम पिता बोलते हैं तो बच्चे तो अक्सर अपने पिता की तरह ही होते हैं। तो पिता भी तो हमारा वैसा ही है जिसे हम क्या बोलते हैं, ज्योति स्वरूप, ज्योतिर्बिंदु। तो इस ज्योति स्वरूप को हम किस रूप में पहचानने के लिए, अपने कौन से स्वरूप को हमें याद करना है, इसे जानने की बहुत जरूरी है। तभी हम परमात्मा को और उनके साथ अपनी संबंध हम जोड़ सकते हैं। अपने पिता के साथ हम अपना संबंध जोड़ सकते हैं। यहाँ पर एक बात याद आती है कि कर ले शिव का ध्यान सदा तुत सुख पाएगा। समय बड़ा अनमोल नहीं फिर आएगा, सतयुग त्रेता द्वापर से तू आए पड़ा कलयुग में, खो दे सारी पुण्य की पूंजी, लाया था जो संग में। सत्संग बड़ा है
प्यारी शिव भोलेनाथ पुकारी, भीतर की खोल विकार, जो किवाड़ है उन्हें किवाड़ को खोलना है, भीतर के खोल किवाड़। कुछ पल्ले पड़े तुम्हारे, देहभान के छोड़ो धंधे, क्यों बने नैन सुख अंधे, स्मृति रख चलते फिरते, तो कटे गले के फंदे। तू रोता क्यों जंगल में, शिव आए तेरे जीवन में, साधारण मनुष्य तन में मुरली सुन मन मधुबन में, तरले शिव का ध्यान सदा तू सुख पाएगा, समय बड़ा बलवान नहीं फिर आएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि एक शिव परमात्मा से अगर हमारा संबंध जुड़ जाए तो और क्या चाहिए, यही है हमारी योग की विधि। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आपसे मिलती हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, गाते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: ट्रैक्स बने होते हैं एंड पानी उसमें बह रहा है, ठीक है, गार्डन है, रास्ते हैं, ट्रैक, सपोज इधर ही इस सड़क पर एक ट्रैक बना हुआ है। अब वो रोज पानी उसी में बहता है, ठीक है। अब पानी का बहते बहते उस एरिया के अंदर वो एक ट्रैक बन ही गया ना। अब जैसे ही पानी आएगा वो दूसरी साइड पे कहीं जाएगा ही नहीं, राइट, वो ऑटोमेटिकली उसी ट्रैक में फ्लो होगा। होते होते होते वो ट्रैक उस पानी के लिए एक परमानेंट पाथ बन चुका है, राइट। अब अगर हम आज से चाहते हैं कि वो उस ट्रैक में नहीं जाए, उस डायरेक्शन में वो पानी नहीं जाए, लेकिन वो एक नए तरह से जाए, तो हमें थोड़े दिन के लिए, सिर्फ ज्यादा नहीं, थोड़े दिन के लिए जैसे ही वो पानी आता है, फ्लो होने लगता है, हमें उसको चैनलाइज करके एक डिफरेंट डायरेक्शन में जाना है। ऐसे ही माइंड भी जब एक थॉट क्रिएट करता है, फिर अगले दिन वही थॉट क्रिएट करता है, फिर अगली बार वो सिचुएशन आती है, फिर वो उसी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो एक फिक्स्ड पैटर्न बन जाएगा अंदर, जिसको हम कहते हैं ब्रेन में भी उसका एक ग्रूव बन जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब वो सिचुएशन आएगी तो आप चूज नहीं करते, आपकी थिंकिंग ऑटोमेटिकली उस पैटर्न से ही होती है, एंड करते करते करते वो ग्रूव एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न बन जाएगा, जिसको हम कहेंगे ब्रेन की मैपिंग, वो पैटर्न्स बन जाते हैं। अब हम एक जीवन अनेक जन्म उसी पैटर्न उसी मैपिंग से काम करते जा सकते हैं, लेकिन अगर हम आज डिसाइड करें तो हम आज चेंज कर सकते हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8, खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: डिप्रेशन इज एंगर टर्न्ड इनवर्ड्स। जब आप औरों पे नहीं गुस्सा करते तो आप अपने पर ही करने लग जाते हैं, लेकिन शायद जब आप औरों पे भी गुस्सा करते हैं तब भी अपने पर गुस्सा कर रहे हैं। आपको गुस्सा देने के लिए वो मेरे से होते हुए ही गुजरेगा, वो एनर्जी पहले यहाँ क्रिएट करनी पड़ेगी। इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको कुछ भी दे दूं विदाउट क्रिएटिंग इट। पहले मुझे कूट कूट के गुस्सा अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे अपने आप को क्या देना है। नहीं, मुझे तो इसे गुस्सा करना ही है। कीजिए, बट ओनली रिमेम्बर द एनर्जी दैट एंगर आई क्रिएट देन आई गिव।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने मुझे नीचे खींचा, उनकी वजह से ऑफिस में मेरा नाम खराब हो गया, उनकी वजह से पूरे सर्कल में मेरा नाम खराब हो गया। वो उन्होंने किया, मैंने उनके प्रति कितना गुस्सा, कितनी नफरत, कितना हर्ट, कितनी इरिटेशन क्रिएट की, या मैंने क्षमा कर दिया, ये चॉइस किसके पास है। अगर कोई हमारे साथ गलत करे और बड़ा वाला गलत करे, क्या उनके लिए अच्छा सोचना पॉसिबल है?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ए पकड़ा, ए पकड़ो पकड़ो पकड़ो पकड़ो, इसे ना छोड़ो।
1: अरे अरे अरे अरे भैया ना तोड़ो।
0: ओए ठहर जा बाबी।
1: अरे जा रे शराबी, क्या हो राजा?
0: गली में आ जा।
2: होली होली
0: भांग की गोली, ओ नखरे वाली
1: दूंगी मैं गाली।

भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे, एक दिन सपनों भरा ही चला जाए सब।

अय्या करूं मैं क्या, सुख सुख खो गया दिल मेरा, सुख सुख

0: दूं तुम्हें
1: हाँ
0: या चुप रहूं
1: ना
0: दिल में मेरे आज क्या है
1: क्या है

आज फूलों का बुलबुल कह दिया जोने तो है, आज फूलों का बुलबुल कह दिया जोने तो है।

0: अच्छा,
1: मुझे भूख नहीं लगती, मुझे प्यास नहीं लगती।
0: बाप रे।

बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है, बड़े ही शरीफ है, पुराने मेहरबान है। अरे जेब को बचाना बचाना बचाना, जेब को बचाना।

0: राजा है, भगवान है, किशोर कुमार है, निम्मी गीता बाली है, अशोक कुमार है, नरगिस राज कपूर है, दिलीप कुमार है। गीतों का तूफान है, नाच की बहार है, नाच की बहार है।
1: पाँच आने का दस आना, पाँच आने का दस आना, पाँच आने का दस आना।
0: अरे वापस नहीं जाना, जाना।